मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को हैं। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीटिंग वीप 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। सुबह के 6 बजने को है, अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, एनएसएस वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नकाशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं। गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डी फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैच

0: जो कि टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीटर वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

खुशियों को पाने का रास्ता है प्रभु का चिंतन। हे प्रभु, मैं आपसे सुख शांति की कामना करती हूँ, आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए। हमें सच्चे मन से प्रभु की आराधना करनी चाहिए। भक्ति अपने इष्ट के प्रति ऐसा समर्पण भाव है जो हमारे मन में यह विश्वास जगाता है कि प्रभु के शरण में हम सुरक्षित रहेंगे।

हमारा मन प्रभु की साधना में लीन है। प्रभु हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। हम विपदाओं के अंधकार में हैं, आप हमें इस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाइए।

0: अभी आप हरिहरन, अनूप जलोटा और चंद्रु आत्मा के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं पर समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in।

0: इन पर नया भारत नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम। आइए सुनते हैं मदन मोहन मालवीय के विचार।
4: हमारे समक्ष एवं इर्द गिर्द जो भी वस्तु है वो ईश्वर के अस्तित्व का ढिंढोरा पीटती है। ईश्वर संसार की प्रत्येक वस्तु में है, संसार में वही वास्तविक सत्य है, उससे परिचित होना जीवन का सर्वोच्च सुख है। दूसरों के साथ आप ऐसा व्यवहार न करें जो कि आप दूसरों को अपने प्रति करने देना नहीं चाहते। आप निद्रा त्याग कर उठ खड़े हों और साहस के साथ अपने कामों में जुट जाएं, हृदय में ये दृढ़ विश्वास रखते हुए कि हमें अपने प्रयास में विजय अवश्य प्राप्त होगी। अपनी इच्छा से बिना किसी प्रकार के बंधन व स्वार्थ के दीन दुखी प्राणी की सेवा करना, इससे परे क्या यज्ञ है, क्या तप है, क्या दान है, क्या सुख है। असहाय प्यासे को पानी, भूखे को अन्न, शीत से सताए हुए को वस्त्र देना, जले हुए के घाव पर मलहम लगाना, डूबते को बचा लेना, जिसके घर में आग लगी हो उसके घर की आग बुझाना, उसके प्राणियों को आग से बचा लेना, रोगी को औषध देकर रोग की पीड़ा से छुटा देना, अंधों को सहायता देना, अनाथ बच्चों और विधवाओं के माता पिता भाई बनना, मेलों में निराश बिछड़े हुओं को मिलाकर उन्हें नया प्राण देना, जो अजान अकिंचन प्राणी विदेशों में अकेले लुट गए हों उनको सहायता देकर उनके घर पहुंचाना, ठग लुटेरों और अन्यायियों से सताए जाने वालों का रक्षक होना, सेवा करना, इससे पवित्र और क्या मार्ग हो सकता है। देशभक्ति का संचार हमारे हृदय से स्वार्थ को निकाल कर फेंक देगा। हम अदूरदर्शी, स्वार्थी और खुशामदियों की तरह ऐसे कार्य कदापि न करेंगे जिनसे कि देशवासियों को हानि पहुंचे, बल्कि दूरदर्शी, परमार्थी, सत्यशील और दृढ़ता प्रिय आत्माओं की भांति असंख्य कष्ट उठाते हुए भी वही करेंगे जिसमें देश का भला हो। निर्धन धनवान, निर्बल और मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाएं, प्रत्येक प्रकार के सामाजिक दुख मिटें और दुर्भिक्ष आदि विपत्तियां दूर होकर लाखों बिलबिलाती हुई आत्माओं को सुख पहुंचे। देशभक्ति द्वारा इतने धर्मों का संपादन होता हुआ देखकर भी यदि कोई धर्म के आगे देशभक्ति को कुछ नहीं समझता, उस पुरुष को जान लीजिए कि वो धर्म के तत्व ही कोई नहीं पहचानता। इस विचित्र सृष्टि का वैभव एक परमात्मा दिखा रहा है, वो सब करता हुआ दृष्टा है, खुद ही सब देखता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कैलाश पर और समुद्र के गंभीर तल में उसकी लीला का नृत्य होता रहता है। वो गर्भ में बच्चे की रक्षा करता हुआ पालन करता है, वो उसकी रचना करता है, शरीर के भिन्न भिन्न अंग बनाता है और उनको सुंदर रचकर दिव्य रूप में प्रकट कर देता है। कैसा सुंदर बालक पैदा होता है कि उसकी बनावट देख आश्चर्य होने लगता है। उसके कैसे छोटे छोटे अंग प्रत्यंग

0: व्यंग बनते रहते हैं। उस कारीगर की रचना अनोखी है। वो अंतर जगत में जैसा कार्य करता रहता है, वैसा ही बाह्य जगत में भी करने लगता है। कभी प्रातःकाल की शोभा, कभी संध्याकाल की लालिमा, कभी इंद्रधनुष और मेघाच्छन्न आकाश, कभी शरद पूर्णिमा की शांति, उसकी ज्योति सूर्य की किरणों के रूप में, चंद्र की चांदनी में, पुष्प की सुगंध में और भिन्न भिन्न पदार्थों के स्वरूप में दृष्टिगोचर होती रहती है। जब कोई भारी सहायता कर देता है तो हम उसके आभार को मानते हैं, उसके कृतज्ञ होते हैं और धन्यवाद देते हैं। तब जिस प्रभु ने हमारे जीवन के लिए सब कुछ दिया है, सुंदर शरीर, दिव्य रूप दिया, उसका उपकार मानना चाहिए या नहीं?
1: अभी आप सुन रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय के विचार। विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं मृदा में जीवाश्म की महत्ता विषय पर डॉक्टर मनबोध प्रसाद से सुरेश कुमार की बातचीत।

0: भैया खेती किसानी में ही देखा जाता है कि माटी में जीवांश की मात्रा मिल जाते है तो माटी की पैदावार बढ़िया हो जाते है, उपज जो भी किसान भैया बहनी करते है तो बढ़िया लाभ मिलते है। तो आज अपने कार्यक्रम भैया डॉक्टर मनमोहन प्रसाद भैया जो है प्रधानाचार्य कोऑर्डिनेट इफको फूलपुर से आए न हमें, तो हम अपने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि जीवांश पदार्थ ई आय का
1: किसान भाइयों, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जीव जंतु पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों के अवशेष जो मिट्टी में पाए जाते हैं या बाहर से मिलाए जाते हैं उनको हम मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं।
0: हाँ।
1: मिट्टी आप जानते हैं कि हमारे सबके जीवन का आधार है
0: जी,
1: और जीवांश पदार्थ मिट्टी का प्राण है। मिट्टी में जीवांश पदार्थ की मात्रा मिट्टी की गुणवत्ता का परिचायक, यानी कि जिस मिट्टी में जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होती है
0: जी,
1: उसकी उत्पादकता स्वाभाविक रूप से अधिक होती है।
0: हाँ।
1: हमारी मिट्टी जो है वो सभी फसलों की जन्मदात्री है, इसलिए बचे हुए अवशेष यानी मनुष्य और पशुओं के उपयोग के बाद बचा हुआ जो अवशेष है उस पे सबसे पहला अधिकार हमारी मिट्टी का है।
0: हाँ।
1: वो अधिकार उस अवशेष को सड़ाने के रूप में, उसको जलाने के रूप में नहीं।
0: हाँ।
1: कैसे कि अग्नि उसको जला के राख कर देती है और वायु उसको उड़ा के अन्यत्र पहुंचा देती है
0: जी।
1: लेकिन अगर हम उसको सड़ाते हैं तो वो मिट्टी में जीवांश पदार्थ पैदा करता है। इस प्रकार से इस जीवांश पदार्थ के विघटन के दौरान ह्यूमस बनता है, जो एक जटिल अवयव है जिसको हम मिट्टी का दिल भी कह सकते हैं।
0: अच्छा।
1: इसलिए मिट्टी ज्यादा उर्वर हो और उत्पादक बनी रहे इसके लिए आवश्यक है कि उसका दिल यानी उसमें ह्यूमस ज्यादा हो, मजबूत हो
0: जी।
1: तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ है, जीवांश की मात्रा है, उसको कैसे जानेंगे? उसको जानने के लिए हम मिट्टी का परीक्षण करवाते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: मिट्टी परीक्षण में हम ऑर्गेनिक कार्बन प्रतिशत के रूप में हम उसकी जांच करते हैं और उसके आधार पर भी मिट्टी में उसका स्तर पता लगता है।
0: अच्छा।
1: यानी अगर उस मिट्टी में 0.4% या उससे कम है तो ये मिट्टी निम्न स्तर की है।
0: अच्छा।
1: अगर 0.4% से 0.8% तक ऑर्गेनिक कार्बन है
0: हाँ।
1: तो ये मिट्टी मध्यम दर्जे की है
0: जी।
1: और अगर

0: 8% से ऊपर है
1: हाँ
0: तो इसमें उच्च स्तर है, मतलब ये अच्छा स्तर है। और किसी भी दशा में जो हमारी मिट्टी है इसमें 1% से ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होता है।
1: अच्छा
0: लेकिन जो ठंडे प्रदेश हैं या जो ठंडे देश हैं
1: हाँ
0: वहाँ
1: हाँ
0: की मिट्टियों में जरूर 1% से ज़्यादा ये ऑर्गेनिक यानी वहाँ पे जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बताएं कि माटी में जीवांश की मात्रा पाई जाते हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे किसान भैया बहन कौन तरीक़न का अपनावें, किस बात का विशेष तौर से ध्यान दें कि जीवांश पदार्थ के जो स्रोत हैं कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर कैसे प्राप्त अच्छे पर्याप्त रूप से मिल सके, इस बारे में बतावें।
0: देखिए, जीवांश पदार्थ के जो सबसे ज़्यादा स्रोत है
1: जी
0: वह है पादप यानी पौधों, पेड़ पौधे, फसल।
1: अच्छा,
0: जिसे फसलों पेड़ पौधों के अवशेष
1: हाँ
0: प्राकृतिक दशा में जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, घास हैं, झाड़ियां हैं
1: जी
0: एवं फसलों के अवशेष हैं, तथा फसल को जो हम काटते हैं तो काटने के बाद जो उनकी जड़ें मिट्टी में रह जाती हैं
1: हाँ हाँ
0: वो मिट्टी को जीवांश पदार्थ देते रहते हैं।
1: जी
0: जैसे अगर हम गेहूं काट लें तो गेहूं काटने के बाद जो जड़ बचता है
1: हाँ
0: उससे 5 से 6 क्विंटल तक जीवांश पदार्थ मिट्टी को मिलता है।
1: जी
0: उसी तरह से घास फूस है, अगर इनको देखें तो 50 से 100 क्विंटल तक। हमारी जो मटर की फसल है
1: हाँ
0: लगभग 2 क्विंटल तक उसके जड़ों के द्वारा कार्बनिक पदार्थ मिट्टी को मिलता है।
1: जी
0: इसका दूसरा स्रोत है जैसे हम लोग गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद, सिटी कंपोस्ट, फ्रेश मड जो चीनी मिलों से निकलता है,
1: हाँ
0: तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें भी जीवांश की मात्रा अधिक होती है।
1: जी
0: जब हम खेत में मिलाते हैं तो इनसे जीवांश की उपलब्धता मिट्टी में बढ़ती है।
1: हाँ
0: आज बहुत ज़्यादा जोर हरी खाद पे भी दिया जा रहा है।
1: जी
0: जीवांश का एक बहुत अच्छा स्रोत हरी खाद भी है, जैसे सनई, ढैंचा, मूंग, लोबिया, ग्वार, अन्य फसलें जिनकी फली तोड़ने के बाद हरे रूप में ही हम जोत के मिट्टी में मिला देते हैं,
1: जी
0: उसको सड़ा देते हैं जिससे हरी खाद कहते हैं।
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: इस हरी खाद को मिलाने से भी हमारी भूमि को जीवांश पदार्थ मिलता है, इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। आप देखें तो जो हरित जो पौधे हैं
1: हाँ हाँ
0: इनके अंदर लगभग 75% तो केवल पानी होता है,
1: जी
0: शेष 25% ही शुष्क पदार्थ होता है
1: हाँ हाँ
0: जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और खनिज पदार्थ मुख्य रूप से पाए जाते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा जो हम गांव में पशुओं को या मुर्गी पालन करते हैं तो पशुओं का जो बिछावन है, मुर्गी का जो लीटर है,
1: हाँ हाँ
0: बिछावन है एक तरह से, मुर्गी
1: जी
0: की खाद भी जिसको कहते हैं, ये भी जीवांश पदार्थ के अच्छे स्रोत हैं।
1: अच्छा
0: इसके अलावा जो जीव जंतु हैं वो भी कुछ मात्रा में जीवांश पदार्थ भूमि को देते हैं।
1: हाँ हाँ
0: जैसे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जीवाणु हैं, जानवरों के अवशेष हैं, ये भी जब उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो स्वतः मिट्टी में मिलके और उसको जीवांश की उपलब्धता कराते हैं। कहते भी
1: अच्छा
0: हैं कि यह माटी की शरीर अंत में माटी में मिल जाती है,
1: जी
0: तो जो जीव जंतु हैं वो भी कुछ हद तक जीवांश की पूर्ति मिट्टी में करते हैं।
1: अच्छा, साथ ही साथ हम आपसे एक और बात जानना चाहिए थे कि मृदा में जीवांश पदार्थ के जौन वैज्ञानिक प्रबंधन है, जौन तरीका बा, हमार किसान भैया बहनी है कौन तरीका से अपनावें, बताओ।
0: किसान भाइयों, सबसे अधिक स्रोत जो है जो हमने बताया कि फसलों का अवशेष,
1: हाँ
0: तो उन फसलों के अवशेषों का अगर हम सही प्रबंधन करें,
1: जी
0: उसका पुनर्चक्रीकरण करें,
1: हाँ हाँ
0: भूमि में अगर पुनः लौटाने का प्रबंध करें,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: इससे आर्थिक लाभ तो होगा ही,
1: जी
0: साथ ही हम जो अमूल्य धरोहर है, हमारी धरती है, जल के स्रोत हैं,
1: हाँ हाँ
0: पारिस्थिति की भी रक्षा, प्रकृति और उसके पर्यावरण के बीच सामंजस्य बना पाएंगे
1: जी
0: और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।
1: हाँ
0: फसल अवशेष प्रबंधन से हम समेकित पोषक तत्व प्रणाली का भी एक अनूठा तरीका अपना सकते हैं,
1: हाँ
0: जिसमें
1: हाँ
0: भूमि

0: से पोषक तत्वों का दोहन रुक जाता है, मिट्टी की सेहत में सुधार होता है,
1: जी
0: जो हमारी फसलों की उपज है वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसके उत्पाद की गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
1: जी हाँ
0: उड़द,
1: हाँ
0: मूंग, लोबिया, दलहनी फसलों का जब हमारी खाद के रूप में उपयोग करते हैं तो
1: हाँ
0: इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है।
1: जी
0: और ये भी देखा गया है कि मूंग की फली तोड़ने के बाद अगर उसको हम भूमि में पलट के मिला देते हैं
1: हाँ
0: तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के बाद भी जितना हम संस्तुति डोज यानी 125-120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 30 किलो पोटास है, उसके बराबर उपज प्राप्त करते हैं।
1: जी
0: इस प्रकार से अगर हम इनका सही सही उपयोग करें
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: साथ ही बायो फर्टिलाइजर और बायो डिकम्पोजर, इसके इस्तेमाल से हम इन अवशेषों को अच्छी तरह से सड़ा सकते हैं और इनके सड़ाने से हमारे भूमि में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी।
1: हाँ डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आयन ये जानकारी दे खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे मृदा जीवाश्म की महत्ता, डॉक्टर मनबोध प्रसाद से सुरेश कुमार यादव की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं वर्षा ऋतु में होने वाली सामान्य समस्याएं और उनसे बचाव विषय पर डॉक्टर दीपक अग्रवाल की ये वार्ता।
1: आजकल कहीं कहीं बरसात हो चुकी है, कहीं कहीं होने वाली है। बस इस उमस भरी गर्मी के बाद बरसात का अनुभव बहुत अच्छा लगता है। हर जगह मन आनंदित हो जाता है, हर जगह साफ सफाई लगने लगती है, पेड़ पौधे धुल जाते हैं, हर तरह लगता है कि हर चीज़ बहुत आनंद में है। इसका दूसरा पक्ष बरसात में है बहुत सी बीमारी जो कि उत्पन्न होती है, और यही बीमारी ऐसी जो कि आगे चल करके नुकसान पहुँचा सकती है। तो आज आपको कुछ बता रहे हैं ऐसी चीज़ें जिसका कि अगर आप उसको सावधानी बरतेंगे तो बरसात का आनंद भी लेंगे और उसके जो पली हुई बीमारी वो नहीं होगी। बरसात में अक्सर मच्छर का प्रकोप बढ़ जाता है। मच्छर का प्रकोप मतलब होता है मलेरिया और डेंगू, और यही बीमारी ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकती है। पानी अक्सर दूषित हो जाता है, मतलब पेट की बीमारी, पीलिया, टाइफाइड आदि बीमारी होने लगती है। मलेरिया डेंगू में कभी कभी होता है कि बुखार तेज़ हुआ और बहुत तेज़ जाड़ा लग रहा है, कि बच्चा सुस्त हो गया है, लाल चकत्ते चकत्ते दाने पड़ रहे हैं चेहरे पे, जिसमें लिए कि डेंगू के लक्षण हो सकते हैं, या बच्चा उनको सुस्त हो गया है, पेट में रह रहे का दर्द हो रहा है, जी मचला रहा है, उलझन बेचैनी हो रही है, ये भी मलेरिया डेंगू के लक्षण हैं। इसी तरह कभी कभी दूषित पानी पीने से मौसम में पीलिया या टाइफाइड होता है। पीलिया मतलब होता है कि कभी आपको लगे कि मेरा बच्चा पेशाब पीली कर रहा है, आंखों में पीला बन आ गया है, पेट में रह रहे का दर्द हो रहा है, खाना खाना छोड़ दिया है, या कुछ खा भी रहा तो कह रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी होने की संभावना रहती है। टाइफाइड में भी यही होता है कि रह रहे के बुखार आता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी लगता है बहुत तेज़ बुखार आ गया है, बच्चे का खान पान बिगड़ जाता है, कुछ खाना नहीं खाता है, तो समझ लीजिए टाइफाइड हो सकता है। अक्सर बच्चे बरसात में भीग जाते हैं, स्कूल खुलने वाले हैं, बरसात शुरू हो चुकी है, कई कई बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब या लौटते समय बच्चे भीग जाते हैं, तो उससे कभी कभी मामूली सा जुकाम, सर्दी, गले में दर्द, या ज़्यादा होता है तो फिर निमोनिया हो जाता है। मतलब ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि बरसात में शुरुआत हो चुकी है। तो आपको बताते हैं कैसे इससे बचा जाए। सबसे पहले होता है दूषित पानी, जो आपके पानी आ रहा है, जैसा बता चुके कि आपका दूषित पानी ऐसा है जो कि सारी बीमारी जड़ें, खासकर जो दिक्कत है वो है पीलिया और टाइफाइड की, मतलब जॉन्डिस और टाइफाइड, ये पानी से बीमारी उपजाई हुई है। तो जो भी आपके पानी आ रहा है उसको साफ़ सुथरा रखिए, पानी को उबाल के छान के पीजिए। घर में अगर मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा हो चुका है तो कोई भी कीटनाशक तंत्र आते हैं, बहुत से रसायन आते हैं, बहुत से ऐसे पेस्ट आते हैं, उसको लगाइए जिससे कि आपको घर में मच्छर मक्खी ना प्रवेश करें। रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें जिससे कि मच्छर ना काटें। जो भी कभी ऐसा जगह मच्छर काट रहा है तो पूरे आस्तीन का कपड़ा पहनिए, मतलब कि आपका हाथ और पैर ढका रहे तो मच्छर उस जगह नहीं काटेगा, और शरीर को पूरी से ढक कर रखिएगा। घर में जो पानी का जमा हो जाता है, अक्सर आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पानी जमा होता है वहाँ पर खासकर मलेरिया और डेंगू के मच्छर पनपते हैं। आपके घर में कूलर होगा, गमले बहुत से होंगे, कहीं गड्ढा भरा होगा, तो उसमें देखिए कि अगर आपका पानी भरा, क्योंकि गर्मी में पानी आपने भरा होगा, कूलर में पानी भरा होगा, तो उसकी पानी

0: उनको साफ करिए, कूलर साफ रहे, पानी साफ रहे, जिसमें कि वो उत्पन्न वाले मलेरिया डेंगू की बीमारी वहाँ पे ना होने पाए। और ये बीमारी ऐसी है जो कि अगर एक बार हो जाती है तो जानलेवा बीमारी हो सकती है। तो श्रोताओं, ये होता है कि बरसात में अगर बच्चे मारी बाहर निकल रहे हैं, निकले ज़रूर, चाहे स्कूल जाओ या आओ, लेकिन खेलना कूदना सब कुछ करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि बच्चे बरसात भीगे ना। अगर जा रहे हैं बाहर तो कोशिश करें कि बरसाती हाथ में लें, रेनकोट ले लें या छाता ले लें, मतलब भीगने की वजह से कोई दिक्कत ना आने पाए। अक्सर देखा है कि बच्चों को अक्सर फुड़िया भूसी बहुत हो जाती है, क्योंकि मौसम ऐसा खुश्क और नमी वाला हो जाता है जिसमें कि बहुत जल्दी फंगस से बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब साफ़ सफाई रखें, अपनी चमड़ी को देखते रहिए कि कहीं कुछ साफ़ सफाई की दिक्कत हो रही है तो उसको तुरंत अच्छे कुछ साबुन से नहाएं धोएं, मतलब ये साफ़ सफाई रखिएगा तो ये फुड़िया भूसी बीमारी नहीं होगी। अक्सर बरसात में श्रोताओं, कभी कभी आँख की बीमारी बहुत होती है, जब बरसात में का पानी पड़ता है आँखों में तो आँखों में जलन होती है, खुजली होती है और बहुत ज़्यादा आँख से पानी गिरने लगता है। मतलब कहने मतलब ये कि अगर बरसात हो रही है तो बरसात पूरा आनंद लीजिए, लेकिन एहतियात बरतिए, कहीं अगर पानी भरा हो उसको दूर करिए, जो मच्छर मक्खी उसको दूर करिए, बच्चों को देखते रखिए, साफ सफाई रखिए, बाहर की चीज़ें न खाएँ, जो कुछ खाएँ साफ़ सुथरी खाएँ। और बरसात ऐसी चीज़ है कि बहुत अच्छा मौसम है लेकिन ऐसा है जो कि बहुत सी बीमारी को जन्म देता है। जो मैंने बताए हुए उपाय अगर आप करेंगे तो हर तरीके से ठीक रहेंगे, आपका घर ठीक रहेगा, आपका पूरा परिवार ठीक रहेगा और आप खुशी खुशी इस बरसात के मौसम का आनंद ले सकेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर दीपक अग्रवाल की वार्ता वर्षा ऋतु में बच्चों में होने वाली सामान्य समस्याएं और सावधानियां। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर और न्यूज़ ऑन AIRF पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। शाम 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर विदुषी वागेश्वरी देवी का उपशास्त्रीय गायन, दिन में 12:15 पर रामशंकर का गायन और रात 10:30 पर उस्ताद निशांत खां का सितार वादन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर मनीषा निर्की के स्वर में भजन और गीत प्रसारित किया जाएगा। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत का। 10:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे रामदेव और साथी।

सुबह 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। 11:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम किस्सा गोई। वाचन स्वर है नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। दिन में 12:30 पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम सुनिएगा हेलो पनघट। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। शाम 5 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत। युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर।

शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। शाम 6:50 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:31 पर निशा यादव से कहानी सुनिएगा। रात 8:00 फिल्म संगीत, रात 8:30 पर सबरस कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा और रात 9:30 पर आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां, रात 10:00 फिल्म संगीत। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नोपवेशनानन्तरं 13,000 कोटि रूप्यकाधिकाः 5 परियोजनाः अनुमोदिताः। एतासु 4 रेलमार्गसम्बद्धाः, 1 च राजमार्गसम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचना प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्येतेषु 4 राज्येषु रेलमार्गस्य 8 बहुमार्गीय परियोजनाः अनुमोदिताः। असौ उक्तवान् यत् आहत्य 50,4,900,000,000,000 रूप्यकाणां व्ययेन एताः परियोजनाः 30,2,000,000,000 तमवर्षात् 31,000,000 तमवर्षपर्यन्तं पूर्णाः करिष्यन्ते।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव संसूचितवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन बिहार राज्ये मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खण्डस्य राष्ट्रिय राजमार्ग 22 इत्यस्य चतुर्मार्गीय मानकानुसारम् उन्नयनमपि अनुमोदितम्। अस्य व्ययः आहत्य 90,500,000,000,000 रूप्यकाधिकः अस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां जापानस्य रक्षामन्त्रिणा शिन्ज़िरो कोइजुमी इत्यमुना सह द्विपाक्षिकोपवेशनं करिष्यति। अपेक्ष्यते यत् अस्मिन् उपवेशने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे रणनीतिक विश्वासः सहयोगश्च अधिकं सुदृढौ भविष्यतः तथा स्थिरतायाः सुरक्षायाश्च प्रवर्धनं भविष्यति। उभौ मन्त्रिणौ सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्रे गहन सहयोगस्य अथ मेक इन इण्डिया इत्यस्य च अन्तर्गतं रक्षोपकरणानां प्रौद्योगिक्याश्च क्षेत्रे अधिक निकट सहयोगस्य विषये विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। केन्द्रीय मन्त्री किरेन रिजिजुः एतत् कथनं निराकृतवान् यत् चीन देशः अरुणाचल प्रदेशे 60 किलोमीटर पर्यन्तम् अन्तः प्रविष्टः अस्ति। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्री रिजिजुः उक्तवान् यत् बांग्लादेशस्य छायाचित्राणि, दृश्यचित्राणि च चीनदेशस्य अरुणाचलप्रदेशे प्रवेशं मिथ्यारूपेण प्रदर्शयितुं प्रयोज्यन्ते। असौ उक्तवान् यत् एतादृशानि असत्यानि अभिकथनानि सीमां रक्षतां सैनिकानां मनोबलं न्यूनीकर्तुं शक्नुवन्ति तथा अनावश्यकं भ्रमं जनयितुं शक्नुवन्ति। मन्त्री उक्तवान् यत् भारत चीन सीमा संबद्ध विषय गंभीर अस्ति। सह जनान आहूतवान यत् एतादृशे संवेदनशील विषये मिथ्यानि उतवा अप्रमाणितानि कथनानि न कुर्वन्तु। दिल्ल्यां प्रचलितस्य विशेष गहन पुनरीक्षणस्य अंतर्गतम् आवेदन पत्राणाम् उपस्थापनस्य अंतिम तिथि अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् वर्धिता। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः अनुसारं अधुना प्रारूप मतदात्री सूची अस्य मासस्य 31 दिनांके प्रकाशिता भविष्यति। अभ्यर्थनानां आक्षेपानां च प्रस्तुतेः अन्तिमतिथिः आगामि मासस्य 30 दिनांकं भविष्यति। बांग्लादेशे अद्य राष्ट्रपति पदाय निर्वाचनं भविष्यति। अस्मिन् निर्वाचने सांसदाः शासनाधिरूढस्य बीएनपी दलस्य वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर तथा 11 दलात्मकस्य

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ।

तारक नाम के असुर से त्रस्त देवताओं को ब्रह्मा ने यह ज्ञान दिया कि उसका वध शिव जी के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकेगा। पार्वती ने शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, किंतु शिव अखंड समाधि में बैठे हैं। अतः ब्रह्मा ने कामदेव द्वारा शिव जी की समाधि भंग कराने का परामर्श दिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की। तब जाकर विषम 5 वाणों और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवगण की विपत्ति की कथा और अनुरोध सुनकर कामदेव को हंसी आई, क्योंकि वो जानता था कि शिव की समाधि भंग करके उसके प्राण नहीं बचेंगे। फिर भी परमार्थ के हित में अपनी बलि देने के लिए वह सहमत हो गया। पुष्प के अपने धनुष तथा वसंत आदि सहायकों की सहायता से कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाकर स्त्री पुरुष संज्ञा वाले सभी चर अचर प्राणियों को काम के वश में कर दिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्मों से भजन।

आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन। अभी आपने सुना चार धाम फिल्म का ये भजन। हरिहरन के आवाज़ थी, संगीत दिया था सुरेंद्र कोहली ने और रचना थी उदय शंकर की। आइए अब सुनते हैं काजल फिल्म का ये भजन लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत है रविका और रचना है साहिल लुधियानवी की।

अभी आपने सुना काजल फिल्म का ये भजन, और अब फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ की 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग। कहा, भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर है आधारित। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा सुधार पर राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से मांगा जवाब। झांसी के बेतवा नदी पर बने परीक्षा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मिली मान्यता। 14 अक्टूबर को फ्रांस में मिलेगा अवार्ड। और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में जापान की प्रमुख कंपनियों के सीईओ और बिजनेस लीडर्स के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। इस अवसर पर जापान की दो कंपनियों के 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। ईडा क्षेत्र में लगने वाली इन परियोजनाओं से 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों का आभार जताते हुए कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए प्रदेश आज भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। श्री योगी ने कहा कि जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है, वहीं उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है।
1: जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है, उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है। हम चाहते हैं जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना सेकंड इंडस्ट्रियल होम माने। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी के साथ रिलायबल पार्टनर के रूप में खड़ी है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में सरकार ने सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड के साथ प्रदेश के बजट, जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में राज्य मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
1: बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है।
0: इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। उन्होंने जापान के उद्योग जगत से भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया। वहीं कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है कि अनुसंधान और तकनीकी नवाचार सीधे किसानों तक पहुंचे। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और ये वैश्विक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।
2: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम तो मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन 18 से 23 अगस्त तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें 200 से अधिक जापानी उद्योगपति, सीईओ, कारोबारी प्रतिनिधि और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता

0: और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को नंदन नीलेकणी समिति द्वारा संशोधित रूप में लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GK पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के झांसी में स्थित 140 साल पुराने परीक्षा बांध को अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है। सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ICID ने इस ऐतिहासिक बांध को विश्व धरोहर सिंचाई संरक्षण WHS के रूप में मान्यता दी है। एक रिपोर्ट।
1: सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अनिल गर्ग ने बताया कि 14 अक्टूबर को फ्रांस के मार्सिले में आयोजित होने वाले 26वें ICID अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 77वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान परीक्षा बांध को WHIS पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। झांसी में बेतवा नदी स्थित परीक्षा बांध ने 140 वर्षों से बुंदेलखंड की सिंचाई प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बेतवा नहर प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है जो बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि के लिए पानी की आपूर्ति करती है। परीक्षा बांध लगभग 1174 मीटर लंबा और नदी तल से लगभग 16.8 मीटर ऊपर स्थित है। सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल भारत दौरे पर आए नाइजीरियन प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वहां के कृषि और खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री डॉ. अलियु साबी अब्दुल्लाही से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे सकारात्मक और जमीनी बदलावों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर श्री मौर्य ने कहा कि कृषि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रदेश में सरकार अच्छा काम कर रही है।
2: यह सब कुछ जो होता हुआ हम देख रहे हैं, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लगातार 9 वर्ष से अधिक समय से अच्छा काम उत्तर प्रदेश में किया गया उसका सुपरिणाम।
0: श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र कल 3 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। श्री मिश्र आज से शुरू हो रही समिति की बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्ण स्मृति स्तंभ के शीर्ष पर न्यास का लोगो लगाया जाना बाकी है, बाकी सारे कार्य पूरे हो गए हैं। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से कई जनपदों में बाढ़ के हालात हैं। वाराणसी में 84 घाटों का संपर्क भी टूट चुका है। सुरक्षा के लिहाज से अगले आदेश तक नाव संचालन पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर करीब 67 मीटर दर्ज किया गया है। वहीं 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ना लगातार जारी है। चित्रकूट में बारिश की संभावना को देखते हुए कक्षा 12वीं तक के विद्यालयों को आज के लिए बंद कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ की 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग। कहा, भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर है आधारित। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा सुधार पर राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों को

0: लागू करने के लिए सरकार से मांगा जवाब। झांसी के बेतवा नदी पर बने पारिक्षा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मिली मान्यता। 14 अक्टूबर को फ्रांस में मिलेगा अवार्ड। और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीटर वीप 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में महिलाओं के कानूनी अधिकार विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी एडवोकेट नाजिया नफीस। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फ़ोन नंबर 0532-2970462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर पुनः सुन लीजिए 0532-2970462 और 0532-242-3649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं विदुषी बागेश्वरी देवी का उपशास्त्रीय गायन। राग है मिश्र जोगिया में ठुमरी।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी बागेश्वरी देवी का उपशास्त्रीय गायन राग था मिश्र जोगिया में ठुमरी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश गान।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। एक सूचना सुनिए। गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में महिलाओं के कानूनी अधिकार विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी एडवोकेट नाजिया नफीस। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक पूछ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2970 और 0532242649 पर पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर पुनः सुन लीजिए

0: 2970462 सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी।

0: Şırma. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्य

0: एम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
2: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
1: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
3: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
4: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा।

0: पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
2: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो गोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टरडेम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this

कृष्णन के साथ शामिल हुए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के वजीर दिफा शिनजिरो कोइजुमी के साथ दोतरफा मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी, स्ट्रेटिजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में मजीद इजाफा होगा और भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेकाम और सिक्योरिटी को फरोग मिलेगा। दोनों वुजरा बहरी सलामती के सिलसिले में बाहमी तआवुन और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत दिफाई साजो सामान और टेक्नोलॉजी से मुतालिक करीबी इश्तराक के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। वजारत दिफा ने कहा है कि इस मीटिंग से दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी तआवुन को मजीद बढ़ाने का रोड मैप तैयार करने का मौका फराहम होगा। भारत में अमेरिका के सफीर सर्जियो गोर ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू और कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा करार दिया है और कहा है कि मरकज़ और रियासत की हुकूमतों ने जम्मू और कश्मीर में सलामती की सूरत हाल को बेहतर करने से मुतालिक कई इकदामात किए हैं। अमरीकी सफीर कल श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुलाकात के दौरान भारत अमरीका ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज की गई और उन शोबों पर गौर व खौज किया गया जहाँ अमरीका जम्मू और कश्मीर के साथ मसरूफ अमल हो सकता है। जनाब अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि मुलाकात के दौरान मुस्बत मसरूफियात और मुस्तकबिल के इश्तराक पर जोर दिया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। बांग्लादेश में आज सदारती इंतखाबात मुनक़िद होंगे जिसमें अरकान पार्लियामेंट हुक्मरान बीएनपी के मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद में से किसी एक को मुल्क के सदर के ओहदे के लिए मुंतखब करेंगे। बांग्लादेश में 35 साल बाद सदारती ओहदे के लिए पहली बार वोट डाले जाएंगे। वोटिंग मुल्क की पार्लियामेंट जातीय संसद में आज दिन में 2 बजे से 5 बजे तक होगी। बीएनपी पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए आलमगीर ने बीएनपी के अरकान पार्लियामेंट से आज के सदारती इंतखाब में उन्हें वोट देने की अपील की। मुंतखब सदर को कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के सदर के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना के करीबी साथी मोहम्मद शिहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत कार मुकम्मल होने से पहले ही सेहत से मुतालिक वजूहात की बिना पर गुज़श्ता माह अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आज सदर के ओहदे के लिए वोट डाले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई मुआशी जंग शुरू करने का ऐलान किया है। ट्रूथ सोशल पर की गई पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमरीका के साथ समझौता करने के कई मौके दिए गए, ताहम ईरान ऐसा करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन अब तेहरान के खिलाफ मुआशी जंग और अलग थलग करने की ऐसी मुहिम का आगाज़ करेगा जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर सज़ा देने की भी धमकी दी। उन्होंने खबरदार किया कि कोई भी मुल्क जो ईरान के माली इदारों, कारोबार, हवाई अड्डों और हुकूमती एजेंसियों की मदद करेगा, उसे संगीन इक्तिसादी नतायज का सामना करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि इन इकदामात का मकसद तेल के स्मगलिंग नेटवर्क, मुआशी लेन देन, मकानात के लेन देन, बहरी जहाज़ों की रजिस्ट्री और फ्रंट कंपनियों समेत ईरान की इक्तिसादी शहरक को निशाना बनाना है। सदर ट्रंप ने नए इकदामात को मुआशी डी डे करार देते हुए अमरीकी इत्तेहादियों से अपील की कि वो ईरान को अलग थलग करने में वाशिंगटन का साथ दें। ट्रंप ने मजीद कहा कि इस मुहिम का मकसद बैरून मुल्क फाइनेंस और मदद की ईरान की सलाहियत को कमज़ोर करना है। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब तेल की आलमी आमद व रफ्त की अहम तरीन आबी गुजरगाह आबनाए हुरमुज़ पर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुरमुज़ खुली रहेगी। ट्रंप ने दावा किया कि आबनाए हुरमुज़ की अमरीकी बहरी नाकाबंदी बेहद मुअसर रही। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल UNSC में फौरी इस्लाहात का मुतालबा किया है और कहा है कि सलामती काउंसिल के ढांचे और फैसला साजी के अमल में मौजूदा दौर की आलमी हकीकतों की अक्कासी होनी चाहिए और तरक्की पजीर मुल्कों को ज़्यादा नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। कामकाज के तरीक़ाकार से मुतालिक UNSC के खुले मुबाहिसे के दौरान इजहार ख्याल करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में भारत की शाज़े दाफ़े योजना पटेल ने जोर देते हुए कहा कि इस्लाहात की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा

0: वाजे तौर पर महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि साल 1945 से अक्वामे मुत्तहिदा के अराकीन की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। मोहतरमा पटेल ने दलील दी कि सलामती काउंसिल को उस दौरे के हालात के मुताबिक तरतीब देनी नहीं दी जा सकता। दिल्ली में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नज़रसानी SIR में दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 अगस्त कर दी गई है। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल अफसर के मुताबिक नज़रसानी शुदा शेड्यूल के तहत 31 अगस्त को इंतखाबी फहरिस्तों का मुसव्वदा शाये किया जाएगा। दावे और एतराज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। इन एतराज़ात से निमटने का अमल 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा, जिसके बाद 4 नवंबर को हतमी वोटर फहरिस्त शाये की जाएगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज छत्तीसगढ़, मशरक़ी मध्य प्रदेश और मग़रबी उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, ज़ैली हिमालयाई मग़रबी बंगाल और शिमाल मशरक़ी भारत के हिस्सों में कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में दिन के दौरान गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज़ हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। शिमाली ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल लगातार संगीन बनी हुई है, जहां बारिश में कमी के बावजूद भद्रक, केंद्रपड़ा, बालासोर, मयूरभंज और क्योंझर ज़िले पानी में डूबे हुए हैं। सुबर्णरेखा नदी से मुतालिक तशवीश जारी है, जो आज सुबह राजघाट पर 10.36 मीटर के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। FIH हॉकी आलमी कप के पूल डी के आखिरी मैच में ख्वातीन की भारतीय टीम का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। बैडमिंटन में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जारी BWF आलमी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी आज प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा इनकलाब ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में इदारा जाती असलाहत पर जोर देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि हमारा फ़र्ज़ है कि एक ऐसा मुतहरिक इदारा बने जिस पर मुल्क को फ़ख्र हो। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है कि झारखंड में 26 दिनों से जारी तलबा का एहतजाज ख़त्म। वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन वज़रा के एक वफ्द के हमराह सिंगापुर रवाना। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। मोहतरमा सीतारमन चौथे भारत सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल में शिरकत करने वहां पहुंची हैं। रोजनामा प्रताप की ही एक और अहम सुर्खी है कि दिल्ली में SIR की तारीख फिर बढ़ी।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों का इहाता करने वाले 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह नंबर 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा सेक्शन को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवालम में जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज का चौथा दौर आज सिंगापुर में मुनक़िद होगा। बांग्लादेश में नए सदर के इंतखाब के लिए आज वोट डाले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान किया है। ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर सजा देने की भी धमकी दी है। और FIH हॉकी आलमी कप में पूल डी के आखिरी मैच में आज खवातीन की भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं।

0: विज्ञापनों की बुकिंग
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सभी सुनने वाले श्रोताओं को सोनम का प्यार भरा नमस्कार। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां जीवन के हर क्षेत्र के लोग अपने मतभेदों के बावजूद एकता और सद्भाव की भावना से एकजुट हों। एक ऐसी दुनिया शायद एक दूर का सपना लगे, लेकिन यही विचार सद्भावना दिवस की नींव है। श्रोताओं, आज है 20 अगस्त। हर साल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में शांति, राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिनकी जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है, न केवल एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे बल्कि एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रबल समर्थक थे। लोगों को एकजुट करने के लिए वे वास्तव में समर्पित थे। वे समझते थे कि सभी का मिलजुल कर रहना और साथ मिलकर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। सद्भावना दिवस का उत्सव एक समावेशी समाज के आदर्शों के अनुरूप है, जो एक ऐसे राष्ट्र की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो न्याय, सहानुभूति और समझ के सिद्धांतों का सम्मान करता है।

सद्भावना दिवस प्रतिवर्ष राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना देखा था। उनके अनेक आर्थिक और सामाजिक कार्यों में उनके इस सपने की झलक मिलती है। उनके सपनों और राष्ट्र को विकसित की ओर ले जाने के लिए किए गए उनके सामाजिक और आर्थिक कार्यों को याद करने के लिए सद्भावना दिवस की स्थापना की गई। सद्भावना दिवस बच्चों को सद्भाव और सहानुभूति का महत्व सिखाने का एक उत्तम अवसर है। इससे उन्हें समाज के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद मिलती है। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उन्हें विश्व के लिए सद्भावना राजदूत माना जाता था। युवावस्था से ही उनके विचार आधुनिक थे। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपक्रमों के माध्यम से एक विकसित राष्ट्र की अवधारणा को आगे बढ़ाया। उन्होंने देश की प्रगति में अपना योगदान दिया, जो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी IT और कंप्यूटर के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। गांवों तक टेलीफोन नेटवर्क पहुंचाने के लिए PCO बूथों का विस्तार किया। युवाओं को राजनीति में जोड़ने के लिए वोट देने की उम्र 21 साल से कम करके 18 साल की। 1986 में उन्होंने पूरे भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की। उन्होंने 6 से 12 तक मुक्त स्कूल शिक्षा प्रदान करके समाज के ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली, एक केंद्रीकृत सरकारी स्कूल की स्थापना भी की।

0: श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर। कल आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए कार्यक्रम को समाप्त करने की। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति थी अभयकांत तिवारी की।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: वाह, अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: UP 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
4: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता

0: शादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
1: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
0: यूपी 112 की ओर से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
1: शहर या देहात, दिन हो या रात, यूपी 112 है आपके साथ।
0: यूपी 112, नंबर 1, सेवाएं अनेक।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने, रचना है समीर की।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, लीजिए अब सुनिए सोचा ना था फिल्म का ये गीत। सोनू निगम और संजीवनी की आवाज़ों में संगीत दिया है संदेश शांडिल ने और रचना है इरशाद कामिल की।

0: पाठ्यक्रम की गहरी समझ बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह पहल विज्ञान, शिक्षा और सस्टेनेबिलिटी को जोड़कर हरित और जागरूक भविष्य की दिशा में प्रेरित करती है। इसके लिए उन्होंने संस्थान के निदेशक और वैज्ञानिकों की प्रशंसा की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के छात्र अब घर बैठे अपने कार्यों का निस्तारण करा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा के लिए ऑनलाइन फेसलेस स्टूडेंट सिस्टम पोर्टल की शुरुआत की है। अब छात्र परीक्षा सहित अन्य कार्यों को ऑनलाइन माध्यम से करा सकेंगे। विश्वविद्यालय से पूरे प्रदेश में 750 से अधिक संस्थान जुड़े हैं। कई बार छात्र परीक्षा से संबंधित रिजल्ट में सुधार, अंक पत्र अपडेट करने सहित डिग्री से जुड़े कामों के लिए विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर या नोएडा परिसर पहुंचते हैं, जिससे असुविधा होती है। अब ये कार्य ऑनलाइन होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने बताया कि स्टूडेंट्स को अपने कार्य और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसके बाद छात्र को एक विशिष्ट ग्रीवांस नंबर मिल जाएगा। इस विशिष्ट नंबर से छात्र अपने कार्य की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। सावन माह के प्रत्येक सोमवार को लखनऊ के मशहूर मनकामेश्वर, बुद्धेश्वर और कोणेश्वर सहित विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। प्रशासन ने प्रमुख मंदिरों और उनके आसपास के रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है, जो कि पूरे महीने लागू रहेगा। सावन के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी मनाई गई। इस अवसर पर शहर के ग्रामीण इलाकों में विशेष दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें पहलवानों ने जोर आजमाइश की। इमाम हुसैन का चहलुम 4 अगस्त को लखनऊ में गम के माहौल में मनाया गया। राजधानी में चहलुम के अवसर पर निकले ऐतिहासिक जुलूस में हजारों की संख्या में अदादारों ने भाग लिया और आंसू बहाकर इमाम को अपना पुरसा पेश किया। चहलुम का जुलूस विक्टोरिया स्ट्रीट स्थित नाजिम साहब के इमामबाड़े से शुरू होकर तालकटोरा की करबला पर जाकर खत्म हुआ। जुलूस से पहले एक मजलिस भी आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों को बढ़ी हुई वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसे आजादी के बाद देश का सबसे महत्वाकांक्षी खेल विकास कार्यक्रम बताया है। लखनऊ निवासी और अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन में देश के लिए स्वर्ण पदक सहित कई पदक जीतने वाले खिलाड़ी अबू हुबैदा ने सरकार के इस फैसले की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और वह देश के लिए अधिक संख्या में मेडल जीत पाएंगे। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कराई जाने वाली यूपी T20 लीग के चौथे संस्करण की शुरुआत 14 अगस्त 2026 को हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इकाना स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उन्होंने पहले मैच के टॉस के लिए सिक्का उछालकर लीग की औपचारिक शुरुआत की। इस बार लीग का आयोजन लखनऊ और कानपुर दो स्थानों पर किया जा रहा है। लीग के चेयरमैन डॉक्टर संजय कपूर ने बताया कि 22 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जबकि फाइनल सहित 12 मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएंगे। लीग में लखनऊ फाल्कन्स, कानपुर सुपर स्टार्स, मेरठ मैवरिक्स, नोएडा किंग्स, काशी रुद्रास और गोरखपुर लायंस टीम भाग ले रही हैं।
1: लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का।
2: जौनपुर में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास, गरिमा एवं देशभक्ति की भावनाओं के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुआ। राज्य मंत्री समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मना रहा है। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने, वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों के त्याग, बलिदान, संघर्षों के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों और एवं अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हम उनके आदर्श और त्याग से प्रेरणा लेकर देश की एकता, अखंडता, समृद्धि एवं विकास के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विकास में प्रत्येक नागरिक को महत्वपूर्ण भूमिका है तथा हमें अपने कर्तव्य को ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ निभान करते हुए देश के विकास में

0: योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश में चौमुखी विकास हो रहा है, सेमी कंडक्टर समेत हर क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या कहते हैं गिरीश चंद यादव?
1: प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी क्षेत्रों में भारत अग्रणी भूमिका में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, रक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में भारत कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
0: जिलाधिकारी सैमुअल पाल के द्वारा तहसील बदलापुर और सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र का अचूक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही समस्त सुविधाओं और दवा वितरण, चिकित्सा, पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति, साफ सफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं को जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि शासन के मंशा के अनुरूप आम जनमानस को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार के असुविधा न हो, चिकित्सा एवं के समय से उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनी रहे तथा जांच एवं उपचार की सुविधा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सरकारी स्वास्थ्य संसाधनों में आम जन को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी का स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं में सुधार एवं जनमानस में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरीक्षण की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि निरीक्षण में पाई गई कमियों को तत्काल दूर कर अनुपालन उपलब्ध कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई शिकायत पुनर्वित न हो। साइबर क्राइम थाना सेल जौनपुर जनपद के द्वारा साइबर के सेल पुलिस टीम के द्वारा CER पोर्टल के माध्यम से 200 गुमशुदा मोबाइल की कीमत 45 लाख रुपए, अब तक कुल 1941 मोबाइल जो कीमत 3,90,00,000 रुपए की बरामद कर चुके हैं। मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम थाना जनपद जौनपुर द्वारा CER पोर्टल के माध्यम से 200 गुमशुदा मोबाइल जो जिसकी कीमत 45 लाख रुपए के मोबाइल फोन को बरामद मोबाइल स्वामी कर्मियों को सुपुर्द किया गया। अब तक जिले में कुल 1941 मोबाइल बरामद की गई जिसकी कीमत कुल 3,90,00,000 रुपए है। मोबाइल फोन स्वामी कर्मियों को सुपुर्द किया जा चुका है। गुमशुदा मोबाइल के प्रार्थना पत्र CEIR पोर्टल के आधार पर साइबर क्राइम थाना जौनपुर पुलिस टीम के द्वारा पीड़ितों को गुम मोबाइल 200 मोबाइलों में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र से व थाना के साइबर सेल द्वारा बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद वाराणसी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बलिया, प्रतापगढ़, भदोही से मोबाइल फोन बरामद किए गए। कुछ मोबाइल फोन अन्य प्रांत जैसे दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, राजस्थान से बरामद किया गया जिसका बाजार मूल्य लगभग 45 लाख रुपए है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बरामद शुदा मोबाइल स्वामियों को वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन गायब होने की दशा में तुरंत गुमशुदगी दर्ज कराने के उपरांत CER पोर्टल के शिकायत करें। साइबर क्राइम से बचाव सबसे प्रभावी उपाय जन जागरूकता एवं सतर्कता है। साइबर अपराधों के शिकार होने पर तत्काल 1930 पर ऑनलाइन शिकायत करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत पंजीकृत करें। अपने नजदीकी थाने के साइबर हेल्प डेस्क पहुंचकर लिखित शिकायत करें। खोया हुआ मोबाइल वापस मिलाने में सभी मोबाइल सर्वियों को प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जौनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया। जिलाधिकारी समीप पाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के द्वारा थाना बरसट्टी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, कार्यालय, अभिलेख, माला खान, बैरक तथा अन्य व्यवस्थाओं को जायजा लिया गया तथा संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शिकायत एवं विवेचना में गुणवत्तापूर्ण संबंध निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया गया। इस अवसर पर थाना परिसर में नवनिर्मित भोजनालय का उद्घाटन किया गया। भोजनालय की व्यवस्था में निरीक्षण करते हुए साफ सफाई एवं स्वच्छता विशेष ध्यान रखने तथा पुलिसकर्मियों को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा थाना परिसर में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आम जन मानस की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निष्पक्ष एवं त्वरित निस्तारण करने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले की हलचल।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान शम्सुल आरिफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम यानी सेहतनामा में आप सबका खैर मकदम है। आज के प्रोग्राम के लिए आप सब अपने रेडियो सेट के करीब हो जाइए, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सारे इंसानों को जन्म देने वाली, हमारे वीरान घरों को जन्नत बनाने वाली, नई नस्लों की तरबियत करने वाली और मुस्कुराकर अपनी परेशानियों को छुपाने वाली यानी औरत की। सामिन, औरत कभी माँ की शक्ल में, कभी बहन की शक्ल में, कभी बीवी की शक्ल में और कभी बेटी की शक्ल में हमारी जिंदगियों को मुकम्मल बनाती हैं। मगर अफसोस, अक्सर ख्वातीन अपने गमों को और मसाइल्स को छुपा ले जाती हैं, जिससे उनकी सेहत खतरे में पड़ जाती है। इसलिए आज हमने अपने सेहतनामा की खुसूसी थीम रखी है मसाइले ख्वातीन। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नाज़िश बानो, जनरल फिजिशियन तिब्बे यूनानी।

0: डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है।
1: जी बहुत शुक्रिया।
0: डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज के दौर में औरतों की सेहत से मुतालिक क्या क्या मसाइल हैं?
1: देखिए, आज का जो दौर है उसमें औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले ज़माना था कि औरतें घर में महदूद थीं, घर के कामों में रहती थीं, लेकिन आज औरतें बाहर भी निकलती हैं और बाहर की भी जिम्मेदारियाँ उठाती हैं। तो इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में उनके सेहत पे भी बहुत असर पड़ता है। तो धीरे धीरे जब ये मसाइल बढ़ते हैं तब पता चलता है कि हाँ, ये परेशानियाँ हैं। तो आमतौर पर जो आजकल की औरतें जिन बीमारियों से लड़ रही हैं उसमें PCOS, हार्मोनल इम्बेलेंस
0: जी,
1: और खून की कमी, हड्डियों की कमजोरी, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द।
0: अभी एक बात कही, PCOD और PCOS।
1: जी जी
0: अब ये PCOD और PCOS है क्या और इनमें फर्क क्या है, इसका इलाज क्या होना चाहिए, A to Z जो इसकी चीजें हैं वो आप हमारे सामने इनको जरूर बताएं।
1: ये PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। ये हॉर्मोन्स की जो इरेगुलरिटी या इसको इम्बेलेंस कह लीजिए, ये होता है। ये औरतों में खासतौर से उनका लाइफस्टाइल जो होता है उस पर डिपेंड करता है।
0: जी।
1: और ये वजह भी यही है कि जो आजकल की लाइफस्टाइल है, जो खाना है आजकल का, और औरतें ज़्यादातर घर में रहती हैं, एक्टिविटी कम है और उनका खाना ऐसा है कि शुगर की मात्रा ज़्यादा है, देखती नहीं मैदा है, तो इन सबसे हॉर्मोन्स में गड़बड़ी पैदा होती है। और इससे क्या होता है, पीरियड्स से रिलेटेड कई तरह की परेशानियाँ होती हैं, जैसे ओलिगोमेनोरिया की पीरियड्स का कम आना, देर से आना, पीरियड्स के समय दर्द होना, डिसमेनोरिया और इस तरह की परेशानियाँ बढ़ती हैं।
0: ये PCOD और PCOS क्या दोनों एक ही चीज़
1: जी? लगभग बहुत ज़रा सा फ़र्क है। PCOS जो सिंड्रोम होता है, इस तरह का एक उनका फेज होता है, एक नेचर होता है, ये PCOS होता है। अगर वही बीमारी का रूप ले ले, जैसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सही से नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो ये एक डिजीज़ बन जाती
0: क्या
1: है।
0: क्या ये ओवेरियन पर, यानी कि उस जगह पर गांठ होती है, कैसे, मतलब इसको थोड़ा हमारे तमाम सामयीन को आप जरा बताएं, क्योंकि वो कई बार मेडिकल टर्म्स या ऐसी जबान नहीं समझते हैं। हम चाहते हैं आप उस पर भी रोशनी डालें कि ये सिस्टिक जो सिस्ट है, ये गांठ होती है कैसे, मतलब
1: ये ओवरी जो औरतें का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो, अगर उनका हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो बेस होगा वो ओवरी मानते हैं।
0: हाँ हाँ, बच्चेदानी की
1: जी, बच्चेदानी ओवरी जो होती है वो अंडे बनाती है
0: बिल्कुल
1: औरतों के जिस्म में। और वो जो ओवरी में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, और कभी कभी जिसमें फ्लूइड भर जाता है, पानी भर जाता है, वो सिस्ट बन जाती हैं।
0: ठीक है।
1: और धीरे धीरे, वैसे तो ये खत्म हो जाती हैं, इसमें डरने की बात नहीं है, 1 से 3 महीने लगता है ये बनती हैं, खत्म होती रहती
0: हैं
1: जी बिल्कुल, और इसमें डरने की कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी ये जो गांठें होती हैं ये थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। यूट्रस जो कि रहम होता है औरतों का, जो गर्भाशय होता है जिसमें बच्चा जन्म लेता है, तो जो उसकी दीवार होती है उससे चिपक करके उसकी परत को मोटी करती रहती हैं और उसमें खून है, फ्लूइड है, ये सब जमा होने लगता है और ये एक फाइब्रॉइड का रूप ले लेता है, तब ये खतरनाक हो जाता
0: मतलब
1: है।
0: मतलब अगर वो ट्यूमर बनने लगता है तो क्या उसको ऑपरेशन कराना पड़ता है?
1: नहीं, उसके लिए जांचें करवाइए, देखिए कि वो ऑपरेशन के लायक है। कभी कभी वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, लाइफस्टाइल में चेंज करने से, थोड़ा एक्टिविटी बढ़ाने से, एक्सरसाइज करने से, खाने पीने की कुछ चीज़ें ऐसी लेने से वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाता है। अगर वो बना हुआ है, वो तकलीफ़ दे रहा है, तब हम आगे का ये सोचते हैं कि उसको ऑपरेट करवाने की ज़रूरत है।
0: इन गांठों की मैडम पहचान कैसे करें? आम आदमी जिसको अभी ना अल्ट्रासाउंड का पता है, ना वो खून की जांच करा रहा है, तो कैसे उसको पता चलेगा कि उसको ऐसी दिक्कत है या अगर दर्द हो रहा है, क्या इसके सिम्टम्स क्या हैं, वो आप हमारे सामने को बताएं।
1: हाँ देखिए, सबसे पहला सिम्टम्स तो पीरियड ही की गड़बड़ी हो जाएगी। औरतों की जो महावारी है, जो मासिक धर्म है, वो गड़बड़ हो जाएगा। कभी 15 दिन में आ गया, कभी 2-3 महीने में एक बार हो रहा है, कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। उनको पेट के एक तरफ दर्द बढ़ जाता है, भारीपन महसूस होता है, कभी कभी उल्टी जैसा लगता है।
0: जी जी।
1: तो इस तरह के लक्षण होते हैं, तब औरतें आती हैं और अपनी तकलीफ बताती हैं, तो उनकी हिस्ट्री लेकर के अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी हो जाता है।
0: जी जी।
1: तो उसमें फिर ये आ जाता है कि आपके सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, बल्कि यूट्रस है
0: जी।
1: इस तरह की
0: अगर ऐसी चीजें हैं, PCOD हो
1: जी,
0: या खाली सिस्ट हो या बल्कि यूट्रस हो, तो ऐसी चीज में हैज पर प्रॉब्लम आती है, हैज की परेशानी
1: बिल्कुल,
0: बढ़ जाती है, आगे पीछे हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: अभी आपने एक चीज बताई थी एनीमिया, कि ऐसा आजकल की ख्वातीन में अक्सर हो रहा है। एनीमिया क्यों होता है, इसकी बड़ी वजह क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है?
1: कि एनीमिया मीन्स हीमोग्लोबिन कम हो जाता है ब्लड में, और

0: औरतों में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो हर महीने उनके साथ जो एक
1: जी जी जी
0: मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली फेज़ होती
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: उसमें
1: बिल्कुल
0: ब्लड लॉस होता है, प्लस वो थोड़ा खाने पीने में गैर जिम्मेदार होती हैं, अच्छी चीज़ें नहीं खाती हैं जो कि ताकत देती हैं, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें नहीं खाती हैं।
1: ये
0: और
1: आपका तजुर्बा भी है
0: जी बिल्कुल
1: भाई,
0: तजुर्बा,
1: आप तो इसको बहुत अच्छे से जानती हैं और आप
0: बिल्कुल
1: बता सकती
0: मेरे
1: हैं
0: पास लड़कियां आएंगी चाट बताशा टिक्की ज़रूर खाएंगी लेकिन पालक
1: बिल्कुल
0: और सब्जियां नहीं खाएंगी, फ्रूट्स नहीं खाएंगी,
1: बिल्कुल
0: कहेंगी अरे फल तो खाती नहीं है
1: जी
0: ये,
1: जी
0: तो उनको हमको समझाना पड़ता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं।
1: हाँ
0: आज अगर आप ये अपने आप को ज़िंदगी में शामिल कर लेंगी तो आगे जा करके आपकी बॉडी मजबूत रहेगी।
1: बिल्कुल सही बात है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी आपने बच्चियों की बात की है, 12, 13, 14 साल की बच्चियों को किस तरह की परेशानी आती है, बिलखुसूस इसी मौजू पर जिस पर
0: जी
1: हम बात
0: जी
1: कर रहे हैं,
0: हाँ
1: अय्याम हैज़ में उनको किस तरह की परेशानियां सामने आती हैं, दरपेश आती हैं?
0: अक्सर मेरे पास लड़कियां 12-13 साल की आती हैं और उनकी मदर्स कहती हैं कि बहुत अभी पीरियड शुरू हुआ, 1-2 महीना, 5 महीना, 6 महीना,
1: जी
0: उसके दर्द बहुत ज़्यादा होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है और थोड़ा लड़कियां स्ट्रेस में रहती हैं, डिप्रेशन में रहती हैं, उनको ये सोच करके कि ये शुरुआत क्या हुई है कैसी है,
1: उनको अभी पता भी नहीं
0: हाँ
1: होता
0: तो
1: पूरी
0: एक ये जो
1: तरीके से।
0: सोच होती है उसकी वजह से वो स्ट्रेस में भी रहती हैं और उनको दर्द तकलीफ़ होती है उस दौरान, और खून की भी कमी होती है, वीक होती हैं, तो इस तरह की परेशानियां ज्यादा होती हैं, मतलब डिसमेनोरिया,
1: जी जी जी
0: पॉलीमेनोरिया,
1: जी जी जी जी ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे पहले ही ऐसे दर्द शुरू हो जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: एब्डोमिनल पेन,
0: क्रैम्प
1: फेफड़ों
0: शुरू
1: पे
0: हो
1: दर्द
0: जाते
1: होना,
0: हैं,
1: कमर पे
0: बिल्कुल
1: दर्द होना। एक चीज़ और डॉक्टर साहिबा सामने आती है, अक्सर गांव के इलाके में जब भी ऐसी दिक्कतें होती हैं तो लड़कियां जाकर मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन्स
0: जी
1: ले
0: पेन
1: लेती हैं,
0: किलर्स ले
1: पेन
0: लेती
1: किलर्स जैसे
0: हैं
1: वो
0: सिंपली,
1: डाइसाइक्लोमिन,
0: बिल्कुल
1: मैफेनामिक
0: बिल्कुल,
1: एसिड, ये ले लेते हैं, क्या ये सही है?
0: इसको अगर आम तौर पे लिया जाने लगेगा तो ये नुकसान ही करेंगी।
1: जी
0: और मेरे पास जब अगर बच्चियां आती हैं ख़ास तौर से 12-13 साल की और डिसमेनोरिया बताती हैं, तकलीफ़ बताती हैं पीरियड्स के दौरान, तो सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि हम उनकी काउंसलिंग करते
1: बिल्कुल
0: हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है और हर लड़की के साथ होता है और इसमें तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी शुरुआत है, धीरे धीरे ये सब नॉर्मलाइज हो जाएगा।
1: जी
0: और बहुत तकलीफ़ हो तो गर्म पानी की बॉटल से हम सिकाई बताते हैं कि पेल्विक साइड पे आप सिकाई कर लीजिए पेट की, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो 1 या 2 खुराक के हम रिकमेंडेशन करते हैं, इसके अलावा हम मना करते हैं कि कोशिश करो बगैर दवा के तुम ये 2 दिन झेलने होते हैं, उसके बाद 5 दिन जो आगे गुजरने होते हैं वो आराम से गुजर जाते हैं।
1: जी
0: और कभी कभार लड़कियां मेरी बात समझती हैं और खुद ही कहती कि अब हम दवा नहीं खाते हैं।
1: बिल्कुल, बच्चियों की हमने बात की, लेकिन अब एक सवाल आ रहा है, जो 40+ की ख्वातीन हैं जो मेनोपॉज के दौर से गुजर रही हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए खास मशवरा आप क्या देंगी?
0: हमारे इंडिया में 45 से 55 साल की उम्र जो बीच का दौरान होती है वो मेनोपॉजल स्टेज मानी जाती है
1: जी
0: औरतों की, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो जाता है पीरियड्स नहीं आता तो वो मेनोपॉज में मानी जाने लगती है, और उससे 2-4 साल पहले का जो टाइम होता है वो पेरी मेनोपॉज कहलाता है, यानी उसमें सिम्टम शुरू हो जाते हैं, और ये एक बहुत टफ फेज होती है इन महिलाओं के लिए, उसमें कई चीज़ें होती हैं, कई बदलाव होते हैं जिससे उनको गुजरना पड़ता है,
1: जी
0: और कई महिलाएं जो होती बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलती, कई महिलाएं आसानी से पार कर लेती हैं। और इसमें क्या होता है कि जब पीरियड्स रुकने लगते हैं तो हार्मोन्स कम होने लगते हैं, हार्मोन का लेवल कम होने लगता है, और इस्ट्रोजन हार्मोन हमारी हड्डियों की डेंसिटी को भी बढ़ाता है,
1: बिल्कुल
0: तो इसका नतीजा ये होता है कि हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, जिसकी वजह से उनके कमर में दर्द, घुटने में दर्द, काम में दिल नहीं लगता है, थकावट महसूस होती है, तो इस तरह की परेशानियां आती हैं इन औरतों में।
1: जब अभी मैं इस प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो एक खातून मिली और उन्होंने मुझे अपनी परेशानी बताई, जब उन्हें पता चला कि मैं एक लेडीज़ डॉक्टर से बात करने जा रहा हूँ,
0: जी
1: गुफ्तगू
0: जी
1: करूँगा अपने प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने एक अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई और कहा कि डॉक्टर साहिबा से ज़रूर मेरे बारे में जिक्र करना। उनकी
0: जी
1: उम्र 60 साल है लेकिन अचानक उनको 2-3 दिन से हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और इस कदर होती है कि वो बता रही थी कि अय्याम हैज़ में भी उनको ऐसी ब्लीडिंग नहीं हुई जैसी अब हो रही है
0: अच्छा
1: और उनको वही एब्डोमिनल पेन हो रहा है और सारी दिक्कतें जो
0: जी
1: आमतौर पर
0: जी
1: होती है।
0: जी
1: उन्होंने USG कराई अपनी, तो उसमें बल्कि यूट्रस वगैरह और एंडोमेट्रियम वगैरह कुछ जमा हुआ था, गाढ़ा हुआ था, उनका जो TSH लेवल था वो 5 से ऊपर जा रहा था। ऐसी सूरत हाल में उनको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए और किस तरह से उनको अपने आप को मेंटेन करना चाहिए कि ये परेशानी भी उनकी चली जाए और जो दोबारा ना आए?
0: देखिए वो आप बता रहे 60 साल की
1: जी
0: एज उनकी आप बता रहे हैं और उनको पीरियड्स रुक गए होंगे, हमें लग
1: यकीनन
0: रहा 5-4 साल
1: बिल्कुल
0: हो गया
1: बिल्कुल
0: होगा,
1: बिल्कुल
0: लेकिन उनकी एकदम हैवी ब्लीडिंग हुई है, तो ये देखिए सोचने की विषय है और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: और उनको बता दिया एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम की बहुत सी डिजीज होती है, एंडोमेट्रियम पॉलिप बन जाता है और ये कैंसरस भी हो सकता है, तो इसको रूल

0: आउट कराने की बहुत ज़रूरत है। तो फौरी तौर पे तो उनको कुछ ऐसा जो ब्लीडिंग को रोके, जैसे ट्रेनेक्सिमिक एसिड है, इथामसिल है, इस तरह की दवाइयाँ लें, और अगर ब्लीडिंग रुक जाती है तो किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से परामर्श लें, और हो सकता है इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत हो, या फिर ये हार्मोन थेरेपी से भी ठीक हो सकता है, तो लेकिन इसमें डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है।
1: उनका यूरिन आयरन जब कराया गया तो उसमें पस सेल्स अच्छी खासी लेवल में मिल रहे थे,
0: मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन है उनके।
1: यूटीआई भी हो सकता है?
0: बिल्कुल, यूटीआई हो सकता है, यूटीआई की वजह से ये परेशानी भी हो सकती है।
1: जी जी।
0: और अगर पस सेल्स आई हैं तो उसमें इन्फेक्शन है, तो उसको भी यूरिन के एग्जामिन करवाएं, और जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट उसके लिए जरूरी है वो लें, लेकिन बगैर डॉक्टर की देखरेख के,
1: मतलब डॉक्टर साहब अगर मशवरा दें तो जरूर उसको ट्रीटमेंट में लेना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बात करते हैं पुख्ता उम्र की औरतों के लिए, क्योंकि सेहत कुदरत का एक नायाब तोहफा है और इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। पुख्ता उम्र की औरतों को किस तरह के टेस्ट रेगुलर कराने चाहिए?
0: देखिए, हाँ, एक एज के बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर 6 महीने पे आप रूटीन चेकअप करवाएं।
1: जी।
0: जिसमें हर साल में या हर 2 साल में हम एक सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बहुत होते हैं, औरतें आखिर में उनके कैंसर की शिकायत, सर्वाइकल कैंसर जो औरतों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें नीचे का हिस्सा होता है, उसको सर्विक्स कहते हैं, अक्सर उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो कैंसर का रूप ले लेता है। शुरुआत में औरतें इग्नोर करती हैं, बताने में शर्म महसूस करती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये कैंसर का भी रूप ले सकती है। तो एक पैप स्मेयर टेस्ट होता है जिसमें इसके जाँच होती है, वो ज़रूर करवाना चाहिए 1 या 2 साल में, और विटामिन डी और B12 की जाँच ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि हड्डियाँ दिन ब दिन कमजोर होती रहती हैं, तो इसके लिए सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हर साल एक बार इसका भी टेस्ट करवाएं। और लड़कियों में और औरतों में भी खासतौर से ब्रेस्ट कैंसर के भी केसेस बढ़ रहे हैं, ये अवेयरनेस की कमी की वजह से है, तो कोशिश करना चाहिए कि हर 2 साल में मैमोग्राफी करानी चाहिए, और कोशिश करके सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। पुख्ता उम्र की है तो थायराइड, BP, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की भी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो चर्बी पेट के आसपास जमा होनी शुरू हो जाती है, तो मोटापा बढ़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, BP है, थायराइड है, शुगर, ये सब जरूर चेक करवाने चाहिए।
1: आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात की है,
0: जी,
1: क्या आम तरह की गांठें जो पिस्तान में होती हैं,
0: जी,
1: क्या वो गांठें भी कैंसर हो सकती हैं? औरतों में ये शिकायत रहती है कि भारीपन है, दर्द महसूस हो रहा है, इनमें भी टेस्ट कराना जरूरी है?
0: नहीं, अगर वो गांठ बनी हुई है, उसमें दर्द हो रहा है और वो मूवेबल, यानी अगर उसको टच करिए तो इधर उधर होती है, अगर ऐसी कंडीशन है और 1-2 महीने के तक बनी हुई है और उसमें ग्रोथ हो रही है, तो ये बिल्कुल सोचने की बात है, चिंता का विषय है, और इसमें जरूर जांच की जरूरत है। हाँ, कभी कभार होता है लड़कियों में न्यूट्रिशन की कमी होती, खाने पीने की कमी होती, तो वो थोड़ी बहुत गांठ इधर उधर लंप्स बन जाते हैं, लेकिन वो 1-2 महीने के बाद दवा लेने से, मल्टीविटामिन वगैरह ही लेने से ठीक हो जाती है, तो लेकिन अगर वो बनी हुई है 1-2 महीने तक, तो सोचने की बात।
1: अच्छा, है। एक ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद अक्सर खवातीन का वजन बढ़ जाता है,
0: जी,
1: ये क्या एक सिर्फ लोगों का कहना है या हकीकत से भी इसका कुछ लेना देना है?
0: नहीं, कहना लोगों का क्या, लोग देखते भी तो है, तो जी हाँ, बिल्कुल तजुर्बा भी है। अगर आप 5 लोगों को लेंगे तो उसमें 3 तो मोटी हो भी जाती हैं और शायद 2-4 मोटी हो जाती हूँ, और
1: वो एक मुकाबला है कि घर में इतना आराम मिल जाता है, हस्बैंड को परेशान करते करते।
0: लेकिन अगर हम अपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो औरतें जब शादी के बाद होती तो चलिए ठीक है, एक मेंटल सुकून हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में, समाज में ऐसा सोचा जाता है जब तक लड़कियों की शादी नहीं हो जाती, जब तक उनका घर नहीं बस जाता, उनकी लाइफ अभी सेटल नहीं हुई है, तो एक मेंटल सुकून तो आ ही जाता है औरतों को कि हाँ चलो मेरी शादी हो गई, अब कोई टेंशन नहीं है, तो एक टेंशन नहीं होता उसमें, ये तो है कि थोड़ा सुकून से इंसान जब खाएगा तो वो जिस्म में लगेगा। इसके अलावा जब प्रेगनेंसी आती है या अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, तो हॉर्मोन्स का फिर इतदाल बिगड़ता है और इसकी वजह से भी मोटापा आता है, प्लस अगर 30 के आसपास की औरतें हैं तो थायराइड का खतरा रहता है, शुगर का खतरा रहता है, आजकल तो बड़ी जल्दी डायबिटीज भी हो जाती है लोगों को।
1: मैडम, यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि शादी के कितने दिनों बाद आमतौर पर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है या हो जानी चाहिए?
0: अगर आप कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव, कुछ आप प्रिवेंशन नहीं ले रही हैं, तो शादी के 2-3 महीने के अंदर ही आप कंसीव कर सकती हैं, अगर आप फर्टाइल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि 2-3 महीने से ज्यादा,
1: और अगर इससे ज्यादा हो तो फिर वो डॉक्टर से मिले।
0: हाँ, अगर 1 साल से ज्यादा, 1 साल तक वेट करना चाहिए और नेचुरल तरीके से सोचना चाहिए, लेकिन अगर 1 साल से भी ज्यादा हो गया तो हाँ, थोड़ा आपको कंसल्ट करने की जरूरत है डॉक्टर से।
1: जो औरतें हामिला हैं, किस चीज का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज उनके लिए सही है या नहीं है, जो अभी 3-4-5 महीने की हामिला है और ऐसी सूरत हाल से वो गुजर रही है, तो उनको क्या करना चाहिए?
0: देखिए, प्रेगनेंसी तो एक अल्लाह का तोहफा है,

0: और प्रेग्नेंट औरतें बीमार नहीं, बहुत आजकल का खैर लोगों का माइंडसेट है कि प्रेगनेंसी है तो वो बीमारों की तरह अपने आप को फील करने लगती है कि हमें काम नहीं करना है, आराम करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेग्नेंट औरतें हैं तो शुरू के 3 महीने खास ख्याल रखना चाहिए, उनको एक अच्छी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए जिसमें दाल, सब्जी, फ्रूट्स, अनाज और नट्स होने चाहिए, दूध, पनीर, इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए। अगर उल्टी मतली जैसी शिकायत है शुरू के 3 महीने में तो ब्रेक ब्रेक करके उनको मील लेना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर पे छोटा छोटा मील लेना चाहिए और शुरू के 3 महीने ख्याल रखें। लेकिन उसके 3 महीने के बाद जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें थोड़ा बहुत काम भी करना चाहिए, घर के सारे काम आप कर सकती हैं। अगर आप नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आप बिल्कुल घर के सारे काम आराम से कर सकती हैं और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इससे आपकी डिलीवरी ही आसान होगी, बाकी और कोई परेशानी नहीं होगी।
1: प्रेगनेंसी से जुड़ी एक और सवाल मेरे सामने आ रहा है, IVF।
0: जी,
1: ये IVF क्या है मैम, इसके बारे में जरूर बताएं।
0: इसका फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है।
1: जी।
0: जो औरतें प्रेगनेंट नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत आ रही है उनकी प्रेगनेंसी में और कभी कभी मेल्स में कुछ कमी होती है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, औरतें कंसीव नहीं कर पा रही है, तो इसमें क्या करते हैं, एक प्रोसीजर होता है, एक मेडिकल टेक्निक होती है जिसमें औरतों के ओवरी से अंडे निकाल करके उसको लैब में मेल स्पर्म के साथ मिलाया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है और जो एम्ब्रियो बनता है उस एम्ब्रियो को वापस उस महिला के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं और फिर जैसे नॉर्मल प्रोसीजर प्रेगनेंसी का होता है उसी तरीके से वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है और वो नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन डिलीवरी ये सब हो जाता है।
1: और हम आपसे ये जानना जरूर चाहेंगे कि इसका टोटल खर्च कितना है, क्या ये पेनफुल है, ये पूरा प्रोसीजर क्या है?
0: इनका खर्चा तो कम से कम 2.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक
1: का
0: होता है, क्योंकि जी ये प्रोसीजर थोड़ा महंगा है और अगर आपको ये इसके लिए जाना है IVF के लिए तो किसी अच्छे संस्थान या अच्छे डॉक्टर से ही करवाएं, क्योंकि अगर अच्छे डॉक्टर करेंगे तभी ये कारगर साबित होगा।
1: डॉक्टर साहिबा, चूंकि स्टूडियो की घड़ी ने इशारा कर दिया है कि हमारा वक्त यहीं पर खत्म हो रहा है, लेकिन चलते चलते एक सवाल और आपसे चाहेंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: व्हाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया क्या ये बीमारी है, इसका इलाज करना जरूरी है या इसको ऐसे ही सही किया जा सकता है?
0: देखिए, छोटी बच्चियों में जो 15 से 20 साल तक की लड़कियां होती हैं, थोड़ा बहुत आमतौर पे वाइट डिस्चार्ज होता है और ये मेनली कैल्शियम की कमी से होता है लड़कियों में। अगर हम तो कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं तो उससे भी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर यही वाइट डिस्चार्ज थोड़ा चिपचिपा, बदबू या बहुत ज्यादा आ रहा है और नहीं ठीक हो रहा है कैल्शियम सप्लीमेंट से भी, तब भी समझ लीजिए इन्फेक्शियस है और इसमें यही एंटीबायोटिक वगैरह, एंटी अमीबिक चलती है और ठीक हो जाता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है, बदबू नहीं है, तो छोड़ सकते हैं इसको, कैल्शियम सीधे खाइए।
1: डॉक्टर साहिबा, इतनी कीमती जानकारी देने के लिए, इतनी मालूमात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाएं। सामईन, ये था हमारा आज का खसूसी सेहतनामा मसाइले खवातीन। इस मौजू पर हमसे बात कर रही थी मोहतरमा डॉक्टर नाजिश बानो साहिबा, जनरल फिजिशियन, तिब्बी यूनानी। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? अपने तासुरात हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। अगर आप अपने पैगाम हमें व्हाट्सएप पर भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दें इजाज़त। आदाब।
2: उर्दू कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश सेहतनामा। मीडियम वेव के मीटर पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। सुबह के 9:50 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज के कलाकार राम अकबाल सिंह वसाथी, इनके स्वर में सुनिए आल्हा गान। प्रसंग है इंदल हरण।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं मनीषा निर्घी।

0: अभी आप मनीषा नेरकी के स्वर में भजन सुन रहे थे। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर

0: चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के अंतर्गत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजन

0: अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार के पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में बनाए गए 2,35,000 आवासों के लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। श्री चौहान पटना के बामेटी में कृष्ण जन कल्याण संवाद में भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की तस्करी और नेटवर्क से निपटने के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान बल के गठन को मंजूरी दे दी है। दुर्गापुर, मालदा, खड़गपुर और नादिया में मादक पदार्थों के खिलाफ चार पुलिस स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने इस पहल के लिए 591 नए पदों को मंजूरी दी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए थे, लेकिन वे विफल रहा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरल, माहे और तमिलनाडु में दिन के दौरान बिजली और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 यानी कि आज प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में महिलाओं के कानूनी अधिकार विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी एडवोकेट नाजिया नफीस। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फोन नंबर 0532297046 और 0532242634 पर पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर पुनः सुन लीजिए 0532297046 और 0532242364 पर। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, बरसात का मौसम आते ही मौसम में एक अलग सी मिठास घुल जाती है। बारिश की रिमझिम फुहारें और सुहानी हवाएं मन को खुश कर देती हैं। ऐसे मौसम में संगीत का आनंद और भी बढ़ जाता है। बारिश की बूंदों में जैसे कोई मधुर संगीत छिपा हो, तो आइए आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा संगीत जब वी मेट फिल्म का, जिसे

बारिश की ये बूंदें हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों का भी अपना एक खूबसूरत संगीत होता है। कुछ गीत सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते, बल्कि सीधे दिल को छू जाते हैं, जिसमें प्यार, एहसास और रिश्तों की मिठास महसूस होती है। तो आइए इन मधुर भावनाओं को संगीत के सुरों में महसूस करते हैं। फिल्म आज कल के साथ, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने, संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लव आजकल फिल्म का ये गीत। राहत फतेह अली खां की आवाज़ थी, संगीत दिया था प्रीतम ने, रचना थे इरशाद कामिल की। जिंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि उस सफ़र को खुलकर जीने का नाम है। कुछ लोग मंजिल की तलाश में निकलते हैं और कुछ सफ़र में ही अपनी दुनिया तलाश लेते हैं। आज का ये गीत उसी खूबसूरत सफ़र पर ले जाने वाला है जहाँ बेफिक्री है, आज़ादी है, हर पल को जीने का जुनून है। श्रोताओं, तो आइए सुनते हैं ये जवानी है दीवाने फिल्म का ये गीत मोहित चौहान की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कभी कभी ज़िंदगी हमें एक ऐसी उड़ान के लिए बुलाती है जहां मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है सफ़र। खुले आसमान के नीचे अपनी धुन में मस्त होकर बस उड़ते

चले जाना, यही तो है आज़ादी का एहसास। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हमें अपने सपनों के पीछे उड़ चलने की प्रेरणा देता है। श्रोताओं, ये है रॉक स्टार फिल्म का गीत, मोहित चौहान की आवाज़ में, संगीत ए आर रहमान का, रचना है इरशाद कामिल की।

लीजिए अब सुनिए जिंदगी न मिलेगी दोबारा फिल्म का ये गीत विशाल दादलानी की आवाज में संगीत है शंकर एहसान लॉय का और रचना है जावेद अख्तर की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम, कलाकार हैं रामदेव और साथी। आइए सुनते हैं ये देवी गीत।

आप सुन रहे हैं रामदेव और साथी के स्वर में लोकगीत। लीजिए अब सुनिए ये कजरी।

आप सुन रहे हैं रामदेव और साथियों के स्वर में लोकगीत। लीजिए अब सुनिए ये पूर्वी गीत।

अभी आप लोकगीत सुन रहे थे, कलाकार थे रामदेव और साथ ही हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार बस कुछ ही पलों में।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के हमारे कलाकार हैं प्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी। आइए सुनते हैं उनके प्यारे प्यारे सिनक में।

फिल्म का नाम है नाम, आवाज़ है पंकज उदास की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहब्बतें कार्यक्रम का अगला गीत है। मोहब्बतें फिल्म से उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, जतिन ललित ने तर्ज बनाई है।

आनंद बख्शी का जन्म 2 जुलाई 1930 में हुआ। इनकी ज़िंदगी का सफ़र रहा 30 मार्च 2002 तक। ब्रिटिश भारत में पंजाब प्रांत के रॉयल पिंडी, अब वो पाकिस्तान में है, वहीं इनका जन्म हुआ। 1947 में बंटवारे में परिवार लखनऊ वापस आ।

मुझसे दोस्ती करोगे। उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, राहुल शर्मा ने तर्ज बनाई है।

आनंद बख्शी ने कई फिल्मों में गीत लिखे, जैसे 1964 में मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, यादें, आधी रात के बाद, हिमालय की गोद में, जब जब फूल खिले, आसरा 1966 में, आए दिन बहार के,

1970 में आन मिलो सजना, हम जोली, जीवन मृत्यु, कटी पतंग, खिलौना, अमर प्रेम, चाहत, हाथी मेरे साथी, मेरा गांव, मेरा देश, उपहार, संजोग, अनोखी पहचान, दुश्मन, अपना देश, गोरा और काला, सीता और गीता, बॉबी, हीरा पन्ना, जैसे को तैसा, लोफर, आपकी कसम, अजनबी, दोस्त, कसौटी, मजबूत, सुनहरा संसार, बालिका वधु, बैराग, भंवर, दो लड़कियां, नहले पे दहला, अमर अकबर, एंथनी, चाचा भतीजा, छलिया बाबू, स्वर्ग नर्क, अमरदीप, एक दूजे के लिए एक ही भूल, लव स्टोरी, रॉक स्टार, आमने सामने, देश प्रेमी, शक्ति विधाता, हीरो, वो सात दिन, जागीर, हम दोनों, मेरी जंग, आग और शोला, राम लखन, कब्जा, सहंसा, लम्हे, सौदागर, चमत्कार, खुदा गवाह, विश्वात्मा, खलनायक, पहला पहला प्यार, मोहरा, त्रिमूर्ति, तेरे मेरे सपने, जान, गुप्त, परदेश, जख्म, हिंदुस्तान की कसम, हद कर दी आपने, बुलंदी, राजू चाचा, छुपा रुस्तम, यादे, गदर, इंडियन, ना तुम जानो ना हम किसी से कम नहीं, द हीरो, मेरी बीवी का जवाब नहीं, ऐसे कई अनगिनत पिक्चर हैं जिनके गीत आनंद बख्शी ने लिखे। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा।

इसी गीत के साथ एक ही कलाकार कार्यक्रम समाप्त होता है। आज के हमारे कलाकार थे प्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम किस्सा गोई, गुरुदत्त पे आधारित ये कार्यक्रम है। स्वर है नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के, प्रस्तुति है नेहा गुप्ता की।

0: जाने क्या मैंने सुनी बात कुछ बन ही गई।
1: दिल चोर सा है, छुपा हुआ रहता है, और वो जो एक लाइन है इसमें कि एक नशा सा उतर रहा है, और कोई ऐसा आता है कि ख्वाब तो होते हैं हर किसी के जहन में, लेकिन किसी के आने से वो जगते हैं ना। तो दोस्तों, इस भावपूर्ण गीत को सुनने के दौरान ही आप सबने पहचान ही लिया होगा कि आज की किस्सा गोई का सिरा उस अजीम शख्सियत से जुड़ रहा है जो कहता था, मैं फिल्म नहीं बनाता, मैं अपनी जिंदगी को ही फिल्माता हूँ।
0: भारतीय फिल्म इतिहास का एक ऐसा फिल्मकार जिसने सिनेमा को कविता बना दिया, जिसकी फिल्मों का एक एक दृश्य यूं लगता मानो रजत पटल पर किसी चित्रकार की कोई अभूतपूर्व चित्रकला हो।

0: नज़र चेहरे पर जाती तो कुछ टुकड़े हंसी के तो बेशुमार कतरे आंसू और दर्द के बिखरे मिलते।
1: तो वही बेहद हसास से भरा एक दिल जिसमें जज्बातों एहसास का पूरा समंदर डोलता दिखाई देता।
0: दोस्तों, इन सारी बयानियों से जो तस्वीर बन रही है ना, वो है वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण, जिन्हें सारी दुनिया गुरुदत्त के नाम से जानती है। हाँ।

0: साथियों, हम सब जानते हैं गुरुदत्त साहब भारतीय सिनेमा के एक महान अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और कोरियोग्राफर रहे हैं, जिन्हें हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग यानी 1950 और 1960 के दशक का सबसे संवेदनशील और काव्यात्मक फिल्मकार माना जाता है, जिन्होंने प्यासा और कागज के फूल जैसी कालजयी मर्म स्पर्शी फिल्में बनाई।
1: दोस्तों, कि जब ये दोनों फिल्में शूट हो रही थी तो बहुत सारे किस्सों ने भी जन्म लिया था। देवानंद साहब, गुरुदत्त साहब, वी के मूर्ति जी, वहीदा रहमान जी, उनके सिस्टर और गीता दत्त जी, ये सारे किस्से बहुत ही सुंदर और गहरे अर्थों को लिए हुए हैं। तो चलिए सुनिए आज गुरुदत्त से जुड़ा हुआ कुछ दिल छू लेने वाला किस्सा।
0: साल 1957, बन रही थी फिल्म प्यासा। प्यासा फिल्म के लिए गुरुदत्त साहब की पहली पसंद थे दिलीप साहब। गुरुदत्त साहब ने दिलीप कुमार से मुलाकात की, प्यासा की स्क्रिप्ट सुनाई, सारी बातें तय

0: हो गई, पर मुहूर्त शॉट के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। प्यासा की पूरी टीम अपने स्टार दिलीप कुमार का स्वागत करने के लिए तैयार थी। बहुत समय बीत गया, यूसुफ साहब यानी दिलीप साहब नहीं आए। तब गुरुदत्त साहब ने लंच के बाद दो मधुमक्खियां मंगवाई। दोपहर 3 बजे तक उन्होंने खुद ही मुख्य भूमिका निभाने का फैसला कर लिया और ये पहला शॉट लिया गया, जहां पर एक मधुमक्खी का क्लोजअप शॉट जो अमृत के लिए तरस रही थी, लेकिन पास से गुजर रहे एक व्यक्ति ने उसे उस मासूम मधुमक्खी को अपने पैरों से कुचल दिया था। यहां से शुरू हुई गुरुदत्त साहब की इस फिल्म में नायक के भूमिका निभाने की ये कहानी, जो आगे चलकर इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई।
1: ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे, ये फूलों का रस पी के

0: ले देख मेरे पास कुछ आंसू है कुछ आहें।
1: एक और सीन प्यासा फिल्म का जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, खासतौर पर जब रेलवे स्टेशन पर शूट किया जा रहा था, उस दौरान भी बहुत सारे किस्से मशहूर हुए।
2: एक दिन शूटिंग के दौरान एक सीन था। गुरुदत्त साहब ने असिस्टेंट से कहा, सुनो मुझे लगभग 150-200 लोगों की भीड़ चाहिए ताकि स्टेशन के दृश्य ओरिजिनल लगे।
1: असिस्टेंट ने कहा, सर बजट नहीं। गुरुदत्त साहब कुछ समय चुप रहे, फिर अचानक बोल उठे, पैकअप यानी शूटिंग रद्द।
2: पूरी यूनिट घबरा गई। तभी गुरुदत्त उठे और खुद स्टेशन चले गए। वहां जो भी मजदूर कुली चाय वाला मिला सबको 2 रुपए दिए और बोले, बस 10 मिनट मेरे साथ खड़े हो जाओ, कैमरा आएगा।
1: और पता है दोस्तों, 10 मिनट के भीतर ही लगभग 200 लोग का जमावड़ा वहां इकट्ठा हो गया। किसी को कुछ पता नहीं है कि ये कैमरा क्या कुछ कर रहा है, खेल दिखा रहा है। और यहाँ पर वो शूटिंग शुरू की गई। और हाँ, एक बात और भी बीच में हुई थी, वो ये कि शूट के बाद एक बूढ़े कुली ने पूछा भी था गुरुदत्त साहब से कि साहब आप लोग कौन हैं। तो गुरुदत्त साहब ने क्या जवाब दिया था दोस्तों, पता है?
2: मैं भी एक प्यासा हूँ काका, इज्जत का प्यासा।
1: क्या बात है। लेकिन दोस्तों, सबसे मजेदार बात तो कुछ समय बाद हुई, जब फिल्म रिलीज हुई, सुपरहिट हुई। लगभग 6 महीने के बाद वही बूढ़े से जो कुली थे वो बॉम्बे आए और गुरुदत्त साहब के ऑफिस जा पहुंचे।
2: साहब मेरे वो 2 रुपए।
1: अब सोचिए दोस्तों कि गुरुदत्त साहब ने क्या कहा होगा और क्या कुछ किया होगा।
2: वो गुरुदत्त थे दोस्तों। उन्होंने बड़े प्यार से उस कुली को गले लगाया और कहा, काका 2 रुपए की बात करते हो, तुमने मुझे पूरे 2 करोड़ का सीन दे दिया है।
0: तंगा चुके हैं कशमकश जिंदगी से हम, तंगा चुके हैं कशमकश जिंदगी से हम, ठुकरा ना दे जहां को कहीं बेदिली।
3: जनाब खुशी के मौके पर क्या बेदिली का राग छेड़ा हुआ है, कोई खुशी का गीत सुनाइए।

फिल्म प्यासा में रेलवे ट्रैक और स्टेशन के पास का दृश्य बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लिए हुए है, और जहां पर एक प्रसंग आता है जब नायक विजय अपना एक कोट एक गरीब और लाचार भिखारी को दे देता है, और कुछ क्षणों बाद भिखारी ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा

0: पड़ता है। रेलवे ट्रैक की दुर्घटना ही विजय के जीवन, उसकी पहचान और अंततः उसके द्वारा दुनिया को ठुकराने की पूरी कहानी की नींव रखती है।
1: आज भी प्यासा का सबसे असली सीन वही स्टेशन वाला माना जाता है। सच दोस्तों, ये वाक्या सुनकर एक बात जहन में आई कि सिनेमा झूठ नहीं, सच होता है।
0: और सच दिखाने के लिए बड़े सेट की जरूरत नहीं होती है, चाहिए एक बड़ा दिल।
1: कई बार हम लोगों को लगता है ना कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और ये काम नहीं होगा, लेकिन अगर दिल गुरुदत्त जैसा हो तो बड़े से बड़ा काम पैसों के लिए नहीं रुकता, उसके लिए तो सिर्फ जिंदा दिली चाहिए।
0: सच कही, जज्बा चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए। और नेहा जी, अब जोश जज्बे के धागों से बुनी हुई एक जो फिल्म बनी गुरुदत्त साहब के निर्देशन में, और क्या कुछ घटा इस बीच कि गुरुदत्त साहब को ये कहना पड़ा कि अब मैं निर्देशन नहीं करूंगा, उसको जानने के लिए अभी हमें चलना होगा कहाँ?
1: सेंट्रल मॉडर्न स्टूडियो।
0: स्टूडियो के बाहर लिखा दिखाई दे रहा है साल 1959, बन रही है जहाँ भारतीय फिल्म इतिहास की पहली सिनेमा स्कोप फिल्म कागज के फूल।

आज भी जब बॉलीवुड के गलियों में लोग जाते हैं काम तलाशने या काम को देखने, तो इन किस्सों से वाकिफ होते हैं, दो चार होते हैं। तो लाइट बंद कीजिए, पर्दा गिराइए और चलिए उसी सेट पर जहाँ लिखा है साल 1959।

0: वक्त ने किया क्या हसी सितम। गीता दत्त की आवाज, उसकी जो पवित्रता है वो दिल को अंदर तक गहरे तक छू ले रही है।
1: कैफी आजमी साहब ने ये जो गीत लिखा है, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, ये जरा देखिए इसकी अगली लाइन जो ये है कि हम दो कदम साथ चलते हैं और फिर कैसे अगुम हो जाते हैं, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। बहुत सुंदर ढंग से वो जो रोशनी आई है, वो रोशनी ही इसका परिचायक है कि चलते साथ में हैं, कुछ ऐसी बाधाएं भी आती हैं कि हम आगे पीछे हो जाते हैं, हमारे कदम आगे पीछे हो जाते हैं। बहुत बहुत सुंदर इसका पिक्चराइजेशन है और इसके पीछे भी बहुत सारे किस्से हैं।
0: कहते हैं कि इस गीत की शूटिंग के दौरान स्टूडियो की छत से आती प्रकाश की किरण को विशेष तरीके से नियंत्रित किया गया। रोशनी की वही किरण आज भारतीय सिनेमेटोग्राफी की सबसे चर्चित छवियों में गिनी जाती है।
1: फिल्म के छायाकार वीके मूर्ति और गुरुदत्त

0: शूटिंग जारी थी। सेट पर धूल, टूटी कुर्सियां और अकेले गुरुदत्त। डायरेक्टर गुरुदत्त खुद ही हीरो भी थे, टेक पर टेक हुए जा रहे थे। बेहिसाब टेक के बाद जब अचानक गुरुदत्त साहब सच में रो पड़े, तब कैमरामैन वीके मूर्ति बोले, सर कट।
1: गुरुदत्त साहब बोले, नहीं कैमरा चलने दो, दर्द असली है।
2: मैं समझता हूं तुम क्यों जा रही हो।
3: मुझे यकीन था आप जरूर समझ जाएंगे।
2: हमने हमेशा एक दूसरे को समझा है ना?
3: हमेशा।
2: कभी कभी लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह क्यों समझने लगते हैं? क्यों? काश कि ऐसा ना होता, तब बात पड़ती, ना आज तुम्हें सब कुछ छोड़ के यूं जाना पड़ता।
0: कुछ देर बाद गुरुदत्त साहब ने खुद ही कट कहा और बोले, ये मेरा आखिरी शॉट है। फिल्म रिलीज हुई और बुरी तरह फ्लॉप।
1: गुरुदत्त साहब बुरी तरह टूट गए। दोस्त देवानंद ने कहा, गुरु अगली फिल्म बनाओ।
0: लेकिन गुरुदत्त साहब के जहर में तो कुछ और ही चल रहा था। वो हंसकर बोले, देव अब कैमरा मुझे नहीं, मैं कैमरे को देखूंगा। और फिर गुरु ने कभी कोई फिल्म निर्देशित नहीं की।
1: कागज के फूल की शूटिंग का जब अंतिम दिन था और सेट तोड़ा जा रहा था, गुरुदत्त साहब चुपचाप एक कोने में बैठे थे। हाथ में फिल्म की एक रील। प्रोड्यूसर आए और बोले, सर नुकसान बहुत हुआ।
0: गुरुदत्त मुस्कुराए और बोले, हाँ नुकसान पैसों का हुआ है, कला का नहीं। ये कागज के फूल थे, मुरझाने के लिए ही बने थे।

0: दोस्तों, आज फिल्म कागज के फूल कल्ट क्लासिक है। दुनिया भर में ये फिल्म स्कूलों में पढ़ाई जाती है। ये फिल्म हमें यही सिखाती है कि कभी कभी सबसे खूबसूरत चीजों की कदर वक्त के बाद होती है,
1: क्योंकि शायद उसको समझने के लिए वो नजरिया, वो जहन धीरे धीरे लोगों के पास आता है, और जब आता है तो वो ये सोचते हैं कि उस समय उसकी कितनी इज्जत की जानी चाहिए थी।
0: और नेहा जी, एक बात ये भी थी कि जब कागज के फूल बन रही थी, ये जो कहानी थी, तो ये कहानी बहुत सारे लोग ये

0: कि इनकी खुद की ही कहानी थी जिसे वो पर्दे पर पेश कर रहे थे।
1: जी
0: खैर, गुरदत्त साहब ने इससे असहमति जताई थी, लेकिन जब हम उनके जीवन को देखते हैं तब हम ये पाते हैं कि ये कहानी बिल्कुल उन्हीं के जीवन को रिप्रेजेंट करती हुई सी प्रतीत हो रही है। गुरदत्त साहब, गीता दत्त, वहीदा रहमान।

0: कहते हैं ऐसा ये चर्चित है कि जो मैंगलोरियंस होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा माना जाता है। और गुरुदत्त साहब का जन्म तो मैंगलोर में हुआ था और जहन तो उनका इतना जहीन था कि लोग शायद इसीलिए तो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या जापान में कोई फिल्म बन रही हो, फिल्म की पढ़ाई हो रही हो, तो गुरुदत्त साहब के टेक्निक की बात की जाती है।
1: सच कह रही हैं नेहा जी, वो तो एक अजीम फिल्मकार थे, उनका विजन कितना बड़ा था जो लोगों को आज समझ में आया कि वो क्या कुछ चाह रहे थे। समय के आगे की कहानी उनके दिलो दिमाग में, 50वें दशक की हम बात करें, उनके दिमाग में वो कथा चल रही थी जो आगे चलकर कहीं ना कहीं एक इतिहास बनने की ओर जो बात की जाती है वो इतिहास ही बना रहे थे जिन्हें उस समय दुनिया ने नहीं समझा।
0: और आज जब हम समझते हैं तो ऐसा लगता है कि काश कि वक्त ठहर सा जाता और मुलाकात कर लेते उनसे।

0: वंदना जी, दोस्तों एक और मजेदार खस्सा है
1: जी,
0: गुरुदत्त साहब और देवानंद साहब का। गुरुदत्त साहब की कमीज और देवानंद साहब की कमीज जो थी एक ही लॉन्ड्री में जाती थी धुलने के लिए
1: जी।
0: अब लॉन्ड्री वाले ने दोनों की कमीज पहुंचा दी। गुरुदत्त भी सोचे कि ये कमीज तो मेरी नहीं है। देवानंद साहब अपने घर में सोच रहे हैं कि ये कमीज भी मेरी नहीं है। अब वो लोग प्रभात स्टूडियो चल दिए। अब एक टक वो एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे। अब वो ये सोचते हैं कि इनके पास मेरी कमीज कैसे आ गई। तो उन्होंने पूछा, बरखुरदार आप ये कमीज कहाँ से आपने खरीदी है? तो दत्त जी को ये बात समझ में आ गई कि कहीं कुछ ये मुझसे जो सवाल कर रहे हैं मैं इनसे करना चाहता था। और दोनों हंस पड़े और दोनों ने कहा, ओह तो आज लॉन्ड्री वाले की वजह से हम दोनों मिल रहे हैं।
1: बिल्कुल, और ये जो दोस्ती थी वो जीवन पर्यंत चलती रही। और एक वादा दोनों दोस्तों के बीच हुआ था
0: जी,
1: कि जब कभी उनके बैनर तले कोई फिल्म बनी देवानंद साहब के, तो उसको निर्देशित करेंगे गुरुदत्त साहब।
0: और फिल्म बनी थी बाजी।

0: दोस्ती का वो अंतिम दृश्य कैसे भूल सकते हैं, जिसे अपनी किताब में भी देवानंद साहब ने उकेरा था।
1: 10 अक्टूबर 1964 की सुबह 10:30 बजे, शनिवार का दिन था। 39 वर्षीय गुरुदत्त वहां बेसुध पड़े थे। देवानंद साहब तक जब ये खबर पहुंची, उन्होंने अपनी फिल्म 3 देवियां की शूटिंग रद्द कर दी थी। और वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं उनके कमरे में जाने वाला पहला व्यक्ति था। उनका शव पड़ा था, फर्श पर नीले रंग के तरल पदार्थ से भरा एक गिलास था। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वे मृत थे। गीता दत्त को सांत्वना देते हुए देवानंद फूट फूट कर रो पड़े। गुरुदत्त के बगल में घुटने टेक कर उन्होंने उनका ठंडा हाथ थाम लिया और रोते हुए बोले, गुरु उठ, कहाँ चला गया तो?
2: बिल्कुल। और कुछ समय बाद जब कैफी आजमी साहब वहाँ पहुँचते हैं, उनको इस हाल में देखते हैं तो उन्होंने एक नज्म भी लिखी है।
3: रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। डरता हूं कहीं खुश्क न हो जाए समंदर, राख अपनी कभी आप बहाता नहीं कोई। साखी से गिला था तुम्हें मैखाने से,

शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई। माना के उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, बेरात ढले शमा बुझाता नहीं कोई।

0: जब आपके सीने में, हृदय में संवेदनाएं जगने लगी, तो ये जरूर लिखिएगा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमारा।
1: आपको संदेश भेजना है इस व्हाट्सएप नंबर पर 8004926250।
0: हम इंतजार करेंगे आपके पत्र का और अगली बार फिर हाजिर होंगे
1: एक नए किस्से के साथ। हाँ। तो दीजिए हमें इजाजत।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किस्सा कोई, गुरुदत्त पे आधारित ये कार्यक्रम। स्वर थे नेहा गुप्ता वंदना राठौर के, प्रस्तुति थी नेहा गुप्ता की मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बज रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार। हमारे दिल्ली केंद्र से कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरो कोइजुमी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। जापान के रक्षा मंत्री ने कल मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। श्री कोइजुमी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के साथ बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगल

में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में अंतर्राज्यीय सहयोग, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, साझेदारी को मजबूत करना, अवसंरचना विकास, जल संसाधन बंटवारा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, अपराध रोकथाम और सीमा विवाद जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर

0: लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। सीआईएसएफ ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। उनके सामान की विस्तृत जांच के दौरान उनसे कुल 68,53,000 रुपए बरामद हुए। सीआईएसएफ ने बताया कि यात्रियों नकदी और संबंधित यात्रा दस्तावेजों को कार्रवाई के लिए आयकर अधिकारियों को सौंप दिया गया है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के भीतर स्थित सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर लंबी दूरी के हमलों को तेज कर दिया है। एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच अम्स्टरडैम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। एंटिका सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला सिंगापुर की जोड़ी से होगा। इससे पहले भाई बहन की इस भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The India-Japan Defense Ministers meeting is currently underway in New Delhi. Defense Minister Rajnath Singh and his Japanese counterpart, Shinjiro Koizumi, are co-chairing the meeting. The meeting is expected to further strengthen bilateral defense relations, enhance strategic trust and cooperation, promote stability and security in the Indo-Pacific region, and identify new areas of collaboration. The two ministers will exchange views on deeper maritime security cooperation and closer defense equipment and technology collaboration under the Make in India framework following Japan's revision of the three principles on transfer of defense equipment and technology. The meeting provides an opportunity to build a roadmap for further advancing bilateral defense and security cooperation. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today met Singapore Prime Minister Lawrence Wong in Singapore. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Minister of State for Electronics and Information Technology Jitin Prasada were also present during the meeting. In a social media post, the finance ministry said the leaders reviewed the progress in implementing the roadmap for the comprehensive strategic partnership and discussed ways to further strengthen bilateral cooperation in areas including economic cooperation, digitalization, connectivity, skill development and sustainability. The ministers are on a visit to Singapore to participate in the fourth round of the India-Singapore Ministerial Roundtable to be held today. India has delivered medicines and medical consumables to a government hospital in Kabul, reaffirming its long-standing health partnership with the people of Afghanistan. The Ministry of External Affairs said in a social media post that the assistance reflects India's continued commitment to supporting the healthcare needs of the friendly people of Afghanistan. The medical supplies are aimed at augmenting healthcare services at the government hospital in Kabul. India has called for urgent reforms in the United Nations Security Council, UNSC, saying its structure and decision-making process must reflect present-day global realities and provide greater representation to developing countries. Speaking at a UNSC open debate on working methods, India's chargé d'affaires to the UN, Yojana Patel, said the need for reform is more pronounced and pressing than ever before. She noted that the UN's membership has increased significantly since 1945 and argued that the Security Council cannot continue to be shaped by the realities of that era. Bangladesh will hold its presidential election today with lawmakers set to choose between the ruling BNP stalwart Mirza Fakhrul Islam Alamgir and 11-party opposition alliance candidate

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 MHz पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:10 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विवरण। अब से थोड़ी देर में यानी कि 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए रामशंकर का ख्याल गायन। 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम हेलो पनगढ़। इसके अंतर्गत सुनिए एडवोकेट नाजिया नफीस से बातचीत, विषय है महिलाओं के कानूनी अधिकार। दो बज के 30 मिनट पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा NCERT की ओर से उमंग। शाम 4 बजे फौजी भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर, जो कि हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। इसके अंतर्गत सुनिए रामदेव और साथी के गाए लोकगीत।

7:31 पर हिंदी कार्यक्रम होगा। इसके अंतर्गत सुनिए निशा यादव से कहानी। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में अरुण गुलवाड़ी के गाए गीत व भजन होंगे। रात 8:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। रात 8:30 पर होगा कार्यक्रम सबरस। रात 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशां। रात 10:00 हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए उस्ताद निसाद खान का सितार वादन। ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विवरण।

लीजिए आप सुनिए, खोए हुए व्यक्ति की सूचना। चंद्रकेश पाल की सूचना के अनुसार कंचन पाल करीब 20 वर्ष आयु है इनकी। चेहरा गोल है, आंखें काली हैं, कोई विशिष्ट पहचान नहीं है, बाल सामान्य है, रंग गोरा है।

और आंखें काली हैं, इन्होंने सलवार सूट पहन रखा है। ये 9 जून 2026 से लापता है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर दें। राम कुमार पाल निवासी ग्राम जौनपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़। मोबाइल नंबर है 7380768828। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 7380768828। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, एक और सूचना सुनिए। गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में महिलाओं के कानूनी अधिकार विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी एडवोकेट नाजिया नफीस। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फ़ोन नंबर 0532-2970462 और 0532-2423649 पे पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर पुनः सुन लीजिए 0532-2970462 और 0532-2423649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 MHz पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो के घड़ी में दिन के 12:15 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में राम शंकर का ख्याल गायन, राग है मधुमात सारंग।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में राम शंकर का ख्याल गायन, राग था मधुमात सारंग, तबला पे संगत की थी अनुपमार बैनर्जी ने। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति है मधु कुमार की।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में कभी कभी रुकना भी जरूरी है, खुद को, अपनों को और अपने सपनों को सुनने के लिए। तो आज का हमारा सफर इसी सुकून के नाम, चलिए शुरू करते हैं इन सुकून के पलों के साथ कार्यक्रम का पहला गाना। सुकून तो कई रूपों में होता है, कभी किसी की बात बहुत सुकून देती है और कभी प्रकृति का कोई दृश्य हमारे मन को बहुत ही सुकून देता है, उसे देखकर हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो कार्यक्रम का पहला गीत भी कुछ ऐसा ही है और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। इनके नाम है दिलशाद हुसैन मुबारकपुर से, पाटन गुजरात से धीरज वी रबारी, संजय और सचिन, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकुर राघव गुप्ता। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

सन्नाटों में भी एक सरगम होती है, सुकून ढूंढने की बस एक शर्त होती है। बाहर की शोरगुल से जरा आंखें मूंद लो, असली शांति तो हमेशा अपने अंदर होती है। तो दोस्तों, आज के दौर में अगर सुकून खोया है तो उसकी एक वजह है बहुत ज़्यादा दुनियादारी में रहना। हम हर पल दूसरों की जिंदगी और नोटिफिकेशन में ही उलझे रहते हैं। दिन में सिर्फ 20 मिनट भी अगर आप अपना फोन दूर रख देंगे ना, तो बस देखिए क्या शांति छा जाती है। कुछ मत करिए, बस ढलती हुई धूप को देखिए, अपने पौधों की पत्ती

पत्तियों को छुइए या पुरानी यादों की किसी किताब को पलट लीजिए। इसे आजकल दुनिया में स्लो लिविंग कहते हैं, पर सच पूछिए तो ये हमारी जड़ों की तरफ लौटने जैसा ही है। जैसे कि अब हम लौट रहे हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, और फिल्म का नाम है मौसम। आवाज भूपेंद्र और लता मंगेशकर की है, और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। खंडवा से महेंद्र यादव, पीना यादव, हरदोई से रजनी सिंह चौहान गुड़िया और अजिता चौहान, वीरमगांव सिटी से कृष्णा देवी पाटिल, बक्सर से राज अंसारी, संगीता कुमार और वाणी कुमार, दिल्ली से कंगना यादव, सिमरन यादव, हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दीपांशी विश्वकर्मा।

तो बात चल रही है सुकून की, और जो सुकून है वो हर बातों से चला जाता है। अपने दिखने में थोड़ी सी भी कमी हो जाए, या पहनावा थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए, या कोई ऐसी चीज जो हमें मिलते मिलते रह जाए, हर बातों पर सुकून गायब। लेकिन जरा ठहरिए, आप जैसे हैं जहां हैं बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा बिखराव भी जिंदगी को असल बनाता है, और जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरों से शिकायतें कम हो जाती हैं। ना राहें आसान थी, ना मंजिल की खबर थी, फिर भी चले जा रहे थे, ये कैसी बेखबरी थी। जब अपनी कमियों से मोहब्बत करना सीखा, तब जाना कि असल सुकून तो इसी सफर में था। तो दोस्तों, सुकून किसी बड़े मुकाम में नहीं, छोटी छोटी चीजों में है। जैसे कि आपके पास किसी पुराने दोस्त का अचानक फोन आ जाना। जब आप सुकून बांटना शुरू करते हैं ना, तो वो लौट कर आप ही के पास आता है। तो चलिए चलते हैं याराना फिल्म के इस गीत की तरफ, और इस गीत की फरमाइश की है गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, विपिन जायसवाल, देव कुमार और आर्य कुमार, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना, राज पैलेस मऊ से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, मऊ से ही मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा, पीहू स्वर्णकार और इनके परिवार

अर्ज किया है, शिकायतों की गठरी को जरा कंधों से उतार दो, जो बीत गया उसे हवा में उड़ा दो। सुकून से जीने का बस इतना सा राज है, दूसरों को माफ करो और खुद को दुलार दो। तो आज रात सोने से पहले अपने मन के सारे बोझ की ये बड़ी सी गठरी जो है उसको उतार दीजिए और सुनिएगा ये मधुर सा गाना। जी हाँ, ऐसे ही एक गाने की फरमाइश की है हमारे इन श्रोताओं ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा महाराष्ट्र से, संतोष खड़ से, विनोद खड़ से, मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज,

सीमा, काजल, तन्वी, मानवी, सोनी, लक्ष्य, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का रजिया सुल्तान फिल्म का ये मधुर सा गीत।

आपकी पसंद अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। प्रस्तुति थी मधु कुमार की, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली से हिंदी में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। श्री सिंह ने जापान के कुमामोटो में आए भीषण भूकंप पर संवेदना व्यक्त की और हर जरूरी सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और पुराने सभ्यतागत संबंधों पर आधारित है। जापान के रक्षा मंत्री ने भूकंप पर भारत की संवेदना के लिए आभार जताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक चेन्नई के कोवलम में शुरू हुई। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि बैठक के दौरान सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और समय पर तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जनकल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य

जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। CISF ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें दो मकानों को

गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व और पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत तथा बचाव कार्य जारी है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 557 अंक बढ़कर 77,466 जबकि निफ्टी 141 अंक के वृद्धि के साथ 24,219 पर कारोबार कर रहा था। एफआईएच हॉकी विश्वकप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाका निशी को हराया। पीवी सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सचिव अनिल गर्ग ने बताया कि 14 अक्टूबर को फ्रांस के मार्सिले में आयोजित होने वाले 26वें आईसीआईडी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 77वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान परीक्षा बांध को WHIS पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। झांसी में बेतवा नदी स्थित परीक्षा बांध ने 140 वर्षों से बुंदेलखंड की सिंचाई प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बेतवा नहर प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है जो बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि के लिए पानी की आपूर्ति करती है। परीक्षा बांध लगभग 1174 मीटर लंबा और नदी तल से लगभग 16.8 मीटर ऊपर स्थित है। सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: जौनपुर मंगरा बादशाहपुर थाना इलाके के तहत धर्मपुर गांव में आज सुबह एक बस स्कूल वैन से टकरा गई। हादसे में कई मासूम बच्चों की हालत तश्वीशनाक है। गांव वालों की इतला के फौरन बाद पुलिस पहुंची और बचाव के काम शुरू किया। कई बच्चों को करीबी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर सड़क हादसे का नोटिस लिया है। वजीर आला की हिदायत के बाद जिला मजिस्ट्रेट जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जख्मी बच्चों की हालत दरियाफ्त की और उन्हें बेहतर इलाज यकीनी बनाने की हिदायत की। रियासत के कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दरियासना बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से कई अजला सैलाब की जद में। वाराणसी के 84 घाटों को काट दिया गया है। हिफाजती वजूहात की बिना पर कश्तियों के ऑपरेशन को अगले नोटिस तक मुअत्तल कर दिया गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गंगा के पानी की सतह तकरीबन 67 मीटर रिकॉर्ड की गई है और ये मुसलसल 4 सेंटीमीटर की शरह से बढ़ रही है। चित्रकूट में बारिश के इम्कान की वजह से 12वीं जमात तक के स्कूल आज के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:15 हो रहे हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम हेलो पनघट।

0: राम राम राम बहनियरन,
1: आप सुनत हैं अपन पसंदीदा कार्यक्रम हेलो पनघट गंगा और जया के साथ, जहां बात होए आपके हक के, आपके सवाल के, जो उनकी रोजमर्रा के जिंदगी से जुड़ा हुआ। कहा जाता है कि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है, और जब बात बहनियरन के अधिकार के होए तो कानून की जानकारी खाली अधिकार जाने भर के बात न होए, बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और सुरक्षित जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कई बार देखा जब महिलाएं खाली यही बदे अपने अधिकार के लिए आवाज ना उठाए पाती कि उन्हें लागत है कि कानून बहुत जटिल है, या फिर उन्हें न्याय पावे के बदे बहुत कुछ सहाय के पड़े।
0: बिल्कुल,
1: तो यही बदे आज के ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है महिलाओं के कानूनी अधिकार के समझाई के बदे।
0: बिल्कुल सही गंगा, आज हम बात करब कि जौन अक्सर कहीं भी कहा जाता है ना कि हमार बहनेरन कई बार बाहर से तो मुस्कुराती पर भीतर से बहुत कुछ उनके मन के अंदर चलत रहा थे। कभों घर गृहस्थी के बोझ, कहूँ समाज के डर, कभों लोग का कहिए, बस ये सोच के वो अपन मन की बात, अपने हक की बात कौनों से कह ही नहीं पाती। मन कहते चला आज कहीं ना दे अपने मन की बात, पर फिर से रोज की कहानी सोच के प्यार और स्नेह से फिर हर चीज निभावत चली जाता, और यही निभावे की दौड़ में वो अपने आप कहीं पीछा छोड़ देता।
1: बिल्कुल, तो आज हम सब बात करब विवाह, संपत्ति, घरेलू हिंसा, भरण पोषण और महिलाओं से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण कानूनी सवालन पे।
0: आज यही अनकही कहानी, ए मन की बात का समझे खातिर आज हम अपने पनघटे पे लेके आई है महिलाओं के अधिकार से जुड़ी वो अधूरी बात, जेका आज पनघट पर हम लोग पूरी करे की कोशिश करब।
1: बिल्कुल, सबसे खास बात है कि यह चर्चा के हिस्सा आप भी बन सकते हैं। आपके मन में कोनो सवाल, कोनो परेशानी है।

0: हैं तो आप कानूनी अधिकार समझे चाहत हैं तो आप अपन सवाल हमारे विशेषज्ञ तक जरूर पहुँचावें। नंबर है 0532-242-3649। एक बार हिंदी में 0532-242-3649। एक नंबर और है वो नोट कर ले 0532-297-0462।
1: श्रोतागण हमारे एक व्हाट्सएप नंबर भी है 800-492-6250, 800-492-6250। इमा आपन प्रश्न भेजे के खातिर प्रश्न के पहले लिखें पनघट, तब आपन प्रश्न भेजे। पनघट पूरा ना लिख सकें तो PAN भी टाइप करके भेज सकत।
2: जया और भाई गंगा, तू दोनों जनी तो बहुत बढ़िया बोले हो, और देखा भैया बहिनी हरेन अभी हमारे साथ स्टूडियो में हैं एडवोकेट बहिनी नाजिया नफीस जी। भाई स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: नाजिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू, धन्यवाद। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा नमस्कार।
2: तो आप सभी बहिनी हरेन और जो भैया लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो अगर आपके मन में कोनो सवाल है जौन पूछा चाहत हैं, तो जौन जया बहिनी और गंगा बहिनी नंबर बताइन हैं ऊपर आप कॉल कर सकत हैं, ऊपर अपने प्रश्न कहें और सीधे हमारे स्टूडियो में जौन एडवोकेट साहिबा बैठी हैं उनसे अपने उत्तर जान सकत हैं, और अगर उत्तर से संतुष्ट ना हो तो भी आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक कॉलर का फोन आया है। जी जया बहनी जरा देखी तो के फोन आवा है। हेलो
1: हेलो
2: जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अच्छा, आवाज आपकी हम तक पहुंच आपका, आप अपना नाम बताइए। जी नमस्कार, हेलो जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? अच्छा, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं या कर सकती हैं, चूँकि आपकी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट हमें सुनाई नहीं पड़ रही है, आपसे फिर बात करेंगे। स्टूडियो में नाजिया जी हैं। नाजिया जी, महिलाएं अक्सर घर को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, उनका तो एक सपना ही होता है कि भाई घर बहुत सुंदर रहे, लेकिन भाई वो महिला का भी तो मन है।
1: बिल्कुल सही
2: है ना, बहू के तो कौनो अधिकार आए, है ना। तो आप खुद महिला हैं तो आपका का लागत है कि भाई अगर अधिकार दे देवा जाए कोई महिला का तो अपन कर्तव्य पूरा कर लेगा?
3: बिल्कुल पूरा करेगी। अगर हम महिला की बात करें, महिला को और पुरुष को हमारे समाज में समान अधिकार दिया गया है, किसी के साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, और बल्कि महिला अपनी जिम्मेदारी को पुरुष की अपेक्षा बहुत अच्छे से निभाती है। एक महिला घर और परिवार को बहुत अच्छे से देख सकती है, जो कि पुरुष इस कार्य में है कि अगर पुरुष कामकाजी है वो का
2: जी जी ठीक है। तो नाजिया जी बात कर रही हैं कि भाई उसको सम्मान देना होगा, उसको समझना होगा, और एक सदस्य होने के नाते उसके जो अधिकार हैं कर्तव्य हैं उसको जब आप देते हैं तो वो खुशी खुशी घर के सारे काम करती है। तो आप हमारी एडवोकेट साहिबा से प्रश्न पूछ सकते हैं, और प्रश्न पूछने के लिए आपको नंबर नोट करना होगा। आप नंबर नोट करिए एक बार फिर से 0532-242-3649। ये हमारा है लैंडलाइन नंबर। अगर आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो आप एक और नंबर नोट करिए 800-492-6250। आप सिर्फ पनघट यानी PAN और वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं या कर सकती हैं, और प्रश्न आप लिख करके भी भेज सकती हैं। एडवोकेट साहिबा आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। कहें गंगा बहन, है ना?
0: बिल्कुल नेहवनी
2: जी जी। तो देखा है हमारे साथ लागत है एक
1: कॉलर जुड़ गई है,
2: जरा बात किया जाए।
1: हाँ, हेलो हेलो
2: जी, अपना हाँ नाम बताएं अपना।
4: जी,

0: जी आप अपना प्रश्न बताएं।
1: जी डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: जी
2: जी
0: नमस्कार।
1: ये डॉक्टर साहब, महिलाओं का अधिकार है जिसे दे दिया जाए तो ख्याल रखना चाहिए, ऐसा ध्यान देना चाहिए, अपने अधिकार को कैसे समझ रहे हो।
0: हाँ, क्या महिलाओं को
2: अपने अधिकार को कैसे समझे? नाजिया जी वो पूछ रहे हैं कि महिलाओं के अधिकार अगर विकसित कर भी दिए जाए तो वो कैसे समझेंगे कि महिलाओं के अधिकार कहाँ हैं, किस किस जगह पर हैं।
3: देखिए, महिलाओं के जो अधिकार हैं, जो अधिकार हमारा संविधान एक पुरुष को देता है, वही अधिकार महिला को भी मिले हुए हैं। और उसमें समझने की जरूरत है कि सभी जगह कभी कभी महिलाएं भी अपने अधिकार का दुरुपयोग करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरूक होंगी तो सारी महिलाएं, सारी माता बहनें अपने अधिकार का दुरुपयोग करेंगी।
2: बिल्कुल।
3: कम से कम अगर वो जागरूक महिला होगी, अपने कानूनी अधिकार को वो जान रही है, तो अपने आप को वो सुरक्षित रख सकती है आने वाली जो भी विपरीत परिस्थिति है, जो भी समस्याएं हैं, या महिलाओं के साथ आज अपराध बढ़ रहे हैं, तो उनको ये पता होगा कि कहाँ पर संपर्क करने के बाद उनकी जो समस्या है उसका समाधान उन्हें मिलेगा। वो
2: बिल्कुल।
1: ये डॉक्टर मेरा प्रश्न है।
0: हाँ, पूछे पूछे।
1: जैसे महिलाओं को कानूनी जो कानूनी जो कैसे अपनी
0: हाँ जी, आपकी आवाज़ थोड़ी स्पष्ट नहीं है, ज़रा वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उनसे कहिए कि वो थोड़ा आपसे धीमे बात करें आसपास, ताकि आपकी आवाज़ हमारे रेडियो स्टेशन आकाशवाणी प्रयागराज तक बढ़िया तरीके से पहुँचे। तो देखिए, हम लोग तो यहाँ पे बैठे ही हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए, है ना? तो फिर से एक बार अपना प्रश्न रखें।
1: हेलो।
0: जी जी,
1: महिलाओं को कानूनी चाहता तो कर सकते।
0: हाँ जी, अब समझ में आया, सुनिए अपना जवाब। नाजिया जी,
3: अगर किसी महिला को कानूनी सहायता चाहिए तो उसके लिए वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर जिला स्तर पर संपर्क कर सकती है, और अगर उसको निशुल्क सहायता इलाहाबाद हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में चाहिए तो वो वहाँ के हाई कोर्ट में संपर्क कर सकती है। हाई कोर्ट में विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, हाई कोर्ट विधिक सेवा प्राधिकरण, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये व्यवस्था है, वहाँ पर भी है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बना हुआ है जहाँ पर महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन इसके लिए महिला को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, अगर महिला जागरूक होगी तभी वो अपने अधिकार का उपयोग कर सकेगी जो उसको कानूनी अधिकार बताए गए हैं, दिए गए हैं।
0: जी, तो भाई ये बात तो रही कि आपने जो नाजिया नफीस जी ने आपको बताया है कि बहुत सारे प्राधिकरण हैं, आपको उनके शरण में जाना होगा, और एक टोल फ्री नंबर है 1090, वहाँ पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं या कर सकती हैं, और अपनी हाँ जी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। जी जी जी जी, तो सुधीर श्रोताओ कार्यक्रम में हाँ जी, देर तो देखिए कोई भी काम होगा तो करने के लिए थोड़ा समय तो लगता ही है, तो उसके लिए लेकिन समाधान भी मौजूद है हमारे समाज में, हमारी व्यवस्थाओं में, हमें यकीन रखना होगा, है ना? तो चलिए सुधीर श्रोताओ, वक्त हो चला है एक प्यारे और मीठे से लोकगीत का, तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: गंगा
1: जी,
0: देखा गाना सुन के तो मन खुश होएगा। देखा इतना प्यारा गीत है कि जब सुने तो मन एकदम मतलब खुश हो जाते हैं। तो हमारे श्रोतागण भी सुने हुए हैं, पर देखा बात तो हमार चलत रही, साथ साथ में एक प्रश्न हो जाए नाजिया जी से। तो नाजिया जी, हम एक प्रश्न पूछे चाहिए थे कि गाँव में अक्सर जानकारी के अभाव में जौन हमार बहनी हरन है अपने साथ हो ही रहे अन्याय का किस्मत मान के मतलब सहत रहा थी। वकील साहब एक आम ग्रामीण महिला के पास कानूनन कौन कौन से ऐसे बुनियादी अधिकार हैं जिनकी जानकारी हर महिला का होए का चाहिए?
2: अगर हम महिलाओं के कानूनी अधिकार की बात करें तो कानून सभी महिलाओं को समान अधिकार देता है। हमें महिलाओं को, सभी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है कि महिला शिक्षित होगी। अगर एक महिला शिक्षित है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। महिला के साथ अगर किसी तरीके की घरेलू हिंसा होती है तो उसके लिए कानून बने हुए हैं। अगर परिवार में महिला है, महिला को शादीशुदा महिला है, उसको उसका पति भरण पोषण के लिए, देखभाल के लिए अगर उसको पैसे नहीं दे रहा है तो वो चाहे तो न्यायालय की शरण में जाके भरण पोषण ले सकती है। एक महिला को संपत्ति का अधिकार है अगर वो अविवाहित है तो, अगर हिंदू महिला है तो उसको 50% का कानूनी अधिकार है। उसको उसके परिवार के जो सदस्य हैं, पुरुष सदस्य हैं, उसके भाई हैं, बेटे हैं, जो अधिकार उनको है संपत्ति में, वही अधिकार एक महिला को भी है। अगर मुस्लिम महिला है तो मुस्लिम महिला को पहले से ही प्रॉपर्टी में 25% का 25% का अधिकार दिया गया है। महिला अपनी, अगर बालिग महिला है, वो अपनी मर्जी से अपना वर चुन सकती है, उसको शादी का अधिकार है, अपनी मनपसंद व्यक्ति से जिससे वो चाहे शादी कर सकती है, कानूनी मानता है। तो अगर हम देखें कि कानून सभी के साथ समान व्यवहार करता है और समान अधिकार दे के रखे हैं।
3: जी जी, देखा जया बहनी, गंगा बहनी, और देखा हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हैं नाजिया मैडम ना, एडवोकेट बहनी। तो श्रोता बंधु, आप जो है 8004926250 पर आप सभी मैसेज कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो देखिए, डॉक्टर गीता सिंह ही उन्होंने मैसेज किया है कि हम प्रयागराज से हैं, गीतू इनका नाम है, और प्रश्न है वकील साहिबा के लिए कि घरेलू हिंसा का सबूत नहीं होता तो भाई ऐसे में शिकायत कैसे करें? बात तो सही है,
0: बिल्कुल सही
3: कि कोई कुछ बात कह देवे, चाहे कोई अब जानत है, हाथ भी

0: कबो कबो उठाए देते हैं, तो सबूत तो है नहीं, बिल्कुल। तो
1: कोनो
0: फिर आप
1: प्रमाण
0: का
1: थोड़ी
0: कहब?
1: है।
2: नहीं, अगर आपके पास घरेलू हिंसा का कोई भी सबूत नहीं है
1: जी
2: तो मतलब उसका आप कहीं भी अगर न्यायालय की शरण में जाती हैं या थाने पर जाती हैं तो आपको उस घटना क्रम को तो बताना पड़ेगा ना कि किस तरह की आपके साथ में हिंसा की गई है, आपके साथ शारीरिक हिंसा की गई है, मानसिक हिंसा की गई है, कैसे हिंसा की गई है। आप पहले तो अपनी बात को रखेंगे वहाँ पर और वो लिखित प्रार्थना पत्र के रूप में होगा, उसके बाद में उसका पूरा प्रॉपर तरीके से काम किया जाएगा। न्यायालय में आप वाद दाखिल कर सकते हैं और पुलिस के पास में भी जाके आप घरेलू हिंसा के तहत अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद में आपकी शिकायत सुनी जाएगी और जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आपको न्याय दिया जाएगा।
0: एकर मतलब है एडवोकेट बहनी की एप्लीकेशन तो लिखे का हुए।
2: बिल्कुल, आप जाके बताएंगे ना, लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र देंगे कि हिंसा आपके साथ कब हुई है, किस तिथि पर हुई है, किसने आपको परेशान किया है, आपके पुरुष मित्र ने परेशान किया है या आपके पति ने परेशान किया है, आपके साथ पति के साथ क्या परिवार के अन्य सदस्य हैं, किसकी क्या भूमिका है, पूरा घटनाक्रम तो आपको बताना पड़ेगा ना कि हिंसा
0: जी
2: किस तरीके की हिंसा हुई है।
0: सबूत बाद में पूछा जाए
2: वो तो बाद में
0: जी।
2: आएगा, और अगर हिंसा हुई है तो अगर प्रथम दृश्या कोई सबूत है आपके पास तो वो आप वहां पर बताएंगे, शारीरिक हिंसा की गई है आपके साथ में अगर कोई चोट है तो वहां पर वो दिखेगा, बाकी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
0: जी
1: बिल्कुल
0: जी,
1: जी।
3: इसी के साथ एक कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ।
1: जी,
3: जी, अपना नाम बताइए।
4: मैडम मैं जो है दिव्या सिंह बोल रही हूँ।
3: जी बोलिए जी, बताइए।
4: तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जिस घर में रहती हूँ मेरे नाम से है,
1: जी
4: और मेरे पति और मेरे बच्चे, जैसे मैं रिश्तेदारों से बात करती हूँ, किसी से बात करती हूँ फोन से, तो वो मुझे बहुत ज्यादा मानसिक जो है प्रताड़ना देते हैं।
1: जी
4: तो ये बताइए कि अगर ऐसे ही रहा तो, वो ज्यादा कहते हैं कि अगर ज्यादा वो करती हो तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा, जो कि घर मेरे नाम से है।
1: जी
4: तो बताइए मैडम मैं कहाँ जाऊँ शिकायत लेके, अपने
0: जी
4: क्या करूँ?
0: दिव्या जी फोन लाइन पे बने रहिए, अपना जवाब सुनिए।
2: देखिए, पहली चीज तो ये है कि घर आपके नाम है तो आपको आपके घर से कोई भी नहीं निकाल सकता, तो इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें, और अगर आप चाहती हैं तो इसके संबंध में आप थाने पर जाके कंप्लेन कर सकती हैं, जो भी आपको परेशान कर रहा है, इस तरीके का प्रताड़ित कर रहा है वो आपके ऊपर है, आप शिकायत दर्ज करा सकती हैं, और उसके बाद में या फिर आप कानून की शरण में भी जा सकती हैं, आप उनको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकती हैं, क्योंकि उसके बाद में आपके पास पूरा अधिकार है ना कि आप अपनी संपत्ति किसको देंगी, आप
4: लेकिन
2: उस
4: मैडम
2: संपत्ति।
4: यह शिकायत करने पर तो ये भी मेरे संग भी तो प्रॉब्लम हो सकती है।
0: जी
2: नहीं, बिल्कुल हो सकती है, तो उसके लिए ये है कि आप अपने बच्चों से सामने से बैठ के बात करें, उन्हें समझाएं। देखिए, कानून की शरण में आएंगी तो दोनों चीज़ें, हो सकता है आपकी समस्या का समाधान मिले आपको, या हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप पॉजिटिव सोच रखिए। अगर आप कानून की शरण में आएंगी, आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, और जो घर है, प्रॉपर्टी है, वो आपके नाम है, तो आपकी मर्जी के बिना, आपकी जीवित अवस्था में वो बिल्कुल उस पर उनका कोई हक नहीं है, आपके ना रहने के बाद में आपके जो भी संतान है तब
4: जी
2: उनका हक होगा, लेकिन जीवित अवस्था में आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, आपकी मर्जी के बिना उस पर कोई भी नहीं ले सकता है ना।
4: ठीक ठीक है,
0: जी
4: थैंक
0: जी
4: यू
0: और
4: मैडम।
0: कई कई बार तो कुछ
4: थैंक
0: डर
4: यू,
0: निकाल देना चाहिए ये
1: बिल्कुल
0: बहुत ज़रूरी होता है, और रिश्तेदारों की उतनी बात सुने जिससे जीवन सुकून में रहे।
1: बिल्कुल
0: नहीं, बड़ा ज़रूरी सा है। देखिए बहन, जया बहन और गंगा बहन, एक और प्रश्न आए, प्रश्न है कि हम सभी को प्रणाम करते हैं, इन्होंने लिखा है और आगे कहते हैं, महिला को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए या इसे क्यों न नियमित रूप से लागू कर दिया जाए, मतलब मिलना चाहिए वाली बात ना हो।
1: हाँ।
0: कहते हैं कि भाई
1: मिले ही
0: कंपलसरी
1: पूरी
3: मिले ही के
1: तरीके
3: चाहिए,
1: से का
3: मिले ही के चाहिए।
0: तो आप क्या कहेंगी भाई नाजिया जी?
2: महिलाओं को कानूनी अधिकार मिला हुआ है, कभी कभी महिलाएं अपने जो अधिकार है उसको खुद त्याग देती हैं, छोड़ देती हैं। हम अगर बात करें हमारी बहनों की, अगर तो शादी के बाद में भी है, कानूनी भी है कि हमारी बहनों को बराबरी का अधिकार मिला है, प्रॉपर्टी में 50% राइट मिला है हमारी हिंदू बहनों को, और अगर हम मुस्लिम बहनों की बात करें तो उनको भी शुरू से जब से है तब से 25%

0: का अधिकार मिला है, लेकिन विवाह के बाद ज़्यादातर शायद ही हमारी बहनें होंगी जिन्होंने, या माताएं होंगी, उन्होंने अपना संपत्ति में अधिकार लिया होगा, लेकिन ज़्यादातर हमारी माताएं बहनें अपने अधिकार को वो छोड़ देती हैं।
1: जी नाजिया जी, बातन का सिलसिला तो जारी रहा, तब तक एक कॉलर जुड़ गए हैं, कैसे तो बात किया जाए। हेलो हेलो।
2: हाँ जी,
1: हेलो
2: अपना नाम बताइए।
1: जी,
3: मेरा नाम नेहा है।
2: नेहा बोल रही हैं जी, जय बहन पूछें।
1: हाँ नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए आप प्रश्न पूछिए, नाजिया जी सामने ही बैठी जी।
3: अच्छा अच्छा, ये पूछना था कि जैसे घरेलू हिंसा की बात कर रहे हैं हम लोग, घरेलू हिंसा में सिर्फ मारपीट ही मतलब आती है कि, या फिर किसी इंसान को कोई अगर मेंटली परेशान कर रहा है या फिर फाइनेंशियली आर्थिक रूप से परेशान कर रहा है, तो वो भी घरेलू हिंसा ही मानी जाएगी?
0: बिल्कुल मानी जाएगी। हिंसा को कैटेगराइज सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं है, हिंसा अगर मानसिक हिंसा भी उसी उसी कैटेगरी में आती है, क्योंकि मानसिक रूप से प्रताड़ित होके कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन को भी समाप्त कर लेता है, अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेता है। तो शारीरिक हिंसा से कहीं ज़्यादा घातक और नुकसानदेह मानसिक हिंसा है। आपके साथ किसी तरीके की अगर कोई समस्या है, तो मैंने पहले भी अपनी बहनों को कहा कि जो भी समस्या है उसको एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से आपको लिख कर आना पड़ेगा। आप थाने पर जाके शिकायत कर सकती हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकती है, या न्यायालय में घरेलू हिंसा का मुकदमा भी दायर कर सकती है, वहां पर भी प्रार्थना पत्र दे सकती है, और उसके बाद में न्यायालय की जो प्रक्रिया है, न्यायालय अपनी प्रक्रिया के तहत उस प्रार्थना पत्र का निस्तारण करेगा।
3: अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू, मुझे ये समझना था।
1: नेहा जी, आशा है आपकी समस्या का हल मिल गया होगा।
2: और जया बहन और गंगा बहन जौन है श्रोताओं का फिर से जो है नंबर बतावत चले जाए, तो भाई नए श्रोता भी हमसे जुड़े हैं जो अभी अभी प्रोग्राम सुनना शुरू किए हैं, तो सुने बहनी हरेन और बंधु जी।
4: बिल्कुल, नंबर है 0532243649, एक बार हिंदी में भी सुन ले, 0532243649। एक नंबर और रहा है वो सुन ले, 0532297042। और व्हाट्सएप नंबर भी आया है, जिक्रे हाथे में फ़ोन आया वो व्हाट्सएप नंबर पे PAN लिख के अपन प्रश्न लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 800-492-6250।
1: आस्था गंगा दिखा, आस्था की यादवती, तो गंगा दिखा एक कॉलर फिर से जुड़े थे, कसना बात किया जाए।
4: बिल्कुल,
1: हेलो हेलो, कृपया अपना नाम बताइए। नमस्ते।
5: नमस्ते, मेरा नाम अजय कुमार है।
2: जी अजय जी, बताएं अपना सवाल।
5: ये मैं पता करना है कि क्या किसी महिला का कोई लेडी है, वो अगर क्या वो बच्चे उनके जिस हैं और वो उन्हीं पे आश्रित हैं, क्या उनके कोई कानूनी अधिकार हैं मकान या किसी पे?
2: जी, बच्चे उन्हीं पे आश्रित हैं और शायद
5: बच्चों, वो बच्चों पे आश्रित,
2: वो बच्चों पे आश्रित हैं, तो उनका उनको संपत्ति मिले या नहीं,
5: मकान
2: मिले?
5: उनके नाम नहीं है,
2: मकान उनके
5: मकान
2: नाम
5: उनके।
2: जी जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न है जी। नाजिया जी,
0: बिल्कुल, अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि एक वृद्ध महिला है, वो बच्चों पर आश्रित है, तो बच्चों की जिस तरीके माता पिता की जिम्मेदारी बच्चे होते हैं और बच्चों का भरण पोषण न्यायालय तय करता है, उसी तरीके वृद्धावस्था में जब माता पिता आ जाते हैं तो माता पिता की भी जिम्मेदारी उनके बच्चों पर है। वो चाहें तो भरण पोषण के लिए मुकदमा दायर कर सकती हैं, वो जा सकते हैं और उन महिला को भी, वो जो वृद्ध महिला है उनको भी कानूनी अधिकार प्राप्त है इसके लिए, तो वो मुकदमा डाल सकती
5: है। या कोई भी कागज उनके नाम नहीं है तो
0: नहीं, मकान नहीं है, जैसे मकान नहीं है लेकिन उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों की आर्थिक कहीं ना कहीं इनकम होगी, वो कुछ ना कुछ करते होंगे, है ना, वो चीज़ एक प्रार्थना पत्र वो न्यायालय में देंगी, अपने बच्चों का ब्यौरा बताएंगी, उनका वो उनके बच्चे क्या काम करते हैं, पुत्र या पुत्री जो भी है, उसके बाद में वो पूरी डिटेल के साथ में न्यायालय में प्रार्थना पत्र डालने के बाद में न्यायालय उनकी जिम्मेदारी को तय करेगा और एक निश्चित राशि तय कर देगा, और उसके बाद में वो

0: राशि उनको देनी पड़ेगी, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उनको निभानी पड़ेगी।
1: जी शुक्रिया अजय जी फ़ोन करने के लिए। आकाशवाणी प्रयागराज केंद्र में आप सभी सुन रहे हैं हेलो पनघट। नाज़िया जी एक बात जो अभी अजय जी ने अभी प्रश्न पूछा और आप जवाब दे रही थी, तो मेरे मन में आपने कहा कि भाई न्यायालय में आप जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं कोई भी, भाई न्यायालय तो बहुत बड़ा है।
2: बिल्कुल
1: है ना,
0: पारिवारिक न्यायालय में ये भरण पोषण का या महिलाओं से रिलेटेड जो भी मुकदमे होते हैं उसको पारिवारिक न्यायालय में आप डालेंगे, फैमिली कोर्ट में वो मुकदमा डाला जाएगा, भले ही एक महिला शादीशुदा महिला के भरण पोषण का मुकदमा हो या वृद्ध महिला है उसके भरण पोषण के लिए है, वो आश्रित है अपने बच्चों के ऊपर, तो उसके लिए पारिवारिक न्यायालय में जाना पड़ेगा और वो भरण पोषण का मुकदमा पारिवारिक न्यायालय में डालना पड़ेगा।
1: जी यानी कि जो भी बात है समस्या है वो का कागज पे बढ़िया सा लिखे के हुई और नियत पता पर ही जैसे काम बने
2: लिखित रूप में।
0: यहाँ पर जो भी समस्या है उनको एक अधिवक्ता को संपर्क करना पड़ेगा, अगर वो महिला है उनका आय का कोई स्रोत नहीं है तो वो संबंधित जिले में जाके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो निकाय है वहाँ पर एक मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट श्रेणी का अधिकारी जो होता है उससे जाके संपर्क करें या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाने पर वहाँ पर अपना निशुल्क अधिवक्ता के लिए प्रार्थना पत्र देंगे, अपनी समस्या बताएंगे, उसके बाद विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उनकी समस्या के समाधान के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा, वो अधिवक्ता उनकी समस्याओं को सुनेगा समझेगा और उसको प्रॉपर जो होता है सही तरीके से एक प्रार्थना पत्र बनाएगा, जो प्रार्थना पत्र न्यायालय में जिस तरीके का डाला जाता है ना, एक सामान्य प्रार्थना पत्र लिखना थाने पर देना FIR के लिए पंजीकृत करने के लिए और न्यायालय में मुकदमा दायर करना या भरण पोषण के लिए वाद डालना कुछ भी करना उसका एक तरीका अलग होता है, वो अधिवक्ता पूरा सही तरीके से उसको तैयार करेगा और उसके बाद न्यायालय की प्रक्रिया, न्यायालय में दाखिल करने के बाद न्यायालय की प्रक्रिया शुरू होगी और वो अधिवक्ता आपका निःशुल्क बिना किसी पैसे के आपके मुकदमे की पैरवी करेगा और आपको न्याय दिलाएगा। लेकिन इसके लिए आपका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, ये आपका कानूनी अधिकार है।
1: ये बहुत बड़ी बात कही ना आप, कहे कि जब तक साहस ना जुटाए तब तक बात बनी नहीं।
2: बिल्कुल सही। और नाज़िया जी एक साथ साथ देखा आप बहुत सारे सवाल के जवाब दें, पर देखा अक्सर माजून बहनी हरी ने सोचा थी कि पुलिस के पास जाए से कुछ ना हुई, कुछ मदद ना मिली, कई बार तो महिला हिम्मत जुटाए के पुलिस के पास जात भी है फिर भी तुरंत कार्रवाई नहीं होती, तो उके अंदर वो अंदर तक ये बात से देखा टूट जाते हैं, ऐसी स्थिति में महिला का तुरंत कौन सा कदम उठावे का चाहिए?
0: देखिए अगर कोई भी महिला थाने नहीं जाना चाहती है तो उसके लिए निशुल्क जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री टोल फ्री नंबर है जिन नंबर पर वो कॉल कर सकती है और फ़ोन करने के बाद में वो फ़ोन उसका उठाया जाएगा, जैसे मैं एक नंबर बताऊं 181-181 यहाँ पर ये महिला कॉल कर सकती है या 1090 जो पुलिस सहायता केंद्र का नंबर है वहाँ पर कॉल कर सकती है या 112 जो पुलिस का नंबर है जो पहले 100 हुआ करता था इस नंबर पर कॉल कर सकती है। अगर महिला ने 181 पर कॉल किया तो ये उसका फ़ोन लखनऊ में कनेक्ट होगा, उसके बाद संबंधित जिस जिले से महिला ने कॉल किया होगा वहाँ पर एक सेंटर संचालित है जो महिला कल्याण डिपार्टमेंट द्वारा संचालित होता है, सखी वन स्टॉप सेंटर जहाँ पर महिलाओं के लिए कई तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं, अगर महिलाओं को किसी तरीके का प्रताड़ित किया जाता है, अगर कोई महिला कोई बच्ची अपना घर छोड़ के निकल आती है किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में आती है या पुलिस भी, तो उसके लिए अस्थायी रूप से वहाँ पर रहने की भी सुविधा है और वहाँ पर बुला के उसकी काउंसलिंग भी की जाती है, महिला की बात को सुना जाएगा उसकी काउंसलिंग किया जाएगा और उसके बाद महिला के लिए जो भी मदद उपलब्ध होगी वो मदद वहाँ से उपलब्ध कराई जाएगी।
2: जी नाज़िया जी बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण आपने हमारे श्रोतागण को बताई है, पर अपने श्रोताओं को फिर से अपना एक नंबर फिर से बता दें जिस पर वो अपनी कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी भेज सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं और अपना प्रश्न भी भेज सकते हैं। पहला तो नंबर है, कॉलिंग नंबर है 0532-242-3649-05-2-2423-649 और दूसरा नंबर है 0532-2-9

0: 7072 0532 2970 462 और एक व्हाट्सएप नंबर भी है
1: 800-492-6250। ये नंबर पे PAN लिख के प्रश्न ज़रूर भेजें। नाज़िया जी, एक प्रश्न हमारे दिमाग में चलत रहा कि ऑनलाइन उत्पीड़न, आज देखा सोशल मीडिया के ज़माने में, मोबाइल के ज़माने में महिलाएं के ऑनलाइन धमकी मिलत बा, अश्लील तस्वीर के लेके, चाहे तस्वीरन के दुरुपयोग या साइबर उत्पीड़न के सामना भी करे के पड़त है। तो ऐसन स्थिति में महिला के का करे के चाहिए और सबूत के तौर पर कौने चीज़ के सुरक्षित रखे के चाहिए?
2: सबूत के तौर पे जिस तरीके महिला को जो भी संदेश प्राप्त हुए हैं, भले ही वो ऑडियो है या वीडियो शेयर हुए हैं या सोशल साइट्स पे जो भी मैसेजेस आए हैं, कहीं पर भी व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हैं, उसको साक्ष्य के रूप में वो अपने पास संकलित करें। उसके बाद में जाके अगर साइबर क्राइम, जैसे मैडम ने कहा कि अगर हुआ है तो साइबर क्राइम के लिए अलग से साइबर क्राइम थाने बने हुए हैं, वहाँ पर जाके शिकायत दर्ज कराएं या संबंधित थाने में जाके। और आज के टाइम में है कि आप कहीं पर भी घटना कहीं पर भी घटित होती है, आप 0 FIR कहीं से भी करा सकते हैं। तो आपके पास है कि आप उस साक्ष्य को, जो भी आपको धमकी मिली है, जो भी फोटोज वीडियोज जो भी आपके शेयर किए जा रहे हैं, उसको कलेक्ट करें और उसके बाद में जाके शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत करने के बाद में आपको आपकी समस्या का समाधान आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और अगर इस तरीके के सोशल साइट पर कंटेंट है, कंटेंट डले हुए हैं जो भी चीज़ है, तो उसको पुलिस के द्वारा बाद में हटाया भी जाता है। वो सारी चीज़ें महिला की गरिमा और महिला की सुरक्षा और लज्जा को देखते हुए वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी जाती है।
3: जी, बहुत बढ़िया। जो एडवोकेट बहन बैठे हैं, तो देखा श्रोता बंधु, अगर आपहु सवाल कोनो मन में चलत है तो देर ना करी, पूछी सवाल। ओकरा बाद एक गीत हम लोग सुनब, सब लोग नंबर तनी इत्मीनान से नोट करें, 0532 2423 6 4 9। हम लोगन के व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो देखा जया जी और गंगा जी, और अपने स्टूडियो में तो अपन वकील साहिबा हैं ही हैं, बहुत सारे श्रोतागण, तो भाई गीत का आनंद भी तो जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है
3: ना। हाँ, तो गीत सुने

0: गंगा
1: हाँ
0: दिखा
1: बनी
0: गीत तो सुन लिया गा, अब
1: बिल्कुल।
0: दिखा एक कॉलर फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो
1: तो
0: गजना
1: चल
0: लिया जाए। हेलो
1: जी आपको
0: नमस्ते,
1: नमस्कार। नमस्ते जी
0: नमस्ते
1: आपको। हाँ जी
0: जी,
1: नमस्ते
0: अपना
1: जी।
0: नाम
1: मैं
0: बताइए।
1: हाँ हाँ नाम पड़ेगा, मैं श्रद्धा त्रिपाठी
0: जी
1: अल्लाहपुर प्रयागराज से बोल

0: जी बताइए।
1: दीदी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि मैं शादीशुदा हूँ, अपना मेरा पर्सनल क्वेश्चन आप लोगों से और सभी दीदियों को मेरा मतलब आज बहुत मुझे खुशी है कि आप लोगों से बात हो रही है।
0: जी हमें भी बहुत खुशी है कि हमारी आपसे बात हो रही है।
1: थैंक यू दीदी, आप सबको सादर प्रणाम, सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं,
0: आपको
1: बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे
0: जी।
1: और इसी साथ अपना क्वेश्चन बताती हूँ। मेरा क्वेश्चन दीदी है कि मेरी शादी हो चुकी है
0: जी,
1: और मेरे दो बच्चे भी हैं
0: जी,
1: और मेरी उम्र है लगभग 45 साल, और मेरे पिताजी अच्छे पद पर रहे हैं,
0: टीचर्स
1: रहे हैं, तो और मेरे हस्बैंड जो है मतलब है छोटा मोटा काम करते हैं वो भी
0: जी।
1: मेरा क्वेश्चन है कि क्या अपने पिता की संपत्ति के मेरा अधिकार है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, आगे भी आप कुछ पूछेंगे।
1: मेरे पिताजी बहुत अच्छी संपत्ति है उनके पास, और हम थोड़ा सा आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है, कमजोर नहीं कह सकते, सिर्फ कमजोर कह सकते हैं थोड़ा सा
0: जी।
1: और बस यही है दीदी, लोग से थोड़ा सा आप लोग से संपर्क करेंगे, थोड़ा सा कानून लड़ा लेंगे।
0: बिल्कुल,
1: क्या अधिकार है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं शादी के बाद अधिकार नहीं है, और पिताजी का स्वयं ये कहना है कि नहीं अधिकार है तुम्हारा
0: जी। नहीं ऐसा,
1: तो आप इसको सही सही बताएं, सही रूप से बताएं। पुनः भैया सादर प्रणाम आपको। दीदी आप कुछ कहना चाहते हैं बता दे दीदी।
2: नहीं नहीं, अगर पिताजी ऐसा कह रहे हैं, संपत्ति में महिला का कानूनी अधिकार है, ऐसा नहीं है कि शादी हो जाने के बाद में उसको उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, कि प्रॉपर्टी राइट तो आपको मिला ही हुआ है ना, कि 50% का है, कि बराबरी का अधिकार है, तो उसके लिए आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा, सिविल का जो भी मुकदमा देखते हैं न्यायालय में, वकील जो इस तरीके का, उनसे संपर्क करना पड़ेगा, अपनी बात बतानी पड़ेगी, और उसके बाद में जो आपका कानूनी अधिकार है उसको लेना पड़ेगा। हम किसी की भी बात करें, अगर मैं
1: जी जी आप बताएं,
2: मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो अधिकार है वो अधिकार शादी के बाद में ख़त्म नहीं हो जाता है, आप ये बात समझे। माता पिता ने अगर एक लड़की की शादी कर दी तो उसका जो संपत्ति में अधिकार है वो संपत्ति में अधिकार ख़त्म नहीं हुआ। भले ही हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनका भी संपत्ति में अधिकार है, और हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनका भी है, यहाँ तक की है कि अगर शादी के बाद में पिता की मृत्यु, मान लीजिए लड़की की शादी हो गई है और पिता की मृत्यु हो गई है, पिता की मृत्यु के बाद में विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है, उसको इस वजह से नहीं रोक सकते कि उसकी शादी हो गई। अगर वो चाहे तो पिता की मृत्यु के बाद में भी नौकरी के लिए भी वो अपना आवेदन संबंधित विभाग को दे सकती है। तो इस सोच को निकाल दीजिए बिल्कुल से, कि आपका संपत्ति में अधिकार खत्म हो चुका है, आपको जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करना पड़ेगा, न्यायालय में जाके आप एप्लीकेशन लगाइए
1: जी। और ये एकदम कंफर्म है अपने, देखिए दीदी जानकारी मुझे भी थी कि जो अपना एमपी है, एमपी में शायद ऐसा है कि मरने के पहले ही अगर संतान कुछ भी हो चाहे बेटी
2: नहीं,
1: हो
2: नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं पर नहीं है कि शादी के बाद में उसका संपत्ति में अधिकार खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है।
1: मुझे टच कर रहा था दीदी। हाँ
2: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, हम खुद अपने अधिकार को छोड़ देते हैं ना, महिलाएं खुशी खुशी होती हैं कि भाई जो भी प्रॉपर्टी है हमारी शादी हो गई है तो उस पर हमारे भाई का पूरा हक है, तो हम खुद अपने हक को छोड़ देते हैं, हमारा जो भी अधिकार है, अधिकार जब हम लेते हैं तो अधिकार है, और हमने छोड़ दिया तो हमारा अधिकार वहीं से ख़त्म हो जाता है
3: जी। सुधीर श्रोतागण, स्निग्धा श्रीवास्तव के मैसेज आई बा, एडवोकेट बहन लिखत है, हमार एक दोस्त है गाँव के, कुछ जो लड़के लोग हैं चोरी छिपे फोटो खींच लिए हैं और गलत गलत वीडियो बनावते हैं और तमाम ग्रुप्स में जौन है डाल दिए हैं। तो भाई जो हमारी सहेली है वो अपने घर वालों का बताई कि भाई ये बात तो ठीक नहीं है, कहीं कंप्लेन की जाए, शिकायत की जाए। तो घर वाले कह रहे हैं, मैसेज में ऐसी बात लिखी हुई है कि भाई पुलिस में जाएंगे तो बात पूरी तरह से फैल जाएगी। तो वो चाहती हैं आपसे पूछना कि साइबर सेल किस तरह से काम करेगा और नाम ना आए, और लेकिन ये महिला जो है वो चाहती हैं कि जो लड़के परेशान कर रहे हैं उनको पनिशमेंट मिले, ताकि किसी और के साथ इस तरह के दिक्कत वो लोग ना कर पाएं।
2: जैसे आपने जो भी समस्या बताई उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको लिखित शिकायत देनी पड़ेगी, जो भी साक्ष्य हैं वीडियो हैं वो सारी चीज़ देना पड़ेगा। और महिला के लिए, अगर वो नाबालिग स्त्री है या बालिग है, महिला के लिए, क्योंकि महिला हमारी सोसाइटी का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो उनकी जो पहचान होती है उस पहचान को, पीड़िता की पहचान को गोपनीय रखा जाता है। यहाँ

0: तक कि न्यायालय में भी जो सुनवाई के तहत उनके जो वास्तविक नाम होते हैं उस नाम को नहीं लिया जाता है। तो इस चीज़ की पूरी कोशिश की जाती है कि उसकी पहचान को उजागर ना किया जाए, लेकिन सिर्फ डर की वजह से आप गलत चीज़ को बर्दाश्त करती रहेंगी तो इससे जो भी क्रिमिनल्स हैं या इस तरीके के लोग जो परेशान कर रहे हैं, इस मानसिकता के लोग हैं, तो वो आपको और भी परेशान करेंगे। तो डर को बाहर निकाल के आप थाने पर जाएं और लिखित शिकायत देके उनके खिलाफ FIR पंजीकृत कराएं। तभी FIR जब आप पंजीकृत कराएंगे उसके बाद में ही उनको दंड मिलेगा और आपको न्याय मिलेगा। और आप अगर डर की वजह से ऐसे बैठे रहेंगे तो आपको आपको कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला।
1: हाँ, नाज़िया नफीस बनी आज हमारे सबके साथ है, जुड़ के महिलाओं के कानूनी अधिकार जैसे इतने महत्वपूर्ण विषय पे इतनी सरल और उपयोगी जानकारी दे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेहा बनी। और आप सब श्रोतागण ने इतना सार्थक बनाया ने इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चले के वेला भाव तो राम राम किया जय बनी, राम राम बनी।

0: Council meeting in Kovalam, Tamil Nadu, to discuss interstate disputes, security and development issues. India-Singapore Ministerial Roundtable takes place in Singapore to strengthen bilateral cooperation in strategic areas including semiconductor and cyber security. Bangladesh to vote for the first time to elect its president today after a gap of 35 years. And Teresa Jolly and Gayatri Gopichand enter women's doubles quarterfinals of BWF World Championships. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
1: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
2: हमारी मैरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
1: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में

0: भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्रविरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर

0: निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
1: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
2: एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है, हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
0: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की

बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की ओर से उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
3: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है
2: जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलउदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
3: उन्होंने लिखा है धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान विज्ञान साहित्य भूगोल इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
3: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियां तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
3: जी हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों न आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
3: नेकी और पूछ, विमलेश जी आपने बिल्कुल सही कहा, जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
2: अजीत जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
3: वाह, क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
2: श्रोताओं, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
3: जी हाँ श्रोताओं, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है
2: जी।
3: श्रोताओं, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
2: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
3: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा
2: जी।
3: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती। कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?

0: जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
1: श्रोताओं, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
0: जी
1: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
0: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी,
0: जी
1: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
0: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
1: श्रोताओ, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
0: जी
1: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है, तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं।
0: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
1: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
0: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था, वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
1: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
0: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है, तभी उसकी फसल लहलहाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
1: श्रोताओं, अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी।
0: जी
1: हेलेन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
0: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
1: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
0: जी
1: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
0: तो निराश मत होइए, हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
1: तो मित्रों ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जलचक्र की कहानी को कविता और तालवाद्य की मजेदार संगत से

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का? अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना।
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
1: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई? हट हट हट यहाँ से, मेरी बारी है।
2: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
0: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी जल्दी आएगी। सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
3: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चाहते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से, तो आइएगा जरूर।
0: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी। इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है। अरे आ गए, देखो,
4: अरे देखो, आ गए।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी।
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
1: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
1: किस पर?
0: पानी पर।
1: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
1: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह

0: 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
1: हाँ ये बात तो है,
2: पानी की समस्या तो है,
3: हम तो परेशान हो गए हैं।
0: तो बच्चों इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
4: जल चक्र?
0: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
5: तो चलो शुरू करें।
0: चलो झुमकी।
5: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
6: सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया, आगे जोड़ो झुमरू जी और वो भी ताल में।
0: हाँ हाँ जोड़ता हूँ मैं, ये लो बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, पाप बन जल ऊपर आया।
6: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए, जब लग गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल।
0: रिम झिम रिम झिम वर्षा आई, चहुं ओर हरियाली छाई, झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
6: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
0: बताते हैं, सुनिए। पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
6: क्या बात है।
7: सूरज भाप बादल वर्षा का, जल चक्र यूं चलता जाता।
6: सभी बोलेंगे
8: जल चक्र यूं चलता जाता।
0: तो बच्चों कैसा लगा भाषा का ये खेल?
3: बहुत अच्छा।
9: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
10: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
11: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
12: ये मारा। हरा दिया, हरा दिया।
13: वैसे तनु, हाँ बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
14: जी,
13: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
14: नाना जी हा? मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
13: ये कैसी अजीब बात है?
14: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
13: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
14: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
13: अच्छा बेटा तनु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
14: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक

0: रोचक और मजेदार होती हैं।
1: अच्छा
0: हाँ और क्या, तो सुनाइए ना। हाँ, जल्दी सुनाइए।
1: हाँ, बेटा सुनाता हूँ।
0: जल्दी सुनाइए।
1: अरे सोचने तो दो,
0: जल्दी
1: सोचिए। किसकी कहानी सुनाऊं? देखो वो
0: अरे जीवन काका।
1: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई?
2: बाबूजी
1: हाँ?
2: आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
1: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
2: जी
1: यहाँ लेट जाओ।
2: जी
1: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु
0: जी,
1: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
0: जी अभी लाई।
1: हाँ हाँ खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
2: जी
1: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है
2: जी।
1: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
2: जी जी जी जी।
1: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
0: जी जी, जी नाना जी।
1: हाँ ला बेटा ला। जीवन
2: जी
1: जरा मुंह खोलो।
2: आ, आ, आ,
1: लो इसे जीभ के नीचे रख लो।
2: आ, आ, आ, आ, आ,

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
1: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहाँ एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
2: जी।
1: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
2: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
1: बेटे एकदम अलग आकार था।
2: अच्छा।
1: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
2: जी,
1: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
2: अच्छा।
1: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
2: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
1: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मा

0: अमीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
1: अच्छा।
0: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
1: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
0: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
1: जी,
0: जिसे बुखार होता
1: जी,
0: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
1: जी।
0: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
1: फिर
0: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
1: जी।
0: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
1: अच्छा।
0: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
1: लेकिन बुखार?
0: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
1: जी।
0: तो बेटा, तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
1: जी,
0: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
1: जी।
0: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
1: अच्छा।
0: और बुखार का अनुमान लगा लेते। लेकिन एक बात।
1: क्या?
0: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
1: जी,
0: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
1: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
0: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
1: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
0: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
1: हाँ जी।
0: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
1: जी
0: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना
1: जी।
0: समझ गई ना
1: जी।
0: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था
1: जी,
0: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
1: अच्छा।
0: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
1: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
0: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
1: अच्छा।
0: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं
1: जी,
0: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
1: अच्छा।
0: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा
1: जी,
0: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
1: अरे वाह।
0: हाँ। पर बेटा, डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
1: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
0: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे, अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
1: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं
1: जी,
0: बोल कर बतला देता है।
1: नाना जी।
0: हा?
1: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
0: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
1: अच्छा।
0: हा? इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
1: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
0: है ना
1: जी।
0: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन। और अभी

0: इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना
0: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम की NCERT की ओर से उमंग। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज रहे हैं। आज की हमारी ये सभा संपन्न होती है। शाम 4 बजे हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। हम आपको बता दें कि विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

FM 100.3 MHz पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा संदेश टू सोल्जर, जो कि हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान की रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइज़ुमी के बीच आज नई दिल्ली में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के प्रारूप के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वे आज पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। दिल्ली के उप राज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी मोर्चों पर निर्बाध बहु एजेंसी समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में निर्मित 2,35,000 मकानों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रूपये से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की। सड़क और परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 अन्य घायल हो गए। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड का सामना करेगी। मैच भारतीय नियमानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार और अब हम आपको लिए चलते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

हार्दिक अभिनंदन है। मैं गीतिका उनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं और आपसे वादा करती हूं कि हर बार की तरह आज का हमारा ये कार्यक्रम आपके दिलों में एक नई उम्मीद जगाने वाला है, क्योंकि हमारे लिए कोई कहीं मुस्तैद है, कार्यरत है, जो अपनी जान को अपनी हथेलियों में लेकर चलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश की सेवा में सर्वत्र अपना सर्वत्र न्योछावर किए आगे बढ़ रहा है, हर दिन हर रात। आपसे साझा करना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है शिव शंकर।

0: प्यारी और खूबसूरत बात आज के अंक की ये है कि ये सीधा गैंगटॉक से यहाँ पहुंचे हैं आकाशवाणी के स्टूडियोज में आपको अपनी यात्रा से अवगत कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए। हर सिपाही, हर ऑफिसर की अपनी यात्रा होती है, लेकिन उस यात्रा का गंतव्य सिर्फ देश सेवा होती है। तो देश सेवा को समर्पित हमारे आज के मेहमान शिव शंकर कुमार जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शिव शंकर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार SSB की ओर से आप सभी श्रोताओं को जय हिंद कहना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। SSB का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुरक्षा को बनाए रखना है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे SSB के सभी कार्मिक दिन रात पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपना काम कर रहे हैं। SSB हमारी इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो भूटान बॉर्डर के साथ साथ इलेक्शन ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी को भी बखूबी अंजाम दे रही है। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी टीम का।
0: जी इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी, आपने जिस तरह से व्याख्या की यहाँ पर SSB की, इससे ये साबित होता है कि आप देश के साथ साथ अपनी सेवाओं से, सेनाओं से कितना प्रेम करते हैं। और आज आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सशस्त्र सीमा बल का, उन तमाम सैनिकों का, उन तमाम अधिकारियों का जो कहीं ना कहीं अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने, आप कहते हैं ना कि अपने मनोबल या आत्मबल तो हमें हमारी सेवाएं सेनाएं देती हैं, पर हम किस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं वो भी सेनाओं के माध्यम से काबिल तारीफ है। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो नन्ना मन
1: जी,
0: लंबी उड़ान, छोटे छोटे पंख, आपका जो जीवन है, खासतौर पर आपके बचपन की बात की जाए तो किस तरह के बच्चे थे आप? क्या शैतान थे? और पढ़ाई में कितना मन लगता था? कैसा माहौल था घर में?
1: बचपन तो मेरा बिहार में सीतामढ़ी, जो एक बाजपट्टी पड़दौरा गांव है, वहाँ बिता है। मेरा परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा माहौल था और हमेशा इनकरेजिंग मिलता था काम करने के लिए। शरारती बच्चे तो थे ही, लेकिन हमारे परिवार से हमें मेहनत और अनुशासन के प्रति हमेशा सजग रहने को सिखाया गया है
0: जी।
1: और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने का भी एक हमारे पिताजी सिखाते थे कि पूरी ईमानदारी से कोई भी काम को करना है तो पूरी ईमानदारी से करना है, लगन के साथ करना है। तो वो हमारे अंदर हमेशा के लिए रह गया और आगे चल के हमारे जब भी हमारे प्रोफेशन लाइफ में भी वो काम किया है
0: जी। कहते हैं कि हमारा जो परिवेश है, हमारा जो परिवार है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे विकास में। आज हम जो कुछ भी हैं अपने परिवार की वजह से, और जो भी संस्कार आपको प्राप्त हुए वो देश सेवा में निहित है, नज़र आ रहे हैं। और आज जब आप अपनी वर्दी पहने यहाँ FM रेनबो के स्टूडियोज, आकाशवाणी के स्टूडियोज में बैठे हैं, तो आपके माता पिता जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे, घर परिवार वाले सुन रहे होंगे, वो इस बात की मिसाल दे रहे होंगे कि हाँ, हमारे बच्चे ने अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जो बेड़ा उठाया है, काबिले तारीफ है। तो शिव शंकर कुमार जी आप हमें ये बताइए कि कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको देश सेवा में इस पथ पर चलना है, और SSB ज्वाइन करने का फैसला कैसे लिया?
1: मेरे लिए वर्दी हमेशा सम्मान और जिम्मेदारी की प्रतीक रहा है। मन में हमेशा ऐसी इच्छा थी कि फौज के प्रति, देश के प्रति कुछ करना है, ऐसा काम करे जो देश और समाज में अपना योगदान भी दे सके। इसी सोच को जब हमने ग्रेजुएशन पास किया तो सुरक्षा बल में जाने का फैसला किया। उसके बाद SSC की फॉर्म आई, उसमें मैंने पास करके और फिर SSB को ज्वाइन किया है। एक SSB एक ऐसा माध्यम रहा, एक ऐसा अवसर रहा जिसके देश सेवा के साथ साथ देश सेवा करने का पूर्ण मौका मिला
0: जी। और ये मौका आपके जीवन में एक सुखद अनुभूति लेकर आया, वर्दी पहनना, फिर देश सेवा में जितने भी ऑपरेशंस में आप कार्यरत रहे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये अनुभूति ज़रूर हुई होगी कि अगर मैं सेना ना ज्वाइन करता तो ये मौका मुझे कहाँ मिलता, कहाँ मैं अपने देश का परचम लहरा पाता। तो ये सौभाग्य की बात है कि सेनाओं ने आपको चुना और सशस्त्र सीमा बल आपको बल दे रहा है आज, और आप इस बल से देश सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। सकती। तो ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के उपरांत आपने एग्जाम क्लियर किया, क्या प्रक्रिया?

0: प्रक्रिया रही, कैसे पहुंचे और कितने अटेम्प्ट्स किए, कितने अटेम्प्ट्स में आपको यह हासिल हुआ, क्या कुछ और भी करने की सोच रहे थे साथ साथ, या सिर्फ ये था कि फौज में ही जाना है?
1: ये मेरी पहली अटेम्प्ट ही थी और मैंने 2012 में ये एसएसबी को ज्वाइन किया था और इसकी जो फॉर्म थी एसएससी के थ्रू आई और 2010 में इसका प्रोसेस शुरू हो गया था। पूरी भर्ती जो होती है वो फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, रिटेन होता है, इंटरव्यू होता है, सारी प्रक्रिया को चयन करने के बाद, पास करने के बाद मेरा चयन हुआ था। इसमें फिजिकल टफनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस की भी परीक्षा होती है इसमें। अगर वो सारा चीज़ आप पास कर जा रहे हैं तो फिर आपका चयन हो जाता है। उस समय एक ही बात मन में था कि अगर मौका मिले तो मैं भी अपने इस काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ ये करूँगा।
0: जी, तो वो कौन सा वर्ष था जब आपका चयन हुआ, और चयन होने के बाद जब ये खबर आप अपने परिवार तक ले गए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?
1: ये 2012 में हुआ है। 2012 में हमें एसएसबी ज्वाइन करने का मौका मिल गया था। परिवार के लिए तो ये बहुत खुशी और गर्व का विषय था, लेकिन एक छोटा सा वो भी था कि फौज में जा रहा है तो फौज में घर से दूर रहेगा। उनके मन में एक था कि घर से दूर रहेगा, लेकिन उनका हमेशा सपोर्ट रहा है कि हाँ चलो जो भी करना है अपने मन से ईमानदारी से करते रहना है, मुश्किल परिस्थितियों में भी ड्यूटी करना है तो उसके लिए भी परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने हमेशा साथ किया है, दिया है।
0: उसी साथ के चलते आप आज यहाँ तक पहुँच
1: जी
0: गए,
1: जी
0: सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक का सफ़र आपने पूरा किया। इसके बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे। ये भी बताएं कि जब आप घर परिवार के साथ साथ जब जिस जगह से आप संबंध रखते हैं, आपके नाते रिश्तेदार दोस्त, उन तक जब ये बात पहुंची कि हमारा दोस्त या हमारा परिवारजन अब एसएसबी ज्वाइन करने वाला है, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या कभी किसी ने ऐसा कहा कि आप जैसा बनना चाहते हैं, हम भी एसएसबी ज्वाइन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं देश की?
1: सभी के लिए ये, हमारे गांव वालों के लिए भी ये गर्व की बात था कि हमारे बीच का एक लड़का कोई जाकर फौज में भर्ती हो रहा है, वो सब के लिए गर्व की बात था। और एक तो आइडल बन ही जाता है गांव समाज के लिए कि हाँ कोई भी जाए तो वो उसके जैसा बनना है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरे जैसा ही बनना है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करें वो ज़्यादा ज़रूरी है।
0: जी, पर ऐसा तो ज़रूर होता होगा कि जब आप अपने घर जाते होंगे तो आपके अपने आपके दोस्त, आपके परिवारजन, एक जमावड़ा सा लग जाता होगा और कहते होंगे सुनाओ ना कुछ किस्से कहानियाँ, क्या कुछ होता है एसएसबी में, जहाँ जिस बटालियन के साथ जाते हो क्या कुछ खास हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत उत्सुकता रहती है कि हमारे जो देश के जो वीर हैं ना, कैसी ज़िंदगी जीते हैं। हम आम जनमानस बस आपके किस्सों को दोहराते हैं, लेकिन जब आपकी ज़ुबान इनको सुनते हैं ना तो गर्व से सीना फूल जाता है। आज जिस कार्यक्रम के माध्यम से भी जितने लोग हमें सुन रहे हैं, संदेश आने हम तक पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासा रहती है कि कैसा जीवन जीते हैं। ये तो जानते हैं कि मुस्तैद रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई ज़िंदगी ऐसी होती होगी जो हम नहीं जी पाते, और यही कारण है कि आज देश के युवा, भावी पीढ़ी फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसा होता होगा आपके साथ?
1: ये होता है। फौज ऐसी संस्था है जो एक जॉब नहीं देती, एक लाइफ देती है
0: जी,
1: ये पूरा जीवन देती है हमको। आप अगर आप इसमें जीना चाहते हैं तो पूरी लाइफ जो है वो देती है। और किस्से कहानियाँ तो चलते रहते हैं, घर पे जाते हैं तो जो भी किस्से कहानियाँ वो चलते रहते हैं, सभी उत्सुक रहते हैं कि कुछ तो बताए फौज में कैसे चलता है, क्या होता है, नहीं होता है, ये सब तो चलते रहता है। और ड्यूटी के टाइम में ड्यूटी, और ड्यूटी जब नहीं रहती है तो हम लोग भी रिलैक्स होके रहते हैं और काम करते हैं
0: जी। लेकिन लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए आपने मेहनत की, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हुआ, और लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम क्लियर किया, हर चरण में आप उत्तीर्ण हुए, पास हुए, उसके उपरांत तो ट्रेनिंग जो एक अहम हिस्सा रही, तो ट्रेनिंग का सफ़र कैसा रहा, कहाँ ट्रेनिंग हुई, और क्या आप ये मानते हैं कि इस ट्रेनिंग ने आपको पूर्ण रूप से तैयार कर दिया था सेवाएं देने के लिए?
1: मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 2012 में हुई, जब मैं बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए सीटीसी सलोनीवारी असम में है वहाँ गया। वहाँ से एक सिविलियन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक फौज में आने के लिए, फौजी बनने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया 13 महीना का जो बेसिक ट्रेनिंग था उसमें। इससे ये होता है कि हमारा सिविल लाइफ और फौज के लाइफ थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब फौज में कैसे किससे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, सारा चीज़ को वो 13 महीने के अंदर में हमें हमारे इंस्ट्रक्टर लोग ने, हमारे जो भी अधिकारी लोग हैं

0: हमें सिखाया, उसको पूरी तरह से मजबूत बनाया, फिजिकल टफनेस से लेके मेंटल टफनेस तक सभी चीज़ को हमने सिखाया गया उसके उसी दौरान। उसके बाद हमारी पोस्टिंग आगे होती चली गई। उसके बाद मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 53 बटालियन फालाकाटा में हुई, जो इंडो भूटान बॉर्डर को मैन करती है, वहाँ पे ड्यूटी करती है। उसके बाद 2018 में मेरी पोस्टिंग सीतामढ़ी 51वीं बयानी है, वहाँ पे जो इंडो नेपाल बॉर्डर को ड्यूटी करती है, मैन करती है, वहाँ पे हमारी ड्यूटी हो गई। वहाँ से होने के बाद हमें 2021 में ANO जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस है वो 16वीं वाहिनी जमुई बिहार में हमारी पोस्टिंग हो गई, वहाँ पे हमने दी। और फिलहाल मैं SHQ गैंगटोक में अपनी सेवाएं एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक ऑफिस ड्यूटी के रूप में दे रहा हूँ।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम यही कहेंगे कि ये सफ़र, ये कारवां यूं ही जारी है और जारी रहेगा। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने हमारे शिव शंकर कुमार जी, और आज इंस्पेक्टर के रूप में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो इनके सफ़र के बारे में और चर्चा करेंगे। और आप सभी श्रोता जो संदेश भेजना चाहते हैं 9868107070 इस नंबर के माध्यम से आप संदेश भेजिए और अपनी भागीदारी निभाइए। इस बात का प्रतीक चिन्ह बनिए कि हम देशवासी अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। सेवाओं के माध्यम से हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो नित्य प्रति कार्यरत रहते हैं और जिनके लिए सिर्फ देश सेवा ही सर्वोपरि है, उनको सलाम करते हैं संदेश के माध्यम से।

0: लक्ष्य प्राप्ति किसे कहते हैं ये तो हम अपने फौजियों से ही सीखते हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति प्रेम ने हमेशा इन्हें लक्ष्य प्राप्त करना ही तो सिखाया है। और इस लक्ष्य प्राप्ति की वजह से हमारे देश भारत ने हमेशा परचम लहराया है, अपने फौजियों की वजह से और इनके देश प्रेम की वजह से। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार सहस्त्र सीमा बल से। और जैसा कि मैं साझा कर चुकी हूँ कि आजकल ये गैंगटॉक में कार्यरत हैं और सीधे गैंगटॉक से यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियो आए हैं, यही इनकी कर्तव्य निष्ठा है, यही देश प्रेम है। और सहस्त्र सीमा बल ने जैसे ही इन्हें कहा कि आपको जाना है और पहुँचना है, देखिए ये तुरंत कल चले और आज यहाँ पहुँच गए। आपसे ये जानना चाहते हैं हम शिव शंकर कुमार जी, एक लंबा सफ़र तय करता है एक फौजी, 2012 में आपकी नियुक्ति हुई, आप सब इंस्पेक्टर बने, फिर 2018 में इंस्पेक्टर बने, ये सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। पदोन्नति अपने आप में हमें सुखद अनुभूति कराती है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां और जिम्मेदारी लेकर आती है।
1: यह सफ़र मेरे लिए बहुत सीखने वाला रहा है। 2012 में मैं सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ था, उसके बाद एक प्रक्रिया है, अगर वैकेंसीज हो और आपका सर्विस रिकॉर्ड ठीक हो तो आपको एक डिपार्टमेंट आपको प्रमोशन देती ही देती है
0: जी।
1: उसके साथ जब 2018 में मुझे इंस्पेक्टर बनाया गया था, रैंक बढ़ने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ती है
0: जी।
1: इस दौरान मैंने अपने जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हुए उनसे भी बहुत कुछ सीखा, और जो हमारे सहपाठी है, कार्मिक है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एक सिविलियन होकर आकर फौज में ट्रेनिंग के बाद अगर ऑन ग्राउंड जो ड्यूटी करता है उसको सीखने के लिए, जो पहले से जो भी काम कर रहे हैं उनसे सीखने को मिलता है, वो हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाता है
0: जी। जी, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और आपको ज़िंदगी को जीने लगते हैं और लगने लगता है हम इसी के लिए बने थे, और जिसके लिए बने थे आज उसके लिए कार्यरत है, आपके रग रग में शामिल हो जाता है। शायद सेनाएं आपको इस तरह से तैयार करती हैं कि बस आपके रगों में, आपके खून में सिर्फ सेनाएं और देश प्रेम रह जाता है जी। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि जब आप सेनाएं ज्वाइन करते हैं, जब आपने SSB ज्वाइन की, तो निश्चित परीक्षण के अंतर्गत आपको फिर आगे पोस्टिंग्स मिली, लेकिन प्रशिक्षण का सिलसिला फौज में जाने के बाद कभी खत्म नहीं होता, वो तो बरकरार रहता है ना। तो क्या आपको लगता है कि जो भी ट्रेनिंग्स आपने बीच बीच में की या करते आ रहे हैं, इसने आपका निर्माण किया है, इसने आपको पूर्ण रूप से एक फौजी होना भी सिखाया है और कैसे चुनौतियों से लड़ा जाए ये भी बताया है?
1: प्रशिक्षण ही किसी को बेटर बनाती है। पहले हमने बेसिक ट्रेनिंग किया, उसके बाद समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन हमको कोर्सेज कराती रहती है, इन प्रोफेशनल कोर्सेज हो और ट्रेनिंग भी हो वो कराते रहती है। जैसे आपको प्रमोशन भी मिलता है तब भी आपको कोर्सेज करने पड़ते, कोर्सेज क्वालिफाई करने पड़ते, तब आपको प्रमोट किया जाता है। उसी तरह से हर कोर्स के लिए, हर ड्यूटी के लिए अलग अलग कोर्सेज है जो आपको प्रोफेशनली साउंड बनाने के लिए कराए जाते हैं। जिस प्रकार से कोई भी कोर्सेज हो, जंगल वारफेयर का कोर्सेज हो, जंगल में कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग कराना हो, जैसे बॉर्डर पर ड्यूटी करना है, इंडो नेपाल बॉर्डर को कैसे मैन करना, इंडो भूटान बॉर्डर को कैसे मैन करना, उसकी भी ट्रेनिंग, ये अनवरत जारी रहता है। और फौज, मैंने पहले भी बताया, एक लाइफ है, तो इसमें अनवरत जारी रहेगा कोर्सेज कराना, जिससे कि आप और टफ हो सके और अपने काम को अच्छे तरह से कर सके। इसीलिए ट्रेनिंग हमेशा जरूरी है
0: जी।

0: और ना शब्द तो कभी होता ही नहीं आपकी डिक्शनरी में, क्योंकि सेनाएं आपको हमेशा यही सिखाती हैं,
1: ना तो है ही नहीं।
0: ना तो है ही नहीं, इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। बस जैसा कि हमने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति ही आपका अल्टीमेट गोल है, जिस काम को आपको दिया गया उसको आपको पूर्ण करना है, यही आपकी जिम्मेदारी है।
1: और हम लोग उस जिम्मेदारी को पूरी तरह बखूबी निभाते भी है।
0: जी, निभाते हैं। और एक बात व्यक्तिगत पूछना चाहूंगी, एक फौजी होने के नाते घर भी है, परिवार है, तमाम रिश्ते हैं, और एक तरफ देश प्रेम है, तो इस कहते हैं कि एक फौजी के मन में कभी कोई जंग नहीं होती, उसके वक्त उस मतलब परिवार और देश को लेकर उसके मन में सिर्फ देश पर होता है कि बस अब देश के लिए समर्पित है, माना कि घर है, परिवार है, भावनाएं हैं, तो इस चीज को आप किस तरह से अपने जीवन में समाहित करते हैं?
1: थोड़ा मुश्किल तो है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परिवार का अगर सहयोग मिलते रहे तो ये सब आसान हो जाता है। परिवार और नौकरी के बीच में ये सामंजस्य बैठाना, अगर परिवार से साथ मिलता है तो ये एकदम आसान हो जाता है।
0: जी
1: सुरक्षा बल की नौकरी में कई बार परिवार के जो महत्वपूर्ण अवसर होते हैं उसमें भी हम लोग नहीं आ पाते हैं, तब भी एक परिवार का जो सहयोग होता है अगर वो मिलते रहता है तो सारा आसान हो जाता है।
0: जी सब कुछ आसान हो जाता है। घर परिवार से आपको ये कहा जाए कि जाओ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो और जाओ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो, क्योंकि हमारा सम्मान तुम्हारे सम्मान में है, क्योंकि जब जब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तब तब हम गर्व से कहेंगे कि हमारा बेटा जो है देश प्रेम में है और देश के लिए कार्यरत है। तो यही तो जज्बा है जो हमें हर वक्त अपनी ओर आकर्षित करता है, और कितने ही युवा ये चाहते हैं कि हम फोर्सेस ज्वाइन करें और देश का नाम ऊंचा करें। तो मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम है।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इनकी यात्रा इन्हीं की जुबानी सुनने में जो सुखद आनंद प्राप्त हो रहा है, ना जाने कितनों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन रहा है। बहुत सारे संदेश हम तक पहुँच रहे हैं, आप सभी के नाम हम जरूर लेंगे, लेकिन इससे पहले इनकी यात्रा जिसको हम सुनने के लिए इतने ललायत हैं कहीं भी छूट न जाए। दिल चाहता है इनसे बार बार बहुत सारे प्रश्न किए जाएं। जितना हमें आपके बारे में पता लगा है कि आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई बार तैनात किया गया है, आपको तैयार किया गया है, कभी महसूस होता है कि अगर आपको ये कार्यभार ना सौंपे गए होते तो आप जो आज हैं वो आज ना होते।
1: जी, ऐसे क्षेत्रों में सबसे जरूरी होता है हमेशा सतर्क रहना। हमारी अपनी ट्रेनिंग और जो हमारे ऑफिसर्स के निर्देशों के अनुसार हम लोग काम करते हैं, ड्यूटी के लिए हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। टीम के साथ साथ एक टीम के भावना के रूप में काम करते हैं, टीम का कम्युनिकेशन एक दूसरे के प्रति ठीक रहना चाहिए और एरिया के बारे में जानकारी होना चाहिए जहाँ पर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो कोई भी काम आसान हो जाता है।
0: जी, कोई भी काम आसान हो जाता है, लेकिन आसानी से पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार करना होता है और आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, आपकी कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्यों का पालन करने की जो आप में गुण निहित हैं, इसकी वजह से ही आपको शायद ऑपरेशन जोश के लिए भी चयनित किया गया, जहां पर आपने अपनी टीम के साथ मिलकर दमखम स्थापित किया और उस कहते हैं कि उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया।
1: जी, ये 8 जून की घटना है, 8 जून 2022 की घटना है। ये मेरी टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। ये बिहार राज्य के जमुई ज़िले की घटना है जिसमें हम एक ऐसे सफल ऑपरेशन के बारे में आज बात करेंगे जिसमें हमारी टीम ने एक हार्डकोर नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था और उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद किया गया था।
0: जी,
1: ये सफलता मेरी नहीं पूरी टीम की सफलता है जिसमें आपसी तालमेल हो, सही समय पे जो मिली सूचना को परिणाम था कि हमने ये ऑपरेशन सफल किया। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ टीम ने कार्रवाई की और नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था। इस तरह के ऑपरेशन किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है, एक पूरी टीम होती है, पूरी टीम का योगदान होता है इसमें। आसूचना मिलने प्राप्त करने से लेके ऑपरेशन को अंजाम देने तक एक सभी कार्मिकों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और वो अपनी पूरी ईमानदारी और साहस के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया था। एसएसबी इस ऑपरेशन के बाद जमुई ज़िले में बहुत सारे नक्सलियों ने अपने आप इस ऑपरेशन के बाद खुद ब खुद सरेंडर किया सुरक्षा बलों के सामने आकर।
0: उनके मन में इतना डर
1: बन गया था और जस्ट एक सप्ताह के अंदर ही जो ये ऑपरेशन होने के बाद बहुत सारे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों और पुलिस के सामने आके खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि एसएसबी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण जम्मू ज़िला आज पूर्णतः नक्सल फ्री घोषित हो चुका है। इसमें एसएसबी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर अपनी टीम को भी, सभी साथी कार्मिकों को उनके साहस और मेहनत एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए बधाई देना चाहूँगा। सही समय पे सही कार्रवाई करना एक ऑपरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है, जो हमारी टीम ने उसको किया।
0: जी, एक बात और पूछना चाहूँगी, जब इस तरह के ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते हैं, एक टीम का हिस्सा बनते हैं, तो निश्चित रूप से अपने सहकर्मियों से भी आप बहुत कुछ सीखते होंगे।
1: काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैंने पहले भी बताया कि ये टीम को लेकर काम करने की पूरी टीम काम करती है, जिसमें हम लोग हमेशा कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो एक टीम के साथ काम करते हैं। इसमें किसी एक की जिम्मेवारी नहीं होती, सभी की अलग अलग

0: जिम्मेवारियाँ बांटी हुई होती है और वो सभी मिल के इस काम को अंजाम देते हैं। एक सूचना मिलने से लेके ऑपरेशन करने तक सारी की जिम्मेदारियाँ अलग अलग होती है, और जब ये ऑपरेशन सफल होता है तो वो सभी के लिए उतना ही गर्व का बात है जितना अगर मैं क्या कहूँ इसको, सभी के लिए गर्व की
1: जी,
0: बात
1: हर
0: है ये।
1: मेंबर के लिए, जितने भी
0: जी
1: मेंबर्स हैं। अच्छा, हर मेंबर को उसका कार्यभार सौंप दिया जाता होगा और ये कहा जाता होगा कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करने पर जिस तरह से कमांड दिया जाएगा आपको उसी वक्त डिसीजन लेकर कि आपको उसको सुचारू करना है, आप उसी वक्त अपनी बुद्धि से, अपनी कहते हैं कि हमारी बुद्धि जो है हमें निर्णय लेने में मदद करती है, कमांडर आपका आपको निर्देश देता है, उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं उस काम को करने के लिए।
0: ग्राउंड में आने के बाद सभी को ऑन ग्राउंड के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, लेकिन पहले जो भी प्रशिक्षण मिला हुआ है उसको अपने निहित करते हुए और काम को आगे किया जाता है। हमेशा जो भी ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले सभी का काम को बता दिया जाता है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, और सभी अपने अपने काम को बखूबी करते हैं और उसके कारण हमें सफलता मिलती है।
1: बहुत खूब। अच्छा, यहाँ पर आकर आपको लगता होगा जब आप ऑपरेशंस का हिस्सा बनते हैं और जैसा कि हमने कहा कि आप बहुत से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपने कार्य भी किया है, तो जो प्रशिक्षण आपने हासिल किए हैं, जो आपको प्रशिक्षण दिए हैं
0: जी
1: सशस्त्र सीमा बल ने, वो आपको लगता होगा कि वो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ कि आपको वो ट्रेनिंग मिली, नतीजतन आप आज इतने सारे ऑपरेशंस का हिस्सा बन रहे हैं।
0: ट्रेनिंग सबसे जरूरी है। जितना टफ ट्रेनिंग होगा उतना फायदा मिलेगा ग्राउंड में काम करने के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा काम करेगा। ट्रेनिंग सबसे जरूरी चीज़ है। टफ जितना ट्रेनिंग होगा उतना फायदा हमको ग्राउंड में काम करने के लिए मिलेगा।
1: जी, और कहते हैं कि कुछ विपत्ति जो है ना बताकर आती है, लेकिन कुछ अनदेखी होती हैं, उसके लिए आपको सशस्त्र सीमा बल किस तरह से तैयार करता है?
0: हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करके रखता है। फौज ऐसा ही है ही कि जो कठिन परिस्थिति जब भी है तब भी एक फौजी खड़ा रहता है वहाँ पे, उसी के लिए फौज रहती ही है।
1: जी, जैसा कि हम ने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आपको आपके ऑपरेशन जोश के लिए, जिसमें आपने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उस नक्सली प्रभावित क्षेत्र को नेस्तनाबूद किया, और अगर हम गलत नहीं हैं तो जितने भी आर्म्स और एम्यूनेशन थे उनको भी आपने जब्त किया आखिरी में, और आपको 2024 में गैलेंट्री पदक से भी नवाजा गया, वो अनुभूति किस तरह की थी? सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनना अपने आप में एक अलग अनुभूति, लेकिन सम्मान मिलना आपके कार्य के लिए, वो उससे भी बड़ी बात। उस वक्त कैसा महसूस हुआ?
0: ये पल तो मेरे लिए गर्व और इमोशनल इमोशनल भी था। जब देश की सेवा करते हुए कोई सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी भी होती है। इस सम्मान को केवल अपना सम्मान नहीं मानता हूँ, ये पूरी टीम का सम्मान है। और मेडल आगे भी आगे अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीक़ों से करने की
1: जी
0: प्रेरणा देता है और आगे हम लोग भी और मेहनत से और लगन के साथ कार्य करते रहेंगे।
1: जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि जब मेडल प्राप्त होता है सुखद अनुभूति होती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आप अपने ऊपर और लेते हैं, और ये कहते हैं अपने आप से स्वयं से बात करते हैं और कहते हैं कि अगली बार इससे भी बेहतर कर दिखाएंगे, है ना, और जितनी भी जिम्मेदारियां मिलेंगी उनका भी निर्वाह करते हुए चलेंगे, मन में बात जरूर आती होगी।
0: हमेशा कोई भी ऑपरेशंस होता है तो उसकी बाद में उसकी समीक्षा होती है कि इस ऑपरेशन को और कितने बेहतर किया जा सके, तो आगे नेक्स्ट ऑपरेशन में उसको और उससे बेहतर किया जा सकता है और करते हैं हम लोग।
1: जी बहुत बढ़िया। अच्छा, गैलेंट्री पदक के अलावा भी आपको और कई सम्मान दिए हैं SSB ने, उनके बारे में भी हमें बताएं।
0: तो उनके अलावा बहुत सारे सम्मान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, जिसे हमारे डीजी महोदय के द्वारा भी डीजी सिल्वर डिश से नवाजा गया है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में अगर ड्यूटी कर रहे थे वहाँ भी रिवॉर्ड्स मिले हैं, कमेंडेशन भी मिले हैं। हर सामान एक खुशी देता है और साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है कि और इससे बेहतर करना है कुछ।
1: जी, इससे बेहतर करना है, और देश की, चाहे फौज की बात की जाए तो चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे वो बाहम सुरक्षा की बात हो, और हर फोर्स अपना अपना कार्य करता है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्यरत है वो आंतरिक करते हैं, जो
0: जी
1: बाहम के लिए जिम्मेदार हैं वो बाहम सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, देश,
0: जी
1: है ना, सिर्फ देश ही याद आता है और बस देश ही समझ में आता है, उसके
0: जी
1: अलावा कुछ और नहीं।
0: सबसे पहले देश है।

0: देश के लिए कुछ भी करने के हो तैयार रहते हैं हम लोग।
1: जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही, देश के लिए तो मर मिटने तक के लिए तैयार रहते हैं जब अपने घरों से निकलते हैं और फौज ज्वाइन करते हैं, और फौज ज्वाइन करने के बाद तो जिस भी ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि घर भी लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। और शायद यही आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है, यही जो आपका प्रेम है देश के प्रति, हम देशवासियों को हमेशा ये प्रेरित करता है कि आप हमें जहाँ भी मिले हम आपको सलाम करें और कहें आप हैं तो हम हैं और आप नहीं तो हम नहीं।

0: और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार, जिनकी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं दिल में खूक उठ रही होगी आपकी, और आप भी ये सोच रहे होंगे कि हम भी फोर्सेस ज्वाइन करें और देश के प्रति अपने सम्मान को, हर कोई व्यक्ति ना यही चाहता है कि देश के लिए काश हम कुछ कर पाएं, और सेना ज्वाइन करना हर किसी के दिल में हुक ज़रूर मारता है। आज हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी से, इनकी यात्रा हमने इनकी ज़बानी सुनी। शिव शंकर कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अलग अलग बटालियंस में आप तैनात रहे, आप अलग अलग बटालियंस का हिस्सा रहे, क्या कुछ कार्यभार आपको सौंपे गए और वो कार्यभार आपको कितने अच्छे लगे, वो तो आपकी मुस्कान से पता लग रहा है कि आपके लिए हर बटालियन दिल के करीब रही है और बहुत सारी यादें देखी गई है हर बटालियन, तो कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अपनी बटालियंस के बारे में?
1: मेरे लिए हर वाहिनी अपने अलग अलग यादें हैं, हर वाहिनी की अलग अलग यादें हैं, वहाँ पर काम करने वाले साथी जो भी रहते हैं वो एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, हम अपना सारा सुख दुख जो भी है उस के इर्द गिर्द ही बुनते हैं, हम एक टीम की तरह एक टीम भावना के साथ काम करते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी जो भी कार्य किए गए हैं वो साथियों के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल हमेशा याद रहते रहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमने सभी बॉर्डर पे काम किया है, इंडो भूटान बॉर्डर सबसे पहले हमने किया, इंडो भूटान बॉर्डर का सीनेरियो अलग, फिर इंडो नेपाल बॉर्डर पे आया, इंडो नेपाल बॉर्डर का भी अलग ड्यूटी, उसके बाद हमने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में काम किया 16 बटालियन में, जिससे हमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली थी वहाँ पे। इसके बाद अभी हम पूरी तरह से ऑफिस ड्यूटी में है, गैंगटोक में पोस्टेड है, तो सारा काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसी ड्यूटी के दौरान।
0: जी, ये बहुत प्यारी बात होती है कि जब आपको अलग अलग ऑपरेशन साथ ही साथ अलग अलग तरह के कार्यभार संभालने का मौका मिलता है अपने कार्यकाल में, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। आप फोर्सेस को उतनी अच्छी तरह से जान पाते हैं कि हमारी जो फोर्सेस है क्या कुछ करती हैं, कैसे करती हैं, और यही शायद बहुत खूबसूरत बात होती है। अच्छा, ये बताइए कि हर बटालियन या हर जिस बटालियन में आप रहे हैं, तीन तीन साल के अंतराल के बाद आपकी पोस्टिंग बदली होगी, एक बटालियन छोड़ने के बाद, एक पोस्टिंग छोड़ने के बाद कितना दुख होता है?
1: ये काफ़ी दुख होता है, कभी लगता ही नहीं कि वहाँ से निकल के दूसरे जगह चले जाए। एक फैमिली बन जाती है, लगता है कि यहीं पे अपनी पूरी नौकरी कर ले, यहीं पे अपनी ड्यूटी कर ले, लेकिन एक प्रोसेस है और उसको हमको मानना पड़ता है। जब ऊपर से आदेश आ गया कि आपकी पोस्टिंग दूसरे जगह कर दी गई है, वो बिना हिचक के हम लोग अपना बैग पैक करते हैं और चल देते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए।
0: जिस तरह जो भी निर्देश दिया जाता है उसी के तहत आप अपने आप को मुस्तैद करते हैं, फिर नई जगह में पहुंचते हैं और फिर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब किसी टीम में रहते हैं तो आपसी प्रेम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आप जब उस यूनिट को, उस पोस्टिंग को छोड़ते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन वो तीन साल का समय कहते हैं कि बहुत आत्मीयता लेकर आता है, सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपनी यूनिट के सहकर्मियों के साथ आप साझा करते हैं। पार्टी वार्टी करते हैं?
1: पार्टियां होती रहती है।
0: अच्छा,
1: ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि फौज एक लाइफ देती है, आप उस लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय

0: कीजिए, ड्यूटी है और वो लाइफ भी देती है जो जिसके लिए हम लोग भर्ती होते हैं।
1: जी अच्छा, आप कुछ देर पहले मुझसे कह रहे थे कि अगर आप यूनिट में ना भी हों, अपने घर गए हों और आपके घर में कोई खुशी का माहौल हो, तो वो खुशी आपकी यूनिट में भी मना ली जाती है।
0: फौज में ये परंपरा भी है
1: हाँ,
0: कि अगर घर में खुशी है तो फोन कर दो और यहाँ पे पार्टी पहले हो जाती
1: अरे वाह,
0: है।
1: क्या बात है। मतलब आपके जितने भी दोस्त हैं वहां पर अपने हिस्से की पार्टी वहां कर लेते हैं, आपकी
0: जी
1: खुशी में शामिल हो जाते हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। जब आपके साथ है, यूनिट में है, तब भी एंजॉय कर रही हैं, तब भी मना रही हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रही हैं, और अगर दूर भी हैं, बस बताने भर से वो आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं।
0: फौज की ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी है,
1: हाँ
0: हमेशा सुख दुख उन्हीं के साथ बांट के रहना है, तो
1: हाँ
0: उनके लिए ही सारा चीज़ समर्पित रहता है, हम अपनी टीम के लिए ही हमेशा समर्पित रहता है।
1: अच्छा, ये बताइए कि जब घर आप जाते हैं, तो घर से वापस जब अपने यूनिट जाते होंगे, तो माँ, घर परिवार वाले कुछ डब्बे खाने पीने का सामान देते होंगे, आपके साथ बंद कर जरूर जाता होगा,
0: वो सबके लिए होता
1: वो
0: है।
1: सबके लिए होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक महीने का सामान है तो वो एक महीने में खत्म होना है, या वो उससे पहले खत्म हो जाता है।
0: नहीं, वो सबके लिए होता है, जो टीम है हमारी उस सबके लिए होता है
1: हाँ
0: वो।
1: हाँ हाँ हाँ तो मुझे लगता है कि जाते साथ ही सब डब्बे खाली हो जाते होंगे,
0: जरूर जरूर,
1: और बड़ी चाह होती है कि अरे घर से आए हो, ये बताओ क्या लेकर आए हो।
0: हमेशा रहती है चाहत रहती है कि कुछ तो लेकर आया होगा।
1: अच्छा, ये बताइए, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त रहते होंगे, लेकिन आपके साथ ऐसा कौन है जो साथ चलता है, जिसको आप ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कोई ज़िंदगी में है, जिससे बात कर रहे हैं, जो चल रहा है साथ, कोई है ऐसा?
0: एक टीम रहता है वो हमेशा हमारे साथ चलती है।
1: और
0: फौज
1: रेडियो?
0: में रेडियो भी है, वो रेडियो एक लाइफ का हिस्सा है, वो हमेशा आपको चलते रहता है, साथ साथ चलते रहता है, दिन दिनचर्या में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपको बताते रहती है हमेशा।
1: हाँ, ऐसा महसूस होता है किसी की आवाज़ कानों तक पहुंच रही है, लेकिन आप व्यस्त हैं, अपने काम में मग्न हैं, लेकिन अपना साथी, वो साथी तो है ही, सहकर्मी तो है ही, लेकिन रेडियो भी साथ साथ है। अच्छी, बताइए कि त्योहार कैसे मनाते हैं आप, सारे त्योहार मनाते हैं वहाँ?
0: अगर हम यूनिट में मौजूद है तो त्यौहार हमेशा मनता है और एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट के
1: नाचते
0: साथ
1: गाते।
0: सभी चीज़ होते के साथ मनता है। अगर अगर घर पे नहीं है, अगर यूनिट में है, तो यूनिट में बहुत धूमधाम से त्यौहार मनता है, जिससे किसी को ये मलाल ना रहे कि मैं इस बार घर नहीं गया हूँ, और बहुत धूमधाम से मनता है।
1: जी, और खेलने का शौक कितना है आपको?
0: हम लोग उतने बड़े खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन खेलते हैं, सभी गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, सभी खेल में रुचि है और सब समय मिलता है, खेलते रहते हैं हम
1: और
0: लोग।
1: खेल कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति और आपके विकास, आपके शारीरिक विकास में एक अहम भूमिका निभाता है, जो हमेशा आपको सजीव रखता है।
0: फौज की नौकरी करने के लिए सबसे जरूरी है फिटनेस, और अगर आप खेल अपने नियमित हिस्सा रखते हैं तो आपकी फिटनेस भी बनी रहती है।
1: जी, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आपको इतने सारे दोस्तों ने सलाम भेजा है, जय हिंद सर लिखकर भेजा है, यहाँ पर दोस्त ने अपना नाम नहीं लिखा, माफ़ी चाहूँगी दोस्त, नाम लिखते तो शायद आसान हो जाता मेरे लिए पढ़ना। संदेश टू सोल्जर्स का नियमित श्रोता हूँ, तिरुचिरापल्ली विजय कुमार ने आपको नमस्कार भेजा है, और सेना नायक इंस्पेक्टर शिव शंकर जी को जय हिंद वंदे मातरम इन्होंने कहा है, इनकी राष्ट्र सेवा के लिए हमारा हृदयपूर्ण नमस्कार आप स्वीकार करें आपका।
0: सभी को जय हिंद मेरा।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों संदेश भेजने के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक संदेश आया है, नाम इन्होंने नहीं लिखा, पर ये कहा है कि अगर हम फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे, हम जब डिग्निटी की बात होती है, साहस की बात होती है, समर्पण की बात होती है, ये आम जनमानस को भी हम कैसे प्रेरित करें कि वो भी अपने जीवन में आत्मसात करें, कैसे उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को अपनी जिंदगियों में शामिल करें।
0: डिसिप्लिन अपने अंदर से आता है,
1: जी
0: डिसिप्लिन के लिए कहीं से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को अनुशासित रखिए, अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगी
1: और
0: आगे।
1: वैसे भी हमारे फौजी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जब भी हम इनकी गाथा सुनते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से जब आप घर घर तक पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन, डिसिप्लिन सब हमें मिल जाता है। संदेश हमारे पास आया है यहाँ पे यश शिंदे का, और इनको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, जय भारत वंदे मातरम इन्होंने लिख भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। जय हिंद लिख भेजा है मोनू सेठ ने, और इन्होंने लिखा है मत देख लेना।

0: कहा उठाकर मेरे वतन वतन की तरफ, वरना वक्त भी तुम्हारा होगा, जगह भी तुम्हारी होगी, बस तिरंगा हमारा होगा। बहुत खूब। अगला संदेश हम तक पहुंचा है यहाँ पर शबनम का, बीके कॉलोनी से, और बीके दत्त कॉलोनी से, और ये कह रही हैं कि जब आपको प्रथम ड्यूटी मिली और ये इन्हीं का गांव है जहाँ आपको मिली, और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, और बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप गैंगटॉक से सीधा यहाँ आकाशवाणी स्टूडियोज़ पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर अदा कर रहे हैं सभी दोस्त। मंसूर का यहाँ पर संदेश आया, जय हिंद। यहाँ पर पीयूष ने संदेश भेजा है, चेतन पटेरिया ने ग्वालियर से संदेश भेजा है। यहाँ पर समय कम है, संदेश पूरे नहीं पढ़ पाऊंगे, लेकिन हम शिवशंकर कुमार जी को आपके संदेशों से जरूर अवगत कराएंगे। संदेश भेजने वालों में हमारे पास बिजनौर से संदेश है, और ये है चरण कुमार का, और बहुत बहुत शुक्रिया दो संदेश भेजने का। शिव शंकर कुमार जी संदेश भेजा है इन्होंने, शिव पांडे लखनऊ से संदेश भेज रहे हैं। मोनिश इद्रिस ने बिलासपुर से संदेश भेजा है। संदेश भेजने वालों में बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, हम शुक्रिया देना चाहते हैं आपका। नितिश कुमार ने हमें संदेश भेजा है, देखिए आपसे प्रेम करने वालों की फहरिस्त बहुत बड़ी है, और हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात को जानकर कि हमारे फौजियों से कितना प्रेम किया जाता है। अनिल कुमार का चंपावत उत्तराखंड से संदेश आया है। संदेश भेजने वालों में पंडित स्वार्षद संदेश भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। संदेश भेजने वालों में से एक क्लास 12th के स्टूडेंट भी हैं जो एनडीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अजय अहिरवार ने संदेश हमें भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आप सभी का संदेश भेजने के लिए। और इंस्पेक्टर शिवशंकर कुमार जी जो SSP में कार्यरत हैं, आजकल गैंगटॉक में हैं, आपने जिस तरह से व्याख्या की और आप SSB का नाम ऊंचा कर रहे हैं, आप देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। संदेश भेजने वालों में और भी कई दोस्त हैं। KKS रायपुर छत्तीसगढ़ से संदेश आया है यहाँ पर, दोस्त आपका नाम KKS रायपुर CG इन्होंने लिखा है। क्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय, आप आम जनमानस में सैनिक जैसी कर्तव्य निष्ठा और श्रेष्ठ नागरिक बनने की प्रेरणा कैसे दी जा सकती है, इस पर हमने भी बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर किसी का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाई हूँ तो आप सभी से माफी चाहूंगी। अवधेश कुमार का औरंगाबाद बिहार से संदेश है। सुमन कर्माकर का सोनितपुर आसाम से संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश हम तक पहुंचे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। और धन्यवाद देना चाहते हैं इंस्पेक्टर शिव कुमार जी का जो कार्यरत हैं गैंगटॉक में, और सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में आने के लिए, और हमें SSB से जुड़ी हुई इतनी सारी बातों से अवगत कराने के लिए।
1: धन्यवाद सभी को, सभी को जय हिंद। मैं देश के युवाओं से भी इतना कहना चाहूँगा, अपने सपनों पर भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सभी जी, जो भी देश के युवा है, देश के सेवा और सुरक्षा बल में आना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपने फिटनेस को और अनुशासन को बनाए रखिए, आप जरूर चयनित होइएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सबके लिए कि अपनी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान की बात है। सभी को जय हिंद।
0: जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी SSB से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होने के लिए, और इतनी सारी बातें साझा करने के लिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। वक्त हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

श्रोताओं, प्रोग्राम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म परक्सी। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी और आवाज लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे थे परख फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी।

श्रोतों, कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म धरती से। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार शंकर जयकिशन।

श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं।

आप सुन रही थी चितचोर फिल्म का ये गाना। येसुदास और हेमलता की मिली जुली आवाजों में गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन साहब। और श्रोताओं, इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन EIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। इसके अलावा अपने रेडियो सेट पर मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवावाणी, बस थोड़ी प्रतीक्षा।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: 93 FM पर आपने ट्यून कर लिया है आपका यूथफुल एंड एनर्जेटिक रेडियो प्रोग्राम युववाणी विद मी योर होस्ट आरजे साक्षी
1: एंड हाय इट्स मी पूजा यादव। दोस्तों, हमारा फ्यूचर ऑफ यूथ काफ़ी ब्राइट और एक्साइटिंग है क्योंकि आज का युवा सिर्फ जॉब ढूंढ ही नहीं रहा बल्कि क्रिएट भी कर रहा है। हम टेक्नोलॉजीज, एआई और स्टार्टअप के दौर में जी रहे हैं जहां नए आइडियाज दुनिया को बदल रहे हैं।
0: और अगर यंग जनरेशन अपने पैशन और स्किल्स पर फोकस करे तो आने वाला कल सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का होगा। एंड द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट, और इसे सच कर रहा है हमारा आज का यूथ। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू स्टीव जॉब्स, इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर, और आज का इंडिया फॉलोअर नहीं लीडर बन रहा है।
1: ये सिर्फ बात ही नहीं है बल्कि डेटा बोलता है बॉस। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इट मीन्स DPIIT की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जिसमें 2.25 लाख से ज़्यादा रिकग्नाइज्ड स्टार्टअप्स दर्ज हो चुके हैं। ज़रा सोचिए, कहाँ 10 साल पहले लोग सिर्फ ट्रेडिशनल जॉब्स यानी 9-to-5 जॉब के पीछे भागते थे, लेकिन आज का यूथ अपना खुद का वेंचर खड़ा करने का सपना देख रहा है।
0: स्टार्टअप इंडिया और इंक 42 मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि इन स्टार्टअप्स ने कलेक्टिवली 21 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए हैं। तो अगर आपके भी दिमाग में कोई ऐसा आइडिया घूम रहा है जो दुनिया बदल सकता है तो सुनते रहिए हमें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इसी जनरेशन की रियल पल्स यानी स्टार्टअप कल्चर और यूथ के बारे में।

0: सो फ्रेंड्स, हम स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने शुरुआत में DPIIT की रिपोर्ट के अनुसार जो डेटा हमें मिला है हमने वो भी शामिल किया। उसमें बताया गया है कि किस तरह से इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। तो हम अपने इस कन्वर्सेशन को और विटल और एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। तो साक्षी, प्लीज कंटिन्यू।
1: दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई भी नई दुकान या ट्रेडिशनल बिजनेस खोल लिया तो वो स्टार्टअप बन गया। लेट्स क्लियर दिस डाउट विथ सम फैक्ट्स। एक होता है कन्वेंशनल बिजनेस, जिसमें आप पुराने तरीके से काम करते हैं, और स्टार्टअप वो होता है जो किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का एक स्केलेबल और इनोवेटिव टेक ड्रिवन सॉल्यूशन लेकर आता है।
0: जैसे कि पहले या ऑटो के लिए, कैब के लिए हम रोड पर खड़े रहते थे काफ़ी देर तक, लेकिन अब एक क्लिक पर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रू स्टार्टअप मॉडल हमें देखने को मिल रहा है।
1: थ्रू दैट, आज का यूथ कम्फर्ट जोन से निकल रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 50% DPIIT रिकग्नाइज स्टार्टअप्स अब टीयर 2 और टीयर 3 स्मॉलर सिटीज से आ रहे हैं। मतलब हमारे देश का यूथ आगे आकर रिस्क ले रहा है, और उनके पेरेंट्स भी अब कह रहे हैं कि बेटा, अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो आप इस स्टार्टअप ट्राई करें। यानी फैमिली भी अब पॉजिटिवली सपोर्ट कर रही है।
0: वैसे साक्षी, ये सुनने में जितना कूल लगता है ना, रियलिटी थोड़ी अलग भी है, क्योंकि इसमें फेलियर्स भी होते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी कहती है कि लगभग 75% to 90% स्टार्टअप शुरुआती सालों में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज देखते हैं कि कैसे कोई यूनिकॉर्न कंपनी का मालिक बन गया, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल, लैक ऑफ फंडिंग या पुअर मार्केट रिसर्च कोई नहीं देखता। मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते अब इन्वेस्टर्स भी बहुत सोच समझकर पैसे इन्वेस्ट करते हैं।
0: सो ट्रू। तो सिर्फ इमोशनल होकर या किसी को देखकर अपनी जॉब ना छोड़िए। बी प्रैक्टिकल, नॉट जस्ट इमोशनल। पहले मार्केट को समझिए, वैलिडेशन कीजिए और देखिए कि क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस रियल में कोई वैल्यू एडिशन है या नहीं।
1: लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि चाहे स्टार्टअप चल निकले या बीच में बंद हो जाए, वो यूथ को बदल कर रख देता है, क्योंकि रेजिलियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट

0: और लीडरशिप स्किल्स जो एक फाउंडर को मिलती है वो किसी रेगुलर टेक्स्ट बुक में सिखाई नहीं जा सकती।
1: सो ट्रू। आज इंडिया के स्मॉलर टाउन से भी निकलकर ऐसे कमाल के ग्रास रूट इनोवेटर्स निकल रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन में, इन सभी सेक्टर्स में कमाल दिखा रहे हैं।
0: तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जो किसी की लाइफ को ईजी बना सकता है तो डरिए मत। टेक दैट फर्स्ट स्टेप, प्लान कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि एक नया भारत है और ये दौर आपका है।
1: आज की बातचीत से मुझे तो पूरा भरोसा है कि हमारे लिसनर्स के दिमाग की बत्ती जरूर जल जाएगी।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए समय हो चला है एक माइंड फ्रेशनर ब्रेक लेने का, लेकिन पहले बस यही कहूंगी, किस्मत के भरोसे मत बैठिए, खुद की मेहनत से अपने करियर का स्टार्टअप शुरू कीजिए।
1: सो कीप ड्रीमिंग, कीप हसलिंग, कीप हार्ड वर्किंग। सुनते रहिए अपना मनपसंद रेडियो स्टेशन 100.3 रेड FM।

0: जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में नए नए सेगमेंट्स शामिल करते हैं, तो आज हमने कविता पाठ शामिल की है सितांशु त्रिवेदी की आवाज में। तो आइए सुनते हैं ये कविता।
1: मध्यवर्गीय परिवार में अक्सर एक पहलू दोहराया जाता है। मध्यवर्गीय परिवार में अक्सर एक पहलू दोहराया जाता है। अभिभावक के मन से बच्चा कोचिंग पहुंचाया जाता है। अध्यापक कहता है कुछ समझ में आता है, बच्चा झूठ ही हाँ में हाँ मिलाता है। अध्यापक जानता है इसमें सच कितना है, अध्यापक जानता है इसमें सच कितना है, बस बनाते चलो बैच पैसा जो मिलना है। 1000 बच्चों में कभी 2-4 सफल हो जाते हैं, अध्यापक जी अपने संग उनकी फ़ोटो खिंचवाते हैं। फ़ोटो देखकर फिर 1000 एडमिशन होते हैं, फ़ोटो देखकर फिर 1000 एडमिशन होते हैं। बात कोचिंग की अक्सर बच्चे रोते हैं, माँ बाप भी बच्चों पे अक्सर चिल्लाते हैं, माँ बाप भी बच्चों पे अक्सर चिल्लाते हैं। धीरे धीरे बच्चे भी जाहिल हो जाते हैं, वक्त के साथ हुनर धूमिल होने लगता है, वक्त के साथ हुनर धूमिल होने लगता है। सूर्य भी अपनी छटा खोने लगता है, फिर काली रात तांडव दिखाने आती है, फिर काली रात तांडव दिखाने आती है, चमकते हुए सूरज को पूरा निगल जाती है। अंधेरा भला कभी किसी को अच्छा लगता है, अंधेरा भला कभी किसी को अच्छा लगता है, मोमबत्ती के सहारे जग सूरज की खोज में निकलता है। सत्य कहता हूँ तो मेरी बात सबको बुरी लगती है, सत्य कहता हूँ तो मेरी बात सबको बुरी लगती है, प्रीत अब प्रीत नहीं मुझे स्वार्थ पूर्ति लगती है। सत्य कहता हूँ तो मेरी बात सबको बुरी लगती है, प्रीत अब प्रीत नहीं स्वार्थ पूर्ति लगती है, इसीलिए अब प्रेम जिस्मों पे आकर टिकता है, इसीलिए अब प्रेम जिस्मों पे आकर टिकता है, सुंदर से सुंदर चेहरा बाजारों में बिकता है। कोई नहीं है अपना यहाँ मैं सच कहता हूँ, इसीलिए तो साहब सबसे बच बच कर रहता हूँ। सारे जग को सिर्फ अपनी ही पड़ी है, सारे जग को सिर्फ अपनी ही पड़ी है, दया करो मेरी अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हर बच्चा आज के समय में सिर्फ प्रेम खोजा करता है, हर बच्चा आज के समय में सिर्फ प्रेम खोजा करता है, इसी प्रेम के चक्कर में खुद से धोखा करता है। कुछ को रोशनी तो कुछ को अंधेरा मिलता है, कुछ को रोशनी तो कुछ को अंधेरा मिलता है, कोई चमकता है हरदम तो कोई पग पग गिरता है। जितने भी चेहरे आपको दिखते ठहरे हैं, जितने भी चेहरे आपको दिखते ठहरे हैं, ये सब गूंगे ये सब बहरे हैं। झूठ सच सब एक तराजू में तौले जाते हैं, झूठ सच सब एक तराजू में तौले जाते हैं, चुनाव में 1500 के नोट बांटे जाते हैं, झूठ सच सब एक तराजू में तौले जाते हैं, चुनाव में 1500 के नोट बांटे जाते हैं। गुनहगार गुनाह मिटा देंगे मंच से चिल्लाते हैं, गुनहगार गुनाह मिटा देंगे मंच से चिल्लाते हैं, हम भी उनके संग उनके नारे लगाते हैं। आरोप प्रत्यारोप में उम्र कट जाती है, आरोप प्रत्यारोप में उम्र कट जाती है, मुर्दा घाटों में अपनी पंक्ति लग जाती है। पुनर्जन्म में विश्वास हमारा, फैसला उसमें होता है, पुनर्जन्म में विश्वास हमारा है, फैसला उसमें होता है। बड़ी विडंबना ये है कि पिछला याद कहाँ से होता है, बस इसी तरह भावनाओं में हमको लूटा जाता है, बस इसी तरह भावनाओं में हमको लूटा जाता है, जैसे ओखली में मसालों को कूटा जाता है। इस तरह से विकास हमारा हो रहा है, इस तरह से विकास हमारा हो रहा है, घर घर में एक नौजवान रो रहा है। मंजिल तय नहीं मसलक तय नहीं बस मजहबी हो गए, मंजिल तय नहीं मसलक तय नहीं बस मजहबी हो गए, इतना उजाला है कि हम उजालों में खो गए। दुख होता है जो हुआ मेरे साथ दूसरों पर दोहराया जाता है, दुख होता है जो हुआ मेरे साथ दूसरों पर दोहराया जाता है, अभिभावक के मन से बच्चा कोचिंग पहुंचाया जाता है।

आता है फिर वही कहानी, अध्यापक कहता है कुछ समझ में आता है, हर बच्चा झूठ ही हाँ में हाँ मिलाता है। न जी सकूं न मर सकूं।

0: सकूं, बता जरा मैं क्या करूं।
1: वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने सुनी कविता, कविता थी सितांशु द्विवेदी की। तो आइए बढ़ते हैं हम कार्यक्रम में आगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: तो दोस्तों, अभी हमने सुनी कविता, और हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले सोच रहे हैं कि क्यों ना आपके लिए एक छोटा सा और प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना एक बहुत प्यारा सा गीत। आइए हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे कार्यक्रम का एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट है प्रेरणा पुंज, जिसमें हम ऐसे महान व्यक्तित्वों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए, मानवता के लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ योगदान किया। और जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें ताकि हम भी अपने देश के लिए और समाज के लिए कुछ योगदान दे सकें।
1: तो आज के हमारे प्रेरणा पुंज हैं राजीव गांधी जी। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे क्योंकि हम मना रहे हैं सद्भावना दिवस। भारत के इतिहास में ऐसे कई व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने देश को न केवल एक नई दिशा दी बल्कि उसे 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने योग्य भी बनाया। राजीव गांधी एक ऐसे ही राष्ट्रनायक थे। मात्र 40 वर्ष की आयु में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी जी का जीवन दूरदर्शिता, आधुनिक सोच और अटूट राष्ट्र प्रेम की मिसाल है।
0: दोस्तों, उनकी जयंती को पूरे देश में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो शांति, सौहार्द और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। भारत के सामर्थ्य और युवाओं की आकांक्षाओं पर राजीव गांधी ने कहा था, भारत एक प्राचीन देश है लेकिन एक युवा राष्ट्र है और हर जगह के युवाओं की तरह हम भी अधीर हैं। मैं भी अधीर हूँ और मेरा भी एक ऐसे भारत का सपना है जो शक्तिशाली, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और मानव सेवा के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष राष्ट्रों में से एक है।
1: राजीव गांधी जी का कार्यकाल भारत को पारंपरिक दौर से निकालकर आधुनिक युग में ले जाने का एक संक्रांति काल था। उन्होंने देश के विकास के लिए कई दूरगामी नीतियां लागू की, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति। यही वजह है कि राजीव गांधी जी को आईटी क्रांति का जनक भी कहा जाता है। उनके प्रयासों से देश में सी डॉट की स्थापना हुई, डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज का जाल भी बिछा, यानी गांव-गांव तक पीसीओ की पहुंच
0: उन्हीं की देन है। दोस्तों, राजीव गांधी जी के अगर अन्य योगदानों की बात करें तो उन्होंने युवाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। 61वां संविधान संशोधन यानी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि युवाओं की ऊर्जा पर अटूट विश्वास रखते हुए उन्होंने मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, जिससे करोड़ों युवाओं को देश के लोकतांत्रिक निर्णयों में सीधी भागीदारी मिली।
1: इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने 73rd एंड 74th संविधान संशोधन की नींव भी रखी।
0: उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी लागू की।
1: 21वीं सदी के भारत के निर्माता अगर उन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज भारत जिस आईटी और सॉफ्टवेयर निर्यात के दम पर पूरी दुनिया में अग्रणी है, उसकी राजीव गांधी जी ने ही नींव रखी थी। उन्होंने तकनीक का उपयोग आम आदमी के जीवन को सुलभ बनाने के लिए किया।
0: उनके विचार, दूरगामी सुधार और सद्भावना का संदेश आज भी प्रासंगिक है और आने वाली पीढ़ियों को एक सशक्त, शांतिपूर्ण और आधुनिक राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते रहेंगे। दोस्तों, 1992 में कांग्रेस द्वारा स्थापित राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार इस दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पुरस्कार उन व्यक्तित्वों को दिया जाता है जिन्होंने शांति और सौहार्द के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्रेरणा पुंज।
1: और साक्षी, जैसा कि हमारा शो यूथ के लिए होता है तो आज राजीव गांधी जी पर बात करना ये बेहद खास रहा, हमारे लिए भी और हमारे जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी। तो साक्षी, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे लेकिन क्यों ना एक म्यूजिकल ब्रेक हो जाए।
0: बिल्कुल।
2: इश्क वो बला है

0: तो दोस्तों, अभी आपने सुना ये गीत, और हमारे पास आपके लिए एक और सेगमेंट रहता है जो कि है प्रश्न मंच, जैसा कि आप जानते हैं। और हमारे आज के प्रश्न मंच सेगमेंट का जो क्वेश्चन है वो है, भारत में स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई? आप हमें अपना उत्तर भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर
1: yuvvanialdi@gmail.com। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आप हमें हमारे नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8004926250।
0: तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम का को समाप्त करने का, लेकिन उससे पहले हम ये सोच रहे हैं कि आपके लिए एक और प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक हो जाए।

0: तो श्रोताओं, आप ये टाइम हो चुका है कि हम आपसे विदा लें, तो हम यही कहना चाहेंगे आखिर में कि हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपने कार्यक्रम में कुछ बेहतर लाएं, अच्छा लाएं, नए नए विषयों पर बात करें। जैसे कि आज हमने स्टार्टअप कल्चर एंड यूथ पे बात की और हमने राजीव गांधी जी पर बात की, और हमारी तो यही कोशिश रहती है कि अच्छे अच्छे गाने भी हम शामिल करें अपने कार्यक्रम में। तो आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, और इसी के साथ मुझे यानी पूजा यादव को
1: और मुझे यानी साक्षी को
0: दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: हमारे युवा श्रोता भी अपना युवाणी कार्यक्रम सुन रही थी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचारों का, अब से थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति का गठन किया है। ये समिति दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच करेगी। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय

0: जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें नहीं हटाया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा प्रदान करता है। 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को लोगों के लिए विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को आज देश का 23वां राष्ट्रपति चुन लिया गया। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की इरिन एवानागा और की नाकाशिकी को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हराया। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को चीन की गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से 16-21, 5-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम युद्ध सौ 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। नौ बजकर 30 मिनट पर गजलों का प्रोग्राम सुनिएगा कहकशा। श्रोताओं, आज का यह कार्यक्रम केंद्रित है सुप्रसिद्ध गायिका शोभा मुद्गल पर। 8 बजे और 10 बजे हम आपके

लेकर आएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में उस्ताद निशांत खां का सितार वादन सुनवाया जाएगा। इसे एक बार फिर सुन लीजिए, रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में उस्ताद निशांत खां का सितार वादन हम आपको सुनवाएंगे। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम में आज हमारे ग्रामीण भाई रामदेव और साथी के गाय लोकगीत के अलावा किसान चर्चा सुनेंगे। प्रतिभागी हैं रामनाथ सिंह और अनुराग शुक्ला। आप दोनों से बात की है विजय शंकर सिंह ने। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में निशा यादव की कहानी प्रसारित होगी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर हम लेकर आएंगे अरुण गुलवाड़ी के स्वर में गीत और भजन। श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की, और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण इस तरह से हैं।

ईशा यादव की कहानी प्रसारित होगी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर हम लेकर आएंगे अरुण गुलवाड़ी के स्वर में गीत और भजन। श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की, और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण इस तरह से हैं। सुबह 6:05 पर शामिल हुई हमारे नियमित प्रसारित होने वाली भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में। साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा आप सुनेंगे 6:20 पर। इसमें कल हम आपको सुनवाएंगे गांधी जी के स्वदेशी पर विचार। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में हमारे किसान भाई डॉक्टर विश्वनाथ सिंह प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत सुनेंगे। बातचीत का विषय होगा रजनीगंधा की वैज्ञानिक खेती। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम रोज की तरह 6:45 पर होगा। कल के इस कार्यक्रम में डॉक्टर परितोष मिश्रा की वार्ता होगी। विषय होगा बच्चों में मोबाइल एडिक्शन। श्रीरामचरितमानस से संगीत में पाठ रोज की तरह 7:00 और 7:10 पर फिल्मों से ली गई चुनिंदा भक्ति रचनाएं आप सुन सकेंगे। शास्त्रीय संगीत के हमारे प्रसारण में 7:30 पर कमल कुमार का बांसुरी वादन, रात्रि 10:30 पर पंडित उमा शंकर मिश्रा का सितार वादन, इसके अलावा दिन में 12:15 पर राम शंकर का ख्याल गायन सुनवाया जाएगा। हमारा इंटरैक्टिव कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज 8:45 पर। सुगम संगीत के प्रोग्राम में 9:50 पर किरण वाजपेयी और 7:45 पर कीर्ति चौधरी के स्वर में भजन आप सुन सकेंगे। सुबह 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रयागराज के प्रधान महाप्रबंधक आनंद भूषण शरण सिंह, नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत। कल आप सुनेंगे इस बातचीत का तीसरा भाग। सुबह 10:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे विष्णु राजा। दिन में 2:30 पर एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनवाया जाएगा उमंग। 1:15 पर लक्ष्मी कार्यक्रम और 5:00 नन्नी दुनिया कार्यक्रम प्रसारित होगा। युवाणी कार्यक्रम में कल 5:15 पर खेल जगत से जुड़ी जानकारियां युवा साथियों से साझा की जाएंगी। पंचायत घर कार्यक्रम 6:30 पर, इसमें छेदीलाल और साथी के गाय लोकगीत के अलावा नवनीत जैन की वार्ता होगी पर्यावरण संरक्षण हमारी जरूरत। संस्कृत कार्यक्रम में 7:31 पर डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी की वार्ता होगी, जिसका विषय होगा संस्कृत साहित्यस्य वैश्विक प्रभाव। 8:30 पर अक्षयवट कार्यक्रम में सुरेंद्र मोहन सिंह काफी पाठ सुनिएगा। गजलों का प्रोग्राम कहकशा हम लेकर हाजिर होंगी कल रात 9:30 पर, और 10:00 कलीम उर्फी का लिखा नाटक सुनिएगा दाढ़ी वाला हाथी। श्रोताओं, ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हमारे पास खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं हैं। गिरिजेश कुमार पुत्र दिलाशाराम, पता कहारन मुहाल लखना बकेवर जनपद इटावा से हमें सूचित करती हैं कि इनका बेटा सोम, जिसकी उम्र 11 वर्ष है, कद 4 फीट, रंग गेहुआ है, शारीरिक बनावट सामान्य है, ये दिनांक 30 जून 2021 से लापता हो गए हैं। ये नीले रंग की टी शर्ट, काला सफेद लोवर और पैर में चप्पल पहने हुए हैं। इनके विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें।
पता नोट करें।

गिरिजेश कुमार पुत्र दिलाशा राम, पता कहारन मुहाल लखना बकेवर जनपद इटावा, मोबाइल नंबर है 8532948662। मोबाइल नंबर हम आपको एक बार फिर बता दें 8532948662। दूसरा नंबर है 9627386665 यानी 9627386651। एक अन्य सूचना, कैलाश पटेल पुत्र राम दुलार पटेल कुंडा प्रतापगढ़ से हमें सूचित करती हैं कि इनकी बेटी रुचि पटेल, जिनकी उम्र 16 वर्ष है, कद 5 फिट 5 इंच, एक हरा बदन, ये दिनांक 20 मई 2026 से कुंडा प्रतापगढ़ से लापता हो गई हैं। रुचि पटेल के विषय में कोई भी जानकारी अगर आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, कैलाश पटेल, नया पुरवा, सुजौली, थाना कुंडा, प्रतापगढ़। और एक सूचना और हमारे पास है, मोहम्मद आजाद मुस्तफाबाद थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ से हमें सूचित करते हैं कि इनके संबंधी हीना बानो, ये दिनांक 12 मार्च 2026 से उदयपुर प्रतापगढ़ से लापता हो गई हैं। इनकी उम्र 18 वर्ष है, कद 5 फीट, रंग गोरा है, ये सलवार सूट पहने हुए हैं और इनके प्रतापगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना है। जिस किसी भी सज्जन को हीना बानो के विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध होती है वे कृपया इस पते पर संपर्क करें। मोहम्मद आजाद निवासी बहादुरपुर मुस्तफाबाद थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। आप हमारी प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। और अब वक्त हो चला है एक देशभक्ति गान का।

0: શ્રોતાઓ અભી આપ સુન રહે થે સંવિત સ્વરૂમી યે દેશભક્તિપૂર્ણ રચના રચનાથી કવિવર સુમિત્રાનંદન પંત કી.
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग. जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की.

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे हैं संस्कृत में समाचार, बस थोड़ी प्रतीक्षा।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत जापान देशाभ्यां रक्षा सहभागितां दृढीकर्तुं सहमतिः प्रकटिता। उभावपि देशौ सामुद्रिक सुरक्षा सहयोगाय च व्यवस्था सम्मति पत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। गृहमंत्री अमित शाहः अन्ताराज्यिक विवादान सुरक्षा विकास विषयान् च चर्चयितुं तमिलनाडु राज्यस्य कोवलम नगरे 31वें दक्षिण क्षेत्रीय परिषद उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। झारखंड उच्च न्यायालयः जेपीएससी नियुक्तिनां खाद्य सुरक्षा अधिकारी चयनस्य च निरस्तीकरणादेशे स्थगनादेशं प्रायच्छत्। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीरे प्रतिरोध प्रदर्शनानि तीव्रीभूतानि। पाक शासनतंत्रं च जनाक्रोशेन त्रस्तं वर्तते। अपि च भारतस्य त्रिसा जौली अथ गायत्री गोपी चंदः च बीडब्ल्यूएफ विश्वस्पर्धायाः महिला युगल द्वन्द्वे प्रागुपांत्य चरणे प्रविष्टवत्यौ। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नवदिल्ल्यामद्य भारत जापान रक्षामंत्री स्तरीयोपवेशनं सम्पन्नम्। अस्योपवेशनस्य सहाध्यक्षतां भारतस्य रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अथ च तस्य जापानी समकक्षीय

0: शिन्जिरो कोइजुमी अकुर्वताम्। अस्मिन्पवेशने सामुद्रिकसुरक्षायाः दृढीकरणं, मेक् इन् इण्डिया इत्यस्यान्तर्गतं रक्षा प्रौद्योगिक्याः सहैव रणनीतिकविश्वासस्य च विस्तारः इति प्रमुखविषयेषु गभीरा चर्चा सञ्जाता। उभौ मन्त्रिणौ सामुद्रिकसुरक्षा सहयोगाय एकस्मिन् व्यवस्थाज्ञापनसन्धौ हस्ताक्षरम् अकुरुताम्। स्वकीये भाषणे रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः प्रावोचत् यत् एशिया महाद्वीपस्य द्वौ लोकतान्त्रिकदेशौ भारत जापानौ क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां समृद्धिं च स्थापयितुं महत्तरम् उत्तरदायित्वं निर्वहतः। श्रीसिंहः प्रतिपादितवान् यत् सामुद्रिक मार्गसुरक्षायां समाह्वानानि वर्धन्ते, अतः नौपरिवहनस्वातन्त्र्यं, वायुयानसञ्चालनस्वातन्त्र्यम् अथ च अबाधितवैधवाणिज्यं सुनिश्चेतुं क्रियमाणाः प्रयासाः केवलम् आर्थिक आवश्यकता एव न, अपि तु एकम् अनिवार्यं रणनीतिकदायित्वमपि अस्ति। सः प्रतिपादितवान् यत् हिन्दमहासागरस्य प्रशान्तमहासागरस्य च सुरक्षा परस्परं दृढतया संलग्ना वर्तते। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् भारतस्य महासागरीयदृष्टौ सहैव जापानस्य मुक्त एवं प्रकट हिन्द प्रशान्त उपक्रमे च निकटसमन्वयः सम्प्रति पूर्वस्मादपि अधिकम् आवश्यकं जातम्।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: जापानी रक्षा मंत्री कोइजुमी महोदयः कुमामोटो प्रान्ते आगतेन भूकम्पेन प्रभावितान् जनानालक्ष्य भारतेन प्रकटीकृतां संवेदनां प्रशंसितवान्। सः जापानी सामुद्रिक आत्मरक्षाबलस्य पोते दुरापन्नायाम् आपत्कालीन चिकित्सा स्थितौ भारतस्य नौसेनायाः सहायतायै कार्तज्ञं प्राकटयत्। अस्य वर्षस्य जुलाई मासे द्वयोः देशयोः शीर्षनेतृभ्यां निस्सारितस्य संयुक्तवक्तव्यस्य स्मरणं कुर्वन्तौ द्वावपि मन्त्रिणौ मुक्त तथा प्रकट हिन्द प्रशान्तक्षेत्रस्य निर्माणाय रक्षासहयोगं सुदृढीकर्तुं स्वसंकल्पं पुनरुच्चारितवन्तौ। चेन्नई नगरस्य समीपे महाबलीपुरम नगरे केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अध्यक्षतायां 31वं दक्षिणक्षेत्रीय परिषदुपवेशनं सम्पन्नम्। अस्मिन् उपवेशने मुख्यमन्त्रिणः उच्चाधिकारिणश्च क्षेत्रस्य प्रगतिविकाससम्बद्धेषु विषयेषु विस्तृतरूपेण विचारविमर्शम् अकुर्वन्। उपवेशने तमिलनाडुराज्यस्य मुख्यमन्त्री जोसेफ् विजयः, कर्णाटकस्य मुख्यमन्त्री डीके शिवकुमारः, केरलस्य मुख्यमन्त्री सतीशनः, तेलङ्गानायाः उपमुख्यमन्त्री मल्लुभट्टी विक्रमार्कः, सहैव आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबू नायडु इत्येते भागम् अगृह्णन्। एतैः सह पुदुच्चेरी राज्यस्य उपराज्यपालः, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहस्य उपराज्यपालः, लक्षद्वीपस्य प्रशासकः अथ च विविध मन्त्रालयानां वरिष्ठाधिकारिणः अपि उपस्थिताः आसन्। उपवेशने उपस्थिताः सदस्याः स्वास्थ्य निधि वितरणम्, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षणम् अथ च क्षेत्रीय सुरक्षा सम्बद्धेषु विषयेषु सहकारी संघीयतायाः महत्त्वे च बलं प्रदत्तवन्तः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः वन्दे मातरमिति राष्ट्रिय गीतस्य सम्पूर्ण गानस्य स्थाने केवलं पद्यद्वयस्य गानसन्दर्भे कांग्रेस कार्यसमित्याः निर्णयस्य तीव्रां निन्दां कृतवान्। वार्ताहरैः सह संलपन् श्रीशाहः अकथयत् यत् एषः निर्णयः संसदा निर्मितस्य विधेः प्रत्यक्षम् उल्लङ्घनम् अथ च राष्ट्रविरोधिकृत्यं वर्तते। गृहमन्त्री प्रतिपादितवान् यत् 37-29 वर्षे कांग्रेसपक्षेण तुष्टीकरणार्थं वन्दे मातरं गीतं भागद्वये विभक्तम्। श्रीशाहः आरोपितवान् यत् राहुलगान्धिनः नेतृत्वे कांग्रेसदलं पुनः एकवारं तुष्टीकरणस्य मार्गम् अनुसरति।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती

0: व्यक्ति के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
1: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। झारखंड उच्च न्यायालय एकादशतः त्रयोदश जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षायाः अथ च खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्तेः निरस्तीकरण संबंधे राज्य सर्वकारस्य अधिसूचनायाम् अग्रिम आदेश पर्यन्तं स्थगनादेशं प्रायच्छत्। न्यायमूर्तिना दीपक रोशनेन याचिकानां श्रवणावसरे स्पष्टीकृतं यत् विधि प्रक्रियां नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तांच उल्लंघ्य पूर्वं नियुक्ताः अधिकारिणः पदात् निष्कासयितुं न शक्यन्ते। न्यायालयेन सर्वकारः सहैव झारखण्ड लोकसेवा आयोगः आगामि वादश्रवणाय सितंबर मासस्य 15 दिनांकं यावत् स्वप्रतिवचनं दातुम् आदिष्टौ। जम्मूकश्मीरस्य कठुआ जनपदस्य सीमाक्षेत्रेषु संदिग्ध व्यक्तीनां गमनागमनस्य सूचनां प्राप्य सुरक्षाबलैः अद्य सघनम् अन्वेषणाभियानं प्रारब्धम्। आकाशवाण्याः जम्मू संवाददातृवृत्तानुसारम् एतत् अभियानम् उधमपुर कठुआ सीमावर्तिषु बिलावर क्षेत्रस्य वनभागेषु च प्रचालितम्। स्थानीयजनानामनुसारं बुधवासरे चिररात्रौ बिलावर क्षेत्रस्य एकस्मिन् ग्रामे अज्ञातव्यक्तिभिः कस्यचित् गृहस्य द्वारं शब्दापितम्। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीरे निवसन्तः जनाः सम्पूर्णे क्षेत्रे विरोध प्रदर्शनानि तीव्रीकृतवन्तः। अनेन पाकिस्तानस्य शासनव्यवस्थायाः वास्तविकता पुनः प्रकाशिता। पीओजेके इत्यस्मिन् क्षेत्रे विरोध प्रदर्शनानां विस्तारः निरन्तरं वर्धते, येन इस्लामाबादस्य तत्कथनं निरस्तं भवति यत् अशान्तिः केवलं रावलकोट क्षेत्रे एव सीमिता अस्ति। जीएएसी इत्यनया कार्यसमित्या इस्लामाबादस्य तत् कथनं निराकृत्य कथितं यत् विरोध प्रदर्शनानि अधुना सम्पूर्णे अधिकृतक्षेत्रे प्रसृतानि सन्ति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य महिला युगल क्रीडिके त्रिसा जौली अथ गायत्री गोपी चंदः च नवदिल्ल्यां आयोजितायां BWF विश्व प्रतिस्पर्धायाः प्रागुपान्त्य चरणे प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आप हमारी कार्यक्रम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। और अब वक्त हो चला है ग्रामीण भाइयों के लिए उनके कार्यक्रम पंचायत घर का।

चौ राम राम भैया। देखा अपन किसान भैया बहनी हरिन इ टेम अपन धान की फसल मा अपन मन लगाई बा कि चारी ओर देव राजा के वर्षा से चारी ओर पानी वर्षा से खूब लबल लाभ हो गए। तो अपन किसान भैया बहनी हरिन के जैसे कि साग सब्जियन खेती है, बाग बागवानी है, साथे साथ अपन धान की फसलों बा, तो बहुत से किसान भैया बहनी हरिन के अपन धान के फसल में बड़ा भी नुकसान हो सकत है और साथे साथ जल भराव से भी अपन फसल नष्ट हो रहे हैं। तो किसान भैया बहनिन बदे अपन देश के भैया देखा तरह तरह से योजना चलाए बा, तो जौने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बा, ई योजना से अपन किसान

हाँ भैया बहनी हरिन भैया, देखा आपन जो उन्हें नज़दीकी किसी विभाग में भी जाए के, और साथे साथ भैया देखा एके जौन बा आपन जौन पोर्टल ऐप बा यहाँ के माध्यम से अपन पंजीकरण कराए के भी आपन भरपूर लाभ उठा सकते हैं। जैसे इनकी सूखा के जरिए से हो, चाहे बाढ़ आवे, अतिवृष्टि से भी, ओलावृष्टि से, कोनो तरह के कीट पतंगा रोग लग जाए से भी आपन फसल जो नष्ट हुई जात है, तो ई फसल नष्ट के भरपाई बदे किसान नन भैया बहनिन का आपन सरकार की ओर से यह सुरक्षा कवच बा, तो ई सुरक्षा कवच से भरपूर लाभ उठावें। और साथे साथ आज अपन देश भर में देखा, अपन देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जयंती पर सद्भावना दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनावा जा रहा है। और इस सद्भावना दिवस के मुख्य उद्देश्य ये बा कि सब आपस में भाईचारा बनाए रखें, साथे साथ राष्ट्रीय एकता और प्रेम से आपस में शांति बनी रहे, और अपन देश समाज के भैया तरक्की में सब एक दूसरे से मिलके कंधे से कंधे मिल करके अपन देश का, परिवार का, समाज का आगे बढ़ावें। साथे साथ किसान भैया बहनी बदे आज अपने कार्यक्रम में और बात बत कही तो होते रही, मुला एक किसान चर्चा भी सुनवा जाई। रामनाथ सिंह और अनुराग शुक्ला भैया किसान हमें, जौने से अपन विजय शंकर सिंह की बातचीत तो किसान भैया बहनी हरें सुन हैं। मुला हम अपने किसान भैया बहनिन का भैया देखा एक रामदेव और संघातिन के गाई विकास गीत बा, तो पहले किसान भैया बहनी हरें सुन लें, तो फिर आगे बात बत कही होए तो सुने।

0: पंचो भैया देखा रामदेव और संघातिन के गाय विकास गीत तो किसान भैया बहनी ने सुनिन। भैया देखा जौन किसान चर्चा वाली बात रही कि रामनाथ सिंह और अनुराग शुक्ला भैया से विजय शंकर सिंह के अपन किसान चर्चा बा, तो किसान भैया बहनी ने सुना।
1: किसान भैया अपने खेती किसानी के अगर अच्छी जानकारी हमका तोहका हो तो हम कहीं देखा अच्छा उत्पादन मिलत है। हम अपने कार्यक्रम में बीच बीच में जौन प्रगतिशील किसान भैया रहे हैं उनका अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करी थी और उनका अनुभव खेती किसानी के साझा करी थी आपके साथ, जो उन्हें अपने खेती में आपो सुधार करके अच्छा लाभ कमा सका। आज हमारे बीच में दुई किसान भैया हरे आमंत्रित किए गए हैं, श्री रामनाथ सिंह तेवरिया खुर्द कर्मा करछना से भैया आए हैं, साथ ही साथ श्री अनुराग शुक्ला भैया ग्राम सिंधिया भरवारी कौशाम्बी से। हम दोनों लोगों का अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करी थी। सबसे पहले श्री रामनाथ सिंह भैया से जानना चाहा कि इस समय खेती किसानी में का खेती करे भैया।
2: इसमें भैया हम धान की खेती 6 बीघे में किए हैं भैया।
1: अच्छा भैया, मतलब 6 बीघे धान की खेती है। तो भैया इस समय का प्रगति है धान के?
2: इस समय धान रोपाई के बाद खाद दोनों पड़ चुकी है। पहली टैबलेटिंग जो लगान के 15-20 दिन पहले दे है उसमें जिंक और जो है सल्फर मिला करके छिड़का दिए। अच्छा। फसल जो है अब बढ़ी है और दूसरी भी मतलब खाद का भी हमने उसमें डाल दिया है। फसल हरी भरी अच्छी है। खर पतवार उसमें के जो है सब निकाल लिया गया है।
1: मतलब कि धान है समय बढ़वा ठीक ठाक ही और जो उन खर पतवार रहा निकाल ली इनका। देखा किसान भैया होती है कि हम लोगों के धान में तमाम तरह के खर पतवार आवत है, तो कुछ किसान भैया देखा ओका खातिर रासायनिक दवाइन के प्रयोग करा था, कुछ किसान भैया अपने हाथ से निकाला था खुरपी से गुड़िया के निकाल लेता, तो भैया देखा कौन विधि अपना आवत?
2: हम भैया अधिकतर जो है दवा का प्रयोग।
1: अच्छा भैया, लेकिन कहा ही जाता है अधिकतर किसान भैया से कि जितना हो सके हम रासायनिक दवा से बची, ज्यादा से ज्यादा अपने से हो सके तो निकाला जाए, जौने कि जौन प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है लगातार जौन दाना उत्पादन हो रहा है उसे इंसान खा रहा है उसका बुरा असर पड़ रहा है, एक इतर जितना हो सके हम कीटनाशकन से बची। एक अलावा धान के अलावा और का फसल

0: आप उगाए?
1: धन के अलावा भैया जैसे मैंने जो है बागवान
0: बागवानी करें।
1: बागवानी करे हैं, उसी में जो है सब्जी थोड़ी बहुत उगाए हैं, पपीता की खेती है उसमें, अमरूद है और जो है मौसमी,
0: अच्छा, तो ये बागवानी कितने बीघे में करें भैया?
1: 10 बिस्सा में।
0: 10 बीघे बागवानी है। तो बागवानी घर के उपयोग के लिए सिर्फ है कि माने
1: नहीं
0: बाजार में भी
1: भैया,
0: जात है?
1: जैसे पपीता है वो अधिक ज़्यादा है,
0: अच्छा।
1: पपीते खेती ज़्यादा है भैया, तो वो जो है मतलब जैसे अब जो और निकल रहे हैं और फल लग रहा है, तो जो निकल रहा है मतलब फल, उसको जो है तोड़ के जो है पहले घर रख दिए जाते हैं एक दिन,
0: अच्छा,
1: उसके बाद फिर जो है मार्केट भेज दिए जाते बाज़ार,
0: मतलब घर में रख के पकावा जाते,
1: ओकर
0: ओके बाद
1: बाद हाँ
0: बाजार में
1: बाज़ार
0: पहुंचा
1: भेज
0: दिए
1: दिए जाते
0: जाते।
1: हैं।
0: बहुत बढ़िया भैया, मतलब कि बागवानी अपने परंपरागत खेती के साथ ही साथ कर रहे हैं, ये तो अपने प्रकृति खातिर भी बहुत अच्छा है। बाग बगीचा जितना हो, साथ ही साथ पशुपालन में आप का का कर रहे हैं?
1: पशुपालन में भैया हमारे पास 4 गैयाँ और 3 भैंस हैं,
0: अच्छा भैया।
1: हाँ पाले हैं भैया, उनके लिए हरा चारा चरी, इस समय चरी के सीजन चरी है वो दिए हैं भैया, उसको काट के उनको चारा, अब भूसा घर में है उससे मिला करके और चूनी चोकर उनको जो है जो एक नियम है उतने तरह जो लग रही हैं जो नहीं लग रही हैं, अब जिसमें 3 2 5 हैं, 5 हैं 3 भैंसियाँ हैं 2 गैया हैं,
0: हाँ भाई,
1: तो उसमें से जो है दो दो गैया 2 भैंस लग रही, एक नहीं लग रही है दूध
0: अच्छा
1: नहीं,
0: अच्छा तो जैसे कि 2 ही गाय 2 ही भैंस इस
1: हाँ लगत
0: समय
1: नहीं,
0: लग रही हैं आपके यहाँ,
1: हाँ
0: तो पर्याप्त तो दूध हो ही रहा है?
1: पर्याप्त दूध हो रहा है, खाए हम लोग खाने पीने का घर परिवार का पूरा, और दही मट्ठा भी हो रहा है, शेष जो है सुबह का दूध पूरा हम डेयरी डेयरी दे देते हैं,
0: अच्छा, डेयरी
1: हाँ
0: वाले
1: डेयरी
0: आवत
1: वाले
0: हैं
1: हाँ उनको
0: तो
1: सुबह
0: उठा के दूध उनका दे दिन जाते, सुबह के
1: जी
0: शाम के दूध
1: शाम के
0: अपने
1: दूध
0: घर में
1: हाँ
0: उपयोग किए
1: उपयोग किया
0: जाते,
1: जाता है,
0: दही मट्ठा घी तमाम
1: हाँ
0: चीज़न खातिर। ये तो बहुत बढ़िया भैया। एक साथ ही साथ जैसे आप पशुपालन करें हैं, तो जैसे गाय है और भैंस हैं, इनका जो गोबर हुआ करत है, एकर जो खादी हम लोग उपयोग करी थी,
1: जी
0: जैसे
1: भैया,
0: साधारणतः हम गांव में का करी थी, गड्ढा खोद के वहाँ खाद डालते हैं, लेकिन एक और विधि है वर्मी कंपोस्ट खाद, तो एकर जानकारी आप कहाँ उपयोग करत हैं?
1: नहीं भैया हम लोग 3 गड्ढे बनाए हैं, 3 खाद जो गोबर हमारा रोज का डेली का होता है उसको 3 गड्ढा का उपयोग हम लोग किए हैं,
0: अच्छा।
1: 4 बाई 6 के गड्ढे, उसमें जितना होता है जिस सुबह हुआ शाम को दूसरी टाइम और सुबह दोनों टाइम का दोनों समय के गोबर उसमें डाल देते हैं एक
0: अच्छा।
1: गड्ढे में, वो जब भर जाता है तो उसको कूड़ा करकट और उसके साथ साथ में डाल के ढक देंगे, और अब तो बरसात का सीज़न है इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, वो बढ़िया से ढक देते हैं सब सड़ जाता है, गर्मी के समय में जो गोबर जाता है दूसरे गड्ढे में उसमें पानी जब गोबर इकट्ठा हो जाता है कभी कभी बीच में उसमें पानी भी डाल दिया जाता है, तो इससे जो है वो सड़ के बराबर जल्दी से जो है मतलब जो है तैयार हो जाता है।
0: बिल्कुल भैया सही बताएं कि अगर तरीके से अगर रखें कि जो ने ओकर जो रसा है
1: रसा
0: गोबर के
1: है
0: बह न पावे।
1: और जो भैंस गैया पाले हैं उसकी नाली जो है जहाँ जिस तरह मतलब जहाँ बांधे बांधी जाती हैं उसका जो कचड़ा है और सब जी भी उसकी नाली भी उसी गड्ढे में ही लगा
0: जोड़
1: दिए हैं,
0: दिन का है
1: जोड़ दिया गया है।
0: ये तो बहुत बढ़िया भैया बात बताएं। श्री अनुराग शुक्ला भैया, आपसे हम जानने चाह कि आप कौशाम्बी क्षेत्र से हैं और हुमन के मुख्य फसल केला मानी जाती, तो आप भी केला की खेती करें?
1: हाँ भैया केला खेती मैं करता हूँ पिछले लगभग 10 साल से, और लगभग 10 बीघे केला लगाता हूँ।
0: अच्छा भैया, केला के समय का स्थिति है?
1: केला की स्थिति यह है कि केला की खेत में रोपाई लगभग 20 से 25 दिन पहले हो चुकी है, इसके लिए हम लोग इसका बीज भुसावल से मंगाते हैं,
0: अच्छा
1: उसे
0: भैया।
1: बंडा बोलते हैं, पुटिया कहते हैं, और जून महीने के आखिरी सप्ताह में हम इसकी छोटी छोटी क्यारी बना के नर्सरी में इसको करके इसकी नर्सरी करते हैं,
0: अच्छा।
1: ताकि जब खेत में लगाना हो तो खेत में पेड़ से पेड़ की दूरी 5 फीट और क्यारी से पंक्ति की दूरी 5 फीट रखी जाती है, 1 बीघे में लगभग 900 से लेके 1000 पेड़ लगाए जाते हैं।
0: मतलब कि 10 बीघा आप खेती करें हैं, तो यह समय आपके केला लग चुका है,
1: केला लग चुका है,
0: और एक के अलावा खेती में कहा है भैया?
1: खेती में परंपरागत सारी खेती जैसे इस समय खरीफ की फसल में अरहर भी बोते हैं दलहन भी बोते हैं, इसके बाद

0: फिर धान की खेती है, मक्का की भी खेती करते हैं, बाजरा की भी है, ज्वार की भी, लगभग जितनी भी खेती है हर चीज़ की करते हैं।
1: बिल्कुल भैया, मतलब कि जो भी खरीफ में फसल उगाई जाती है सब खेती कर रहे हैं। तो धान आप कितना बीघा लगवाएं?
0: धान हमारे पास करीब 10 बीघा है।
1: 10 बीघा धान है। तो 10 बीघा धान पूर्णतः अच्छे से विकसित हो चुकी
0: धान
1: है?
0: भैया हमारे खूब बढ़िया विकसित हैं, इस समय गाला में आ चुके हैं, एक बार हम खाद दे चुके हैं। और मैं आपको भी अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि खेती मेरे पास लगभग 40 बीघे है, लेकिन मैं अंग्रेजी और रासायनिक खाद का बहुत नाम मात्र का प्रयोग करता हूँ। और अपनी खेती में मैं गोबर की खाद, कंपोस्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करता हूँ, केला की खेती में भी। और गर्मी में जब मेरा खेत खाली होता है गेहूँ फसल के बाद, तो भी उसमें सनई या ढैंचा बो के हरी खाद भी बनाता हूँ,
1: बहुत बढ़िया
0: और
1: भैया,
0: रासायनिक उर्वरकों को यथासंभव कम से कम प्रयोग करता हूँ।
1: ये तो बहुत बढ़िया जानकारी दी है कि किसान भैया उनका चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जौन हो सके तो वर्मी कंपोस्ट खाद है तैयार करा, हरी खाद है तैयार करा, जौन के माध्यम से फसल उगावा। उसे हो ये कि आपके जौन फसल में तमाम तरह के रोग ब्याज लागत है वह से बचा रही, और साथ ही साथ स्वास्थ्य पर जौन बुरा प्रभाव पड़ा थे वह से बचा रही। तो आप दलहन की खेती में इस समय क्या क्या करें भैया?
0: दलहन खेती में इस समय तो हम अरहर कर रहे हैं प्रमुख रूप से।
1: अरहर खेती करें हैं तो अरहर की क्या स्थिति है?
0: अरहर बढ़िया, और
1: कई बीघा भैया अरहर है?
0: अरहर 3 बीघा बोए हैं।
1: 3 बीघा अरहर,
0: और इसके अलावा बाजरा बोए हैं। तो बाजरा में हाइब्रिड बाजरा भी है, देसी बाजरा भी है। हाइब्रिड बाजरा में चूंकि पैदावार उत्पादन ज़्यादा होता है तो उसको बिक्री के लिए बोते हैं, और देसी वाले बाजरे में खाने के लिए घर के अपने पशुओं के लिए, और उसमें चारा भी लंबा होता है, चारा की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए देसी भी बोते हैं।
1: बिल्कुल भैया, एक के साथ साथ तिलहन की खेती में क्या करें?
0: तिलहन खेती में तो इसमें भैया अरहर के साथ भी हमने तिल बोया है।
1: अच्छा, साथ ही साथ?
0: हाँ, तिल बोया है, और अलग से भी 2 बीघा तिल की फसल बोई है। और बाद में फिर रबी की फसल में सरसों बोते हैं।
1: अच्छा, एक काट के तब फिर सरसों में बुवाई हुई जी। तो भैया ये तो परंपरागत खेती रही, बात ये रही कि केला के जो खेती आप कह रहे हैं, आपके क्षेत्र में तो केला की खेती बढ़िया हो रही, लेकिन और क्षेत्र में जैसे कोनो दूसरे क्षेत्र में किसान आपके अनुभव से अच्छी फसल उगा सका, कौने तरह की मिट्टी हो चाहिए?
0: केला ज़्यादातर जो है दोमट मिट्टी में बढ़िया होता है, क्योंकि जो मिट्टी मटियार जिसको बोलते हैं, उसमें पानी रुकने से और केला की जड़ों की सड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है।
1: अच्छा,
0: और खेत केला में पानी की बहुत आवश्यकता होती है, केवल 3 माह ये बरसात भर का छोड़ के, और जब अधिक ठंड पड़ती है उस समय भी हमको पानी देना पड़ता है।
2: हाँ हो भैया, देखा किसान भैया बहनिन का रामनाथ सिंह और अनुराग शुक्ला से विजय शंकर सिंह की किसान चर्चा सुनिन घुमे, और हर एक काम टेम टेम से निक लागत है। पंच बहन विदा लिहल जाए, पंचो राम राम।
3: अभी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में लखनऊ केंद्र से।

0: जीत भैया।
1: हाँ रेनु बहनी।
0: भैया देखो मौसम कितना बढ़िया है, चारी कैती सब हरे हरे दिखाई पड़ रहा है।
1: बिल्कुल।
0: और जैसी देखो वैसे मन खुश हो जाते हैं भैया।
1: बिल्कुल, आपन प्रकृति ऐसा चीज है कि जहिका देख मन अपने आप खिलखिलाएगा, हंसे लागत।
0: बिल्कुल भैया, और ई हरेरी भरेरी ऐसा बनी रहे इके खातिर हमका हमेशा प्रकृति के नजदीक रहे पड़ी।
1: बिल्कुल बहनी, और एक जरूरी है कि हम पंच प्रकृति के नुकसान न करी, बल्कि जौन चीजें प्राकृतिक है वन्हें अधिक से अधिक बढ़ावा दी।
0: बिल्कुल भैया, प्राकृतिक खेती के मतलब ही यह है कि जो है हम पंचे प्रकृति से मिली भई चीजें उमा इस्तेमाल करी, कोनो तिना के रसायन के इस्तेमाल नहीं करी, बल्कि प्रकृति से मिली भई जैसे गोबर की खाद है, केचुआ केरी खाद है, ई तिना की खादन के उपयोग करे है। इससे सबसे बढ़िया बात भैया ये है कि हमारी माटी का भी स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहा है।
1: बिल्कुल, यही साथे साथे बहनी अपनी खेती पाती में जौन आस पास चीजें हो रही है हम पंचन का बहुत जाने चाहिए। और यही बदे हम पंच सुनित है आज की खबरें।
2: उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश और युवाओं और महिलाओं उद्यमियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा

0: कहा है कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन से किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और कृषि आधारित उद्योगों को नई गति मिल रही है। 19 अगस्त तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त 16 नए प्रस्तावों पर मूल्यांकन समिति ने विचार कर पात्र प्रस्तावों को SLEC के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की। इनमें आटा दलिया, मैक्रोनी पास्ता, कुटू प्रोसेसिंग, रेडी टू ईट, डेयरी मिल्क प्रोसेसिंग, पेठा, हींग, आलू फ्लेक्स और कैटल पोल्ट्री फील्ड जैसी इकाइयां शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं का आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की ओर बढ़ता रुझान और महिला उद्यमियों की बढ़ती भागीदारी प्रदेश में उद्यमिता और रोजगार के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार से किसानों की आय, रोजगार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
1: रेणु बहनी।
2: हाँ रामजीत भैया।
1: देखो अपने खेती पाती में बहुत पंच ऐसा है जो सब्जियों के उत्पादन करते है, मूल कऊ दाए का होता है कि सब्जी में उतना जो उत्पादन हो चाहे उतना ना हो पावत, कौनो न कौनो कमी बनी रहा था।
2: बिल्कुल भैया, तो यही बदे आज की बात माँ हम लेके आए हैं विषय, सब्जियों में पोटेशियम, जिंक और बोरान कमी के लक्षण और उपचार। इसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर काशीनाथ तिवारी भैया।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जो सब्जियां आपके खेत में हैं उनमें कई पोषक तत्वों की कमी के लक्षण फसल पर दिखाई देते हैं। इन पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर KN तिवारी साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो सब्जियां खेत में हैं उनमें कई विकार दिख रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण हो सकता है?
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज सब्जी में जो पोषक तत्वों की कमी की समस्या आ रही है, किसान आम तौर पर सब्जियों में भी यूरिया और DAP का प्रयोग करता है और जिन तत्वों का नाम लिया, पोटाश है, बोरान है, जिंक है, इनका प्रयोग जब कमी के लक्षण दिखाई दें या कोई समस्या होती है तो उसको बीमारी वो समझ करके लोगों की सलाह लेता है और उसका सही उपचार न होने की वजह से वो नुकसान उठाता है और फसल भी ठीक नहीं हो पाती है। रही बात पोटाश की, तो आम तौर पर किसान यूरिया और DAP इसका प्रयोग करता है। पोटाश का प्रयोग न करने से पोटाश की कमी के लक्षण जो है बहुतायत सब्जियों में देखे जा रहे हैं। अगर पोटाश की कमी है तो जो पुरानी पत्तियां हैं नीचे की, उनके किनारे पीले पड़ने शुरू होते हैं और इसके बाद में वो पीलापन झुलस जैसा जाता है।
3: और नई पत्तियां सही हैं?
4: नई पत्तियां बिल्कुल सही हैं। ये जो है हमेशा पोटाश का कमी का लक्षण जो है पुरानी पत्तियों पर आता है
3: जी।
4: अब इसके उपचार के लिए क्या करें? पोटाश का बखूबी जो है खड़ी फसल में यूरिया के साथ टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब, जैसा आपने पोटाश की कमी के लक्षण बताया तो किसान भाई इसके लिए क्या करें?
4: हाँ, नेचुरल पोटाश जो आया है, जो गन्ने के सीरे से बनाया जा रहा है, उसमें 14% जो है पोटाश होता है। अगर उसका प्रयोग किसान भाई करें तो निश्चित रूप से उससे भी पोटाश की कमी दूर हो सकती है। लेकिन इसमें जब 14% पोटाश है और म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60% है, तो इसका मतलब कि जितना म्यूरेट ऑफ पोटाश से पोटाश देते थे उसकी 4 गुनी मात्रा डालनी पड़ेगी, तब तो इसका काम दिखाई देगा।
3: तो ये जो नेचुरल पोटाश है इसका बेसल डोज दिया जाए?
4: इसका बेसल डोज दिया जाए
3: खड़ी फसल में?
4: हाँ, नहीं तो अगर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं और बेसल डोज नहीं दे पाए हैं
3: जी,
4: तो यूरिया के साथ मिलाकर इसकी टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। सल्फर की भी कमी है
3: जी
4: सब्जियों में, तो पोटेशियम सल्फेट जो है जिसको 0050 कहते हैं,
3: यानी जल विलेय उर्वरक,
4: जल विलेय उर्वरक है, इसमें पोटाश भी है, गंधक भी है, तो इसका पानी छिड़काव घोल बना करके कर दें।
3: 0050 NPK।
4: हाँ, इसकी मात्रा ये होगी कि 1 लीटर पानी में 10 ग्राम,
3: यानी एक टंकी में 150 ग्राम।
4: हाँ, 15 लीटर की जो टंकी है उसमें 150 ग्राम मिला करके पानी में छिड़काव कर दें। 1 एकड़ में 6 टंकी लगती है तो उसी हिसाब से इसकी मात्रा हो जाएगी, 1 किलो में हो जाएगा।
3: डॉक्टर साहब, जहाँ सब्जियों का व्यवसायिक उत्पादन कर रहे हैं किसान भाई बहन, तो वहाँ वो कैसे जाने, कैसे पहचाने कि बोरान पोषक तत्व की कमी के लक्षण है?
4: देखिए, बोरान की कमी आम तौर पर सब्जी और फल वाले फसलों में देखी जा रही है। अगर बोरान की कमी है तो ऊपर की पत्तियों पर ये लक्षण दिखाई देंगे,
3: नई पत्तियों,
4: नई पत्तियां।

0: सब्जियां जो है वो कटोरी नुमा बन जाती हैं
1: जी,
0: और फल जो हैं सारी फसलों में फल जो है टेढ़े होने लगते हैं।
1: सब्जियां फल जो भी,
0: अब इस समय आप मंडी में सब्जी खरीदने जाइए तो भिंडी भी टेढ़ी हो गई, खीरा भी टेढ़ा हो गया, तो ये सारे फल जो तरोई टेढ़ी हो जा रही है हंसिया की तरह, लौकी टेढ़ी हो रही है, तो ये बोरान की कमी की वजह से ऊपर की पत्तियां कटोरी नुमा हो जाती हैं, फूल भी जो बनते हैं कम बनते हैं, फल नहीं टिकते हैं, और जो टिकते हैं तो इस तरह की समस्या फलों का आकार जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है।
1: तो जहां बोरान पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखते हैं या नहीं भी दिखते हैं, सब्जियों का व्यवसायिक उत्पादन कर रहे हैं किसान भाई बहन, तो शुरू से क्या करें?
0: शुरू में देखिए बोरान, अगर बोरेक्स जो है मिट्टी में अगर प्रयोग करना है तो 14.5% वाला है
1: जी,
0: उसका 5 किलो अगर डाल दें एक एकड़ में,
1: प्रति एकड़ 5 किलो,
0: 5 किलो, तो बोरान की कमी की समस्या कुछ हद तक खत्म हो सकती है।
1: डॉक्टर साहब, क्या इन पोषक तत्वों की अधिकता भी नुकसानदेह है?
0: बिल्कुल नुकसानदेह है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनकी उपयुक्त मात्रा, अधिक मात्रा और विषाक्त मात्रा, इनकी जो लाइन है बहुत बारीक है
1: जी,
0: अगर आवश्यकता से अधिक पड़ेगा तो निश्चित रूप से फसल को नुकसान होगा, और जब बहुत अधिक पड़ जाता है किसान इतना उत्साही हो जाता है कि इसको डाल दें और जरा सा सुधार हुआ तो दूसरे छिड़काव में वो मात्रा दूनी करना चाहता है,
1: ऐसी गलती ना,
0: ऐसी स्थिति में बिल्कुल विषाक्तता की समस्या उत्पन्न हो सकती है, फायदे के बजाय रुपए का नुकसान होगा, दूसरा उसकी फसल भी खराब हो जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ सब्जियां हैं वहाँ जिंक पोषक तत्व तो भी महत्वपूर्ण है?
0: हाँ देखिए, जिंक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कमी तो मुख्य रूप से इस समय बोरान की दिखाई दे रही है
1: जी।
0: उसका कारण क्या है? जिंक के महत्व के बारे में किसान समझ गया है, तो जो अन्य फसलों में भी वो जिंक डालता रहता है, धान गेहूं में लगातार डाल रहा, आलू में डाल रहा है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे सब्जियों में पोटेशियम, बोरान और जिंक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 7505103059, 750-510-30-59, 750-510-30-59।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का सब्जियों में पोटेशियम, बोरान और जिंक प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: जो किसान भाई यूरिया और डीएपी आधारित खेती आम तौर पर कर रहे हैं तो केवल 2 पोषक तत्व दे रहे हैं और मिट्टी से अन्य पोषक तत्वों का भी दोहन हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, तो हमारा तो ये कहना है कि संतुलित फसल पोषण सुनिश्चित करें, उसके लिए यूरिया डीएपी के साथ पोटेशियम, बोरान, जिंक और गंधक की भी समस्या हो रही है, तो इन सारे पोषक तत्वों का एक संतुलन बना करके प्रयोग करें तो निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ेगी और प्रति रुपए खर्च पर किसान को ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा।
1: यानी किसान भाई बहन जहाँ भी सब्जियों का व्यवसायिक उत्पादन कर रहे हैं वहाँ इन पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान दें, पोटेशियम, बोरान और जिंक, साथ में सल्फर की भी कमी के लक्षण न दिखें और उनका सही प्रबंधन करें। डॉक्टर के एन तिवारी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और आपने किसान भाइयों बहनों को ढेर सारे सुझाव दिए सब्जी उत्पादन में फसल पोषण के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रेनू बहनी।
4: हाँ रामजीत भैया।
3: देखो जानकारी के बाद तो बहुत हो गया।

0: रेनु बहनी।
1: हाँ रामजीत भैया।
0: देखो अपने आसपास चीजें धीरे धीरे कितना बदल गई हैं, कहो कितना हाईटेक हो गए हैं।
1: अब भैया देखो हाईटेक के जमाने हैं।
0: हाँ?
1: अगर हाईटेक ना हुई हो तो पाछे रह जाइयो।
0: बिल्कुल।
1: तो देखो अगर हमका सबका अच्छी जानकारी और कम समय में मिल रही है।
0: हाँ?
1: तो हमका सबका भी इस समय के फायदा उठावे चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत पंच यही के फायदा उठावा थे और अपने खेती पाती में इस्तेमाल करे थे और आपन खेती बढ़िया तना आगे बढ़ावत है। और वही का हम पंच जानित है आज के किसान में।
1: तो भैया आज के किसान में यहाँ है देखो हाईटेक नर्सरी और सब्जी उत्पादन पर बतावे के लिए अनुष्का जायसवाल बहनी, तो आओ इनका सुना जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज ब्लॉक के हरिखेड़ा गांव की महिला किसान अनुष्का जायसवाल बहन, स्वागत है कार्यक्रम में।

0: अनुष्का जायसवाल बहन, ये बताएं हाईटेक खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
1: धन्यवाद। 3.5 साल पहले करीबन मैंने अपना सबसे पहला सेटअप एक लगाया पॉली हाउस का। इसमें मेरे परिवार ने काफी मुझे सपोर्ट किया। मुझे ये था कि मुझे ट्रेडिशनल खेती नहीं करनी थी, मुझे जो करना था कुछ टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करते हुए करना था। फिर मैंने इसमें एक बेसिक ट्रेनिंग ली खेती की, नोएडा में एक इंस्टीट्यूट है, वहां से मैंने हाइड्रोपोनिक्स और प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन इसमें मैंने अपना एक ट्रेनिंग लिया, तो मुझे गवर्नमेंट से भी सब्सिडी मिली इसमें। मेरा पहला सेटअप जो था वो थी खीरे। उसके बाद मैंने उसमें लाल पीला शिमला मिर्च भी कई बार किया।

0: प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, इसमें मैंने अपना एक ट्रेनिंग लिया तो मुझे गवर्नमेंट से भी सब्सिडी मिली इसमें। मेरा पहला सेटअप तो जो था वो थी खीरे, उसके बाद मैंने उसमें लाल पीला शिमला मिर्च भी कई बार किया है। तो अब 3.5 साल होते होते हाँ, हम लोग ने अपना पहले शुरुआत 1 एकड़ से की थी, बट हम 6 एकड़ में काम कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, लाल पीली शिमला मिर्च हो गई, इंग्लिश क्यूकम्बर जो हमारा बिना बीज का सीडलेस क्यूकम्बर जिसको हम बोलते हैं, वो मैंने किया हुआ है,
1: बीज रहित खीरा
0: बेमौसम, जितना भी है ये हम बेमौसम ही करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मार्केट से पहले इसको निकालें या ऐसे टाइम पे निकालें जहाँ पे हमें रेट का फ़ायदा मिल सके। सिंस संरक्षित खेती है तो उससे हमें ये फ़ायदा रहता है कि अंदर का मौसम हमारे लिए थोड़ा कंट्रोल में रहता है, बारिश नहीं पड़ सकती, तो इससे हम अपना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उसको कंट्रोल कर लेते हैं, हमारी क्रॉप और अच्छे से चल जाती है। जहाँ ठंड में लोगों की फसलें रुक जाती हैं है ना, वहाँ हमारी क्रॉप में उस टाइम प्रोडक्शन निकल रहा होता है, हम उसको मार्केट में दे सकते हैं।
1: अच्छा।
0: ओपन में भी मैंने ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल मेथड से किया कि फ्लड इरिगेशन या एकदम से हम लोग ट्यूबवेल से पानी देते जाते हैं एंड ऐसे कर रहे हैं, हम लोग ने उसमें भी गवर्नमेंट की सहायता से हमने ड्रिप इरिगेशन लगवाया, मल्चिंग करते हैं, बेड बनाते हैं, क्रॉप कवर भी देते हैं विंटर्स में, ऐसा नहीं कि खुले में पड़ी रहती है हमारी क्रॉप।
1: यानी क्या,
0: लो टनल में हम लोग अपनी और क्रॉपें करते हैं जिससे उस पर पाला नहीं पड़ता। हमने 1.5 एकड़ पॉली हाउस लगाया है और बाकी हमने आधे से थोड़ा सा कम एकड़ हमने उसमें हाइड्रोपोनिक्स का भी एक सेटअप लिया है। उसके बाद एक हमने हाईटेक नर्सरी का एक सेटअप बनाया है। तो हमारे 3 सेटअप हो चुके हैं ये, और हमारा एक ओपन में भी सेटअप चलता है जो हमारा 3 एकड़ का है।
1: तो खुले में कितनी खेती आप कर रही हैं?
0: हमारा 3.5 एकड़ खुले में है, जो हमारा प्रोटेक्टेड में होता है जैसे पॉली हाउस में, वो हमारा 2 एकड़ तक है पूरा।
1: खुले में कौन कौन सी सब्जियां उगा रही हैं?
0: खुले में हम लोग ग्रीन कैप्सिकम, हरी शिमला मिर्च कहते हैं, हरी शिमला मिर्च हम लोग कर रहे हैं, जुकिनी करा है मैंने, जुकिनी मैं करती हूँ, पीली और हरी दोनों। तो उसके बाद हम लोगों ने जितने भी सलाद पत्ती हो गया, चाइनीज कैबेज, रेड कैबेज, फिर उसके बाद हमारा पॉक चॉय करके एक एक वो होता है सलाद पत्ती होता है, एक हमारा ग्रीन लेटस हो गया, रेड लेटस हो गया,
1: जो भी
0: जितना भी विदेशी सब्जियां हैं हम लोग ने सब की हुई है।
1: तो इसकी शुरुआत कब करती हैं, कैसे करती हैं?
0: इसकी शुरुआत अब हम लोग की अगस्त से शुरू हो जाती है। तो जैसे हम इसकी पहले पौध रेडी करेंगे, पौध रेडी करके फिर हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं।
1: तो पौध आप पॉली हाउस में तैयार कर रही होंगी?
0: जी, मैंने वही बताया, मेरा नर्सरी का भी सेटअप है तो मैं अपनी नर्सरी खुद ही रेडी कर लेती हूँ, और मैं कमर्शियली भी कर रही हूँ नर्सरी का सेटअप, तो लोगों की भी नर्सरी रेडी करती हूँ प्लांट।
1: यानी हाईटेक नर्सरी भी चल रही है आपकी?
0: जी जी, साथ में हाईटेक नर्सरी भी चल रही है।
1: और हाइड्रोपोनिक्स में क्या कर रही हैं आप?
0: हाइड्रोपोनिक्स में भी हम लोग लीफी वेजिटेबल करते हैं, जैसे कि ये
1: पत्तेदार सब्जी
0: में हम लोग जितना भी ऑफ सीजन करते हैं। तो आप ये मान के चलिए इस टाइम कभी भी आप देखेंगे कि पॉक चॉय हो गया या फिर लेटस हो गया या जो भी है आपका, ये सब केल हो गया, केल है हमारा, रॉकेट है,
1: ये सब
0: पार्सले है,
1: बेजल,
0: ये सब खुले में नहीं हो सकता। ये
1: और
0: सिर्फ
1: पॉली हाउस में आप कर रही हैं?
0: जी, पॉली हाउसेस में हम लोग कर रहे हैं, और ये भी पानी में ग्रो करते हैं हम लोग। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ही है कि हम बिना सॉइल के कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें। उससे क्या होता है कि हमारे सॉइल बॉर्न जितनी भी डिजीजेज है वो कभी आती नहीं है, वो हमारा बिल्कुल पेस्टिसाइड फ्री है ना, फंगिसाइड फ्री हमारा क्रॉप बनता है।
1: तो हाइड्रोपोनिक्स में भूख और प्यास कैसे मिटाती हैं?
0: उसकी भूख और प्यास हमारा जितना भी ग्रोइंग होता है वो पानी में होता है, वो भी आरओ वाटर में। तो हम लोग आरओ वाटर में न्यूट्रिशन देते हैं, उसी में ही वो प्लांट की जड़ें बढ़ती जाती हैं और वो ग्रो होता जाता है लीफी।
1: तो कितना दिन समय लगता है जो सब्जियां आप तैयार कर रही हैं पत्तेदार?
0: हम लोग को बस 45 से 50 दिन लगता है और हमारी एक एक रेडी हो जाती है, मतलब की साइकिल रेडी हो जाती है।
1: और शिमला मिर्च, आपने कहा कि रंगीन शिमला मिर्च आप पॉली हाउस में पैदा करती हैं, लाल पीली और हरी, और खुले में हरी शिमला मिर्च पैदा करती हैं, तो उसकी तैयारी हो चुकी है?
0: जी जी जी, लाल पीला शिमला मिर्च हमारा लग चुका है, अब हरा हमारा पहले हफ्ते सितंबर में लगता है।
1: कौन कौन सी बारीकी करती हैं आप पॉली हाउस में और खुले में?
0: मेन चीज तो हमारी ये है कि हम सबसे ज्यादा अपनी क्रॉप पे ध्यान देते हैं कि कभी भी कोई दिक्कत अगर हमें लगती है कि कहीं कुछ आ रही है तो हमें शुरू में ही 1-2 पौधों में ही पता चल जाए। हर दिन अगर हमारे अंदर पॉली हाउस में लग रहे हैं 10,500-11,000 पौधे, तो हम लोग हर दिन मेंटेन करते हैं कि हम हर दिन उन सारे के सारे पौधों को चेक करें कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है उसमें, उसका न्यूट्रिशन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डेली जो हमें न्यूट्रिशन उसमें देना है, जो हमें फर्टिलाइजर देना है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा अगर जैसे इस टाइम ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है मौसम में, तो हम लोग को ये कोशिश रहता है कि हम उसको फैंस वैंस चला के उसकी ह्यूमिडिटी कम कर पाएं।
1: तो जो पैदा करती हैं आप उसको बेचती कहाँ हैं?
0: जी, मेरा मार्केट में ही जाता है, जितना भी मेरा दिन का 1,000 किलो भी प्रोडक्शन रहता है तो हम लोग होलसेल में भी हम लोग देते हैं ना, तो रिटेल एंड होलसेल दोनों करते हैं।
1: यानी भाव अच्छा मिल जाता है?
0: हाँ जी सर, भाव अच्छा मिल जाता है, मार्केट से अच्छा निकल जाता है मेरा।
1: 6 एकड़ की खेती

0: लगभग 2 एकड़ में पाली हाउस
1: जी
0: और बेमौसम सब्जियों का उत्पादन,
1: जी
0: पूरे साल में कितनी लागत गिरती है, कितना उत्पादन ले लेती हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
1: सर, लगभग ये मान के चलिए कि लागत तो लग जाती है। अगर 1 एकड़ की बात करें पॉली हाउस में, तो करीबन 8 से 10 लाख रुपए की लागत लग जाती है, क्योंकि इसके बीज बहुत महंगे होते हैं, लाल पीले शिमला मिर्च के। वही ओपन में इतनी नहीं लगती, ओपन में बीज सस्ते होते हैं।
0: जो 3.5 साल का आपका हाईटेक खेती का तजुर्बा है, हाईटेक नर्सरी का है, हाइड्रोपोनिक्स का है, संरक्षित खेती का है, खुले में सब्जी उत्पादन का है बेमौसम, तो उसके आधार पर जो और किसान भाई बहन हैं, जो युवा हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी अपने अनुभव से?
1: जिस भी चीज़ की खेती कर रहे हैं उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तो आपको मुनाफा ज़रूर होगा। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर आप पढ़ लिख के जा रहे हैं एंड युवा लोग जा रहे हैं, अगर हम खेती में कहें, तो उससे भी बहुत चेंज आ सकता है खेती में। किसान को एक बेचारा सा मत बना के, एक गरीब किसान या मिट्टी में हमेशा वो काम ही करते रहता है, या उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमेशा नुकसान में है, कर्ज में है, ऐसा नहीं है। अगर सही नॉलेज दे पाए हम किसान को, सिर्फ धान गेहूं में करके किसान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको थोड़ा सा आगे इस सब्जियों में भी ले जाना पड़ेगा, फ्रूट्स में भी ले जाना पड़ेगा, फल में भी ले जाना पड़ेगा। काफ़ी सारी ऐसी नई नई चीज़ों की खेतियाँ हो रही हैं जिसमें हमें मुनाफा अच्छा मिलता है, तो हम उसमें अगर उनको थोड़ा सा एजुकेट करेंगे, उनको थोड़ा नॉलेज देंगे, तो ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं इसमें।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: जी, मेरा मोबाइल नंबर होगा 9717913902, 9717913902, 9717913902।
0: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहती हैं आप?
1: मैं मानती हूँ कि अगर औरतें या लड़कियाँ ये करती है ना, तो वो बहुत और बेहतर कर लेती हैं, मुझे ऐसा लगता है। मेरे यहाँ करीबन 25-30 औरतें आती हैं हर दिन, सारे के सारे काम वही करती हैं। मोस्टली 3-4 आदमी रखे हैं हमने बस, बाकी सारा फार्म औरतें चलाती हैं हमारा, है ना। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि वही हैं जो कर पा रही हैं, एंड वो जिस बारीकी से और जिस ध्यान से काम करती हैं, वो एक शायद पुरुष नहीं कर पाता है खेती में।
0: अनुष्का जायसवाल बहन, आज आप कार्यक्रम में आई और 3.5 साल पहले खेती से जुड़ी और आज एक मुकाम पर हैं। आपके पास 6 एकड़ की खेती है जिसमें 2 एकड़ पाली हाउस है, जिसमें आप बेमौसम सब्जियों का हाईटेक उत्पादन कर रही हैं और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: अपने खेती पाती में मौसम के जौन जानकारी है वो बड़ी महत्वपूर्ण होत है, अगर उस समय पे मिल जाए तो बहुत जौन नुकसान है वो बच जात है। भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार 20 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक कुछ स्थानन पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है, साथ ही साथ कुछ स्थानन पर भारी बारिश के चेतावनी है।
7: तो भैया ये तो रहे मौसम के हाल, इससे जो है अपनी खेती पाती में यहाँ बहुत काम जो है सहज हो जाते है।
6: बिल्कुल।
7: और भैया अब हमार कार्यक्रम कस लागत है, इके खातिर हमरे पंच भैया बहनी हमका जो है पाती लिख सकते हैं, तो जल्दी से नोट करें हमार पता। कार्यक्रम किसान वाड़ी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाड़ी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ। पिन कोड है 226001।
6: यही के साथ है जे पंच हम पंचन का ईमेल करे चाहत है वही लिखे हमार ईमेल farmandhome@gmail.com।
7: तो भैया हमारा पता नोट कर लेने हैं सब पंच भैया बहनी और हम का...

0: आशा है कि वे हमका ई कार्यक्रम के प्रति अपन सुझाव जरूर दे हैं।
1: बिल्कुल, अब अपने बैठकी का समय हो चला है, तो पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मिर्जापुर में मकान ढहने से 3 लोगों की मौत। प्रयागराज में रामबाग स्टेशन पर जलभराव के चलते ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग की कार्य योजना की समीक्षा। कहा, रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए कौशल विकास। भारत दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधि मंडल ने आज आगरा में किया ताजमहल का दीदार। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दौरे से मिलेगी जापान और उत्तर प्रदेश के संबंधों को नई ऊंचाई। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा बैठक में हुए शामिल। कहा, 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निर्माण कार्य। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। वहीं मिर्जापुर के मड़िहान तहसील क्षेत्र में बारिश के बीच 2 कच्चे मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। चित्रकूट में बारिश के चलते आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहे। प्रयागराज में बीते 2 दिनों में बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं बारिश के चलते प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर पानी भर जाने के कारण ट्रेनों के परिचालन पर प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते एक पैसेंजर और 3 मेमो गाड़ी को झूसी स्टेशन से चलाया जा रहा है, जबकि प्रयागराज से हावड़ा के बीच चलने वाली विभूति एक्सप्रेस को प्रयागराज रामबाग के प्लेटफॉर्म 5 से चलाया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO सुमित कुमार ने बताया कि पानी निकालने का कार्य जारी है। स्थिति के सामान्य होते ही ट्रेनों का संचालन रामबाग से दोबारा शुरू हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने

0: जिला प्रशासन और संबंधित विभाग को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं।
1: अभी बस कुछ लो लाइन एरियाज बचे हुए हैं, हमारी टीम पूरी लगी हुई है, पंप सारे क्रियाशील हैं और हमें लगता है कि अगले कुछ घंटे में ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी और इसके जब पानी पूरा निकल जाएगा तो
0: मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा नदी, बाराबंकी, अयोध्या और तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रदेश में बाढ़ और जलभराव की स्थिति के बीच सरकार ने प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। अयोध्या में 283 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत किट वितरित की गई, साथ ही लोगों को नदियों और जलाशयों के आसपास सावधानी बरतने और प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि आईटीआई को अधिक से अधिक उद्योगों से जोड़ा जाए। उन्होंने उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण विकसित करने के साथ ही अप्रेंटिसशिप और ऑन जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास को रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि आईटीआई और उद्योगों के बीच निरंतर संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर नियमित रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग केंद्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली केंद्रों का संचालन शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अनुदेशकों की उपलब्धता को प्रशिक्षण की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी अभियान से जुड़े परिवारों के बच्चों और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में सुव्यवस्थित संचालन के लिए व्यापक बदलाव की जरूरत बताई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों से जुड़ी सुस्पष्ट नियमावली तैयार करने, शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और एक सोसाइटी के गठन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए आवेदन पोर्टल तत्काल खोला जाए और 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित कर दी जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: लखनऊ में आज समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की उपस्थिति में विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में शिक्षकों और अन्य आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता, विद्यार्थियों को मिल रही सुविधा और प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कराते हुए यथाशीघ्र उन्हें पेंशन से लाभान्वित कराया जाए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने, साथ ही योजना की पहुंच और प्रभावशीलता को और बढ़ाने पर जोर दिया। योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 163 केंद्रों के माध्यम से संचालित है। समाचार कच्छ से ओम अवस्थी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भारत दौरे पर आए जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी सहित करीब 240 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज आगरा में ताजमहल का दीदार किया। इस मौके पर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल ने ताजमहल की स्थापत्य कला और खूबसूरती को करीब से देखा। ताज दीदार के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने डायना बेंच पर फोटो सेशन भी कराया। श्री जयवीर सिंह ने कहा कि जापान और उत्तर प्रदेश के उद्योग, सांस्कृतिक धरोहरों, तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के नज़दीक आकर उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों पर

0: कर जाएंगे।
1: आज हमारे जापान से महामहिम राज्यपाल जी, वहाँ के कमांडर साहब, उनका पूरा परिवार आज उत्तर प्रदेश की सार्थक यात्रा पे आया हुआ है। आज ताज के दीदार किए हैं, आपके सामने उन्होंने अभिव्यक्ति देकर के इसकी प्रशंसा करने का काम किया है। और हमारे गवर्नर साहब का मानना है कि उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की जमीन उपजाऊ है, उर्वरक है और एक मित्रवत संबंधों को लेकर आगे बढ़ेगी।
0: उत्तर प्रदेश दौरे पर आया जापानी प्रतिनिधिमंडल कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रतिनिधिमंडल की भेंटवार्ता प्रस्तावित है। इन मुलाकातों के जरिए दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों, निवेश और सहयोग की संभावनाओं को लेकर उच्च स्तरीय संवाद होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन मिश्रा आज अयोध्या में समिति की बैठक में शामिल हुए। इससे पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के अंदर निर्माण कार्य 30 सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा संभाला जा रहा ऑडिटोरियम और म्यूजियम का निर्माण कार्य जारी रहेगा और इसके मार्च 2027 तक पूरा होने की योजना है।
2: इमर्सिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 7 नंबर गैलरी में मंदिर का दिव्य दर्शन वहां पर पूर्ण कराया जाएगा। इसी प्रकार गैलरी नंबर 17 है, जो अपने में चुनौती है, इसलिए है कि वहां भगवान राम जी जो नदियों से यात्रा की उन्होंने वन गमन में, तो उन नदियों को और उन नदियों पे उन्होंने किस प्रकार का संदेश दिया, इसको भी प्रयास किया जाएगा।
0: आकाशवाणी लखनऊ का FM केंद्र FM रेनबो आज अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन वर्ष 2000 में FM रेनबो का प्रसारण शुरू हुआ था। इस अवसर पर आज शाम को आकाशवाणी केंद्र पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में श्रोताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इसके साथ ही विभिन्न मनोरंजन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मिर्जापुर में मकान ढहने से 3 लोगों की मौत। प्रयागराज में रामबाग स्टेशन पर जल भराव के चलते ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग की कार्य योजना की समीक्षा। कहा, रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए कौशल विकास। भारत दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधि मंडल ने आज आगरा में किया ताजमहल का दीदार। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दौरे से मिलेगी जापान और उत्तर प्रदेश के संबंधों को नई ऊंचाई। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन मिश्रा समिति की बैठक में हुए शामिल। कहा, 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निर्माण कार्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। और अब वक्त हो चला है हिंदी कार्यक्रम का। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं निशा यादव की कहानी काका टी स्टॉल।
4: आज फिर एक कहानी निशा की जवानी। मैं निशा भीड़ से दूर सुकून के पलों में आपको ले जाकर इसी भीड़ के किसी किरदार से मिलवाती हूँ। हाँ, मैं कहानियां सुनाती हूँ। आज की कहानी काका टी स्टॉल। राम राम काका। अरे राम राम बिटवा, कैसन हो? आपकर बड़े दिन बाद आए हो। आगरा चले गए रहे हो का? नहीं काका, आगरा नहीं गया था, बस क्लासेस लगातार हो जाती हैं तो पढ़ाई में व्यस्त हो गया था, समय नहीं मिल पाता। बहुत बढ़िया बेटवा, खूब ही मन लगाए के पढ़ाई करत जाओ। यही बड़े माई बाप तुमका इतनी दूर भेजे हैं। बोलते बतियाते चाय बनाते जाते हैं रामजियावन काका। 70 साल की उम्र होगी, कमर भी थोड़ा सा झुक गई है, लेकिन हाथों की फुर्ती देखते ही बनती है। आंखों पर चढ़ा मोटा चश्मा और उसके पीछे अनुभवी आंखें, आवाज में इतना अपनापन कि अजनबी को पल भर में अपना बना लेते हैं। माँ बाप का जिक्र आते ही अनुज की आंखें नम हो गईं। मामा जी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत बनाने लगे। तब तक काका दो गिलास चाय और बन लेकर खुद ही उसके नजदीक आ गए। का हुआ बिटवा, घरे की याद करत हो? चिंता जिन करा, तू सब पढ़ाई कर जा, हम तुमका बढ़िया सी चाय बनाए के पिलावा करी। अनुज अब तक थोड़ा सा संभल गया था, मुस्कुरा कर बोला,

0: अरे काका, तभी तो आपके पास आता हूँ चाय पीने। बिल्कुल मम्मी के हाथ वाला स्वाद आता है आपकी चाय में, है ना मामा जी? सचमुच काका, ये मेरे मामा जी हैं। आज हाई कोर्ट में केस की तारीख है, इसलिए आए हैं। इलाहाबाद है भैया, यहाँ मने गंगा माई के आंचल में मुक्ति पाए खातिर आवा था, और न्याय के मंदिर ई हाई कोर्ट में न्याय पाए खातिर। अभी सुबह के 8 ही नहीं बजे थे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के नजदीक इस चाय की दुकान पर काफी लोग आकर आसन जमा चुके हैं। यूं भी काका टी स्टॉल केवल चाय की दुकान नहीं है, बल्कि ज्ञान गंगा का पावन घाट प्रतीत होती है, जहाँ पर डुबकी लगाए बिना न ज्ञान की प्राप्ति संभव है और न मोक्ष की। रिटायर्ड शिक्षाविद, खेल जगत के धुरंधर, साहित्य की दुनिया से जुड़े लोग जो लेखकों और कवियों की एक एक रचना का नाम याद रखते हैं, राजनीति के हर पहलू पर विशेष दृष्टिकोण रखने वाले, भले किसी राजनीतिक दल से उनका वास्ता न हो, वकीलों, छात्र नेताओं और हाईकोर्ट में केस के सिलसिले में दूर दराज से आने वाले वादी प्रतिवादी, इन सबका मिला जुला संगम। ऐसा दृश्य नजर आता है कि इसे काका कॉन्फ्रेंस सेंटर कहना ज्यादा अच्छा है। हर दिन इतना जोश, इतना उत्साह और ऐसी गर्मजोशी कहाँ से लाते हैं लोग? शायद राम जीवन काका की चाय का ही जादू है, जो न केवल तन को ताजगी से भर देती है, बल्कि जो आपको भी स्फूर्ति प्रदान करती है। अनुज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA LLB का छात्र है। उसे इलाहाबाद में रहते हुए 4 साल से अधिक समय हो गया है। अब फाइनल परीक्षा की तैयारी के लिए वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहा है। हॉस्टल में भी पढ़ाई का माहौल अच्छा है। जौनपुर के मयंक सिंह और छपरा के आलोक सिन्हा से अच्छी दोस्ती हो गई है उसकी। छुट्टी वाले दिन अपना कमरा साफ करना, कपड़े धोना, प्रेस करवाना और शाम को संगम किनारे जाकर बैठ जाना, एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। यहाँ आकर तेजी से भागती उलझती जिंदगी को एक ठहराव मिल जाता है। तमाम फिक्र हवाएं अपने साथ उड़ा ले जाती है। मन में घुलते अवसाद गंगा के जल को स्पर्श करते ही मानो बह जाते हैं जलधारा में। अनुज तो कहता है कि जो कुछ ही मैं मम्मी पापा से कहना चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं सकता, मेरी सारी कही अनकही बड़े प्यार से सुनता है संगम। आलोक को गजलें गुनगुनाने का शौक है और मयंक को कविता लिखने और सुनाने का। अपनी सारी थकान और चिंताएं यहीं प्रवाहित कर ये तीनों फिर एक कदम आगे बढ़ जाते हैं जीवन की राहों पर, एक नई चेतना के साथ। आलोक के मौसा जी के किसी मुकदमे की तारीख आ जाए कोर्ट में और ये तीनों आज फिर आ पहुंचे काका टी स्टॉल पर। आलोक मौसा जी के साथ वकील से बात करने व्यस्त हो गया और अनुज मयंक के साथ वहीं लकड़ी की बेंच पर बैठ गया आज का अखबार लेकर। अब भीड़ थोड़ी कम जरूर हो गई है, लेकिन बहस और परिचर्चा जोरों पर है। दो लोग चाय पीकर जाते हैं तो 4 लोग और आकर शामिल हो जाते हैं। किसी के हाथ में चाय का गिलास है तो कोई चश्मा चढ़ाए आज अखबार की हेडलाइन जोर जोर से पढ़ के सुना रहा है। किसी की हथेली पर खैनी मली जा रही है तो कोई मुंह में गुटखा दबाए गर्दन ऊपर उठाकर अपनी राय प्रस्तुत कर रहा है।
1: देखो गुरु, हम तुमका बताई कौनू सरकार आए कौनू जाए, कुछ होए वाला नहीं ना। इलेक्शन में ढेर वादा हुई देश खातिर, ई करब ऊ करब, ओकरे बाद ढूंढत रहा मिलवे ना करी कौनू नेता,
0: दूसरा कोई हमें हाँ मिलाता।
1: दी बात तुम सही काटो गुरु, सब समझी थी हम।
0: ग्राहकों की बातें, हंसी के ठहाके, काका के पतीले में उबलती चाय की खुशबू और ननकों के गिलासों से टकराकर निकलता संगीत फागुनी विहार को और भी मदमस्त बना रहा है।
2: राम राम काका, दुठो चाय मेरे लिए भी।
0: अनुज ने इलाहाबादी अंदाज में बोलने की कोशिश की तो मुस्कुरा दिए रामजियावन।
2: हम पहले नहीं देख लिया रहा बेटवा, काहे इतना सुस्त हो, कौनो तकलीफ परेशानी तो नहीं ना?
0: नहीं काका, कोई परेशानी नहीं है, गंगा माई का आशीर्वाद है।
2: आप बिजी थे इसलिए इंतजार कर रहा था।
0: अच्छा अच्छा, आज के का लेके आए हो भैया? फिर कौनो रिश्तेदार आवा हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट? काका हंसते हुए बोले, जानते हैं अक्सर अनुज किसी न किसी क्लाइंट के साथ ही आता है।
2: और भैया परीक्षा कब तक होए वाली है? खूब चित लगा के पढ़ाई करत जाओ। तुम आगरा से आए हो बेटवा?
0: काका अब मयंक से मुखातिब थे। नहीं, हम तो जौनपुर के हैं, छात्रावास में एक ही कमरा में रहा थे हम तीनों।
2: बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: रामजीवन काका कुछ नहीं भूलते, किसकी चाय चीनी वाली, किसकी बिना चीनी की, किसके पैर का प्लास्टर कब उतरा, किसका बेटा बाहर नौकरी करने गया है, किसकी बेटी की शादी होने वाली है और किसकी बहू ने ससुराल वालों पर मुकदमा ठोंक दिया है। और एक खास बात, काका को ग्राहक से कभी पैसे लेते नहीं देखा। चाय पहुंचाने वाला लड़का ननकू वही पैसा लेकर आता है और गल्ले में डाल देता है। हाँ, कैश बॉक्स या तिजोरी को गल्ला बोलते हैं इलाहाबाद में। पहले पहल तो अनुज को समझ ही नहीं आते थे बहुत से शब्द, पर अब उसे भले लगने लगे हैं ये नए नए शब्द, जिनकी छुअन का एहसास उसके दर्द को चुपके से सहला जाता है। अनुज को लॉ की पढ़ाई करवाना, एक सफल अधिवक्ता बनाना उसके मम्मी पापा का सपना था, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ना और अधिवक्ता हाई कोर्ट की नेम प्लेट अनुज का सपना। दरअसल उसके दादाजी और नाना जी दोनों ही पेशे से वकील थे और इसी वजह से जुड़ा था उसके मम्मी पापा का रिश्ता। पापा ने कॉमर्स से पढ़ाई की और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और मम्मी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। अनुज को बचपन से ही मोटी मोटी किताबों और फाइलों से भरा चैम्बर और काला कोट सफेद बैंड बहुत

आकर्षित करता था। अनुज अक्सर अपने मम्मी पापा से कहता, जब मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने लगूंगा ना, तब आप लोगों को भी वहीं बुला लूंगा। बड़ा पसंद आया था उसे यह शहर। लेकिन इंसान के देखे हुए सारे सपने पूरे नहीं होते। अचानक देश में फैली महामारी कोरोना ने अनुज के मम्मी पापा को उससे छीन लिया। अनुज भी उन दिनों वहीं था उनके पास। उसके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो गए थे और वो लोग छुट्टियों में नानी के घर नैनीताल जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का ऐसा प्रकोप फैला कि अनुज की दुनिया ही वीरान हो गई। बड़ी मुश्किल से दीदी, जिया जी, मामा, नानी ने संभाला उसे। जब फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हुई तो अनुज को वापस इलाहाबाद आना पड़ा। ऐसे मुश्किल समय में इस शहर ने और यहाँ के लोगों ने बड़ा प्यार दिया उसे। जब भी दिल घबराता, आलोक और मयंक के साथ कभी संगम किनारे जा बैठता तो कभी अरेल घाट, और जब मम्मी की बहुत याद आती तो काका की चाय की दुकान पर पहुंच जाता। मम्मी के हाथ जैसा स्वाद और काका का स्नेह उसे बरबसियां खींच लाता। हालांकि उसने अपने दुख के बारे में रामजीवन काका को कभी कुछ नहीं बताया। काका अक्सर पूछते, और बेटवा घरोई के आए हो, घर माँ सब ठीक बा? वो धीरे से गर्दन हिला देता मुस्कुराकर। आज रविवार है, भीड़ रोज की अपेक्षा थोड़ी कम है। आज अनुज अकेला ही चला आया चाय पीने। अखबार उठाकर बेंच पर बैठा ही था कि काका की नजर उस पर पड़ गई। कसो बेटवा, चुप्पे आए के बैठे हो, कौनो साथ भी नहीं ना, सब ठीक बा? हाँ काका, आज संडे है तो सब सो रहे थे, मैं अकेला ही चला आया। अच्छा करो भैया, आज हम फुर्सत में हाँ, तोहरे संग बैठ कर चाय पिया आज। रामजीवन जल्दी से चाय बनाने लगे। उसने देखा कि काका की दुकान अब ज्यादा बड़ी हो गई है, दोनों तरफ त्रिपाल भी बढ़ गया है और दो तखत भी। एक और एक महिला चोखा बाटी बनाने की तैयारी कर रही है तो दूसरी ओर एक युवती आसाम टी के अलग अलग फ्लेवर के छोटे छोटे बॉक्स, पाउच, चिप्स, पैटीज और सैंडविच का काउंटर लगाए है। उसने सुन रखा है आने वाले लोगों से कि काका का एक बेटा दिल्ली में अच्छी सरकारी नौकरी में है और दूसरा विदेश में किसी कंपनी में। उनकी ये बेटी तो है नहीं, फिर ये दोनों कौन है? ले बेटवा, मम्मी के स्वाद वाली चाय और अमृता बिट्टी, भैया खाते सैंडविच बनाए दो। लाई बाबा, काका ये दोनों आपकी बेटियां हैं? अनायासी पूछ बैठा अनुज। ऐसा ही समझो बेटवा, ई लक्ष्मी सरस्वती पधारी यहाँ गरीब की कुटिया माँ। काका अपना चाय का ग्लास रखकर इत्मीनान से बैठ गए उसके पास। भैया तू शारदा है, बलिया के लगे छोट सा गांव है, एकरे बाप की जमीन पट्टीदार हत्याए लिए और गरम गरीब मनी के संगे मारपीट करत रहे। बाबू के मरे के बाद शारदा रोज रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए के मार परेशान होत रही। बड़े वकील बाबू मदद कर दिए तो मुकदमा तो जीत गई, पर वहाँ माई बिटिया की जान के खतरा रहा तो अपन घर द्वार खेती सब बेच के यहीं रह लगी। हमरे घर के ऊपर के तीन कमरा खाली ही पड़ा रहा, वही में रहती हैं, और हम बाबू लोग से कही सुन के अपन त्रिपाल बढ़वा लिया। बिट्टी के दाल बाटी खाए के जाए बिटवा, बहुत स्वाद है, खूब बिकत है, ताजा और साफ सुथरा सस्ता खाना। और ये अमृता दीदी तो आसाम की लगती हैं? हाँ बिटवा, यहू के संगे एक लड़का विश्वासघात किए रहा, शादी करीस बिटिया हुई ओकरे बाद छोड़ के भाग गवा, एकरे सब गहना रुपया लेके दौड़ धूप करी तो पकड़ा तो गवा, अब जेल में है। अब नानसी बच्ची का लेके कहाँ जाती, तो यहू हमरे संग राहत है, तुमरे काकी की तो जैसे खिलौना मिल गवा है, खूब खुश हैं अपन नातिन और सहेली के संगे। तभी एक बड़ी सी काले रंग की कार स्टॉल पर आकर रुकी। कार की पिछली सीट पर बैठे एक बुजुर्ग और रोबिली व्यक्तित्व के चेहरे पर नजर पड़ते ही रामजीवन काका लगभग दौड़ते हुए से गाड़ी के पास पहुंच गए। राम राम जस साहेब, राम राम। अरे कैसे हो राम खिलावन, सब ठीक है ना? साहेब कृपा है गंगा माई के, चाय बनाई थी, पी के जाए मालिक। अरे राम खिलावन, अभी हम यहीं रहेंगे 3-4 महीने बच्चों के पास, और फिर रोज आएंगे तुम्हारे यहाँ चाय पीने। ठीक है मालिक, जैसी तुम्हार मर्जी। गाड़ी चली गई तो काका वापस आकर अनुज के पास बैठ गए। जस साहेब हैं, रिटायर हो गए हैं, तो कभी बड़े बिटवा लगे दिल्ली, कभी बिटिया लगे विदेश घूमता, अब आए हैं तो रोज आइए हमारी दुकान पर चाय पिए खातिर। पर काका, वो आपको राम खिलावन क्यों कह रहे थे? और भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन आपका नाम तो रामजीवन है ना? हाँ बिटवा, राम खिलावन हमरे काका रहे हैं, जिनकर ही दुकान बा, यही से हम दुकान के नाम काका टी स्टॉल रखे हैं। हमार नाम भी हमरे काका काकी ही रखे रहे, बहुत दौलत रहे हैं हमका। और आपके माता पिता? डर गया था अनुज कि कहीं काका के मम्मी पापा भी। हमार बाबू बड़े जज साहब की गाड़ी चलावत रहे और अम्मा उनका रसोई संभालत रही। जब रिटायर हुए के उन लोग कलकत्ता गए तो अम्मा बाबू जी के अपन संग लेवाए ले गए। और आप? हमरी काकी के कौनू बच्चा नहीं रहा भैया। काका काकी सुने तो रोए रोए के पगलाए गए कि बिटवा के लेके जावो तो मर जावे हम दोनों पिरानी, यही से हम यहीं रह गए अपन काका काकी लगे। अम्मा बाबू छोटी बिट्टी का लेके कलकत्ता चले गए, हम अपन काका काकी बिना नहीं रह सकत रहे हैं।

0: ओ, तब तो आपको चाय बनाना आपके काका ने ही सिखाया होगा। हाँ, हाई कोर्ट के समय के हिसाब से ही काका अपन दुकान की भट्टी सुलगावत रहे। यहाँ आए बार इनकी खातिर काका की चाय समय पे तैयार, और एक दिन खातिर दुकान नहीं बंद करे दिए इन कबू। चाहे बुखार आवे चाहे ओला पड़त रहे, उन्हें हम का सिखाएं कि ई दुकान में मनही केवल चाय पिए खातिर नहीं आते। ई दुकान इलाहाबाद हाई कोर्ट आए वाले हर मनही के लिए एक ठौर है, जहाँ वो सुस्ताए सके, परेशान होए पर दुखी ना होए, कुछ अपन मन की कह सके, कुछ सुन सके, कोनू से सलाह मशवरा कर सके, हाँ? अपन मन खोल के रख सके। आज हारे हैं तो फिर कोशिश करो, कल जरूर जीतो। बहुत संघर्ष देखे हैं बिटवा इंसान की जिंदगी में, ग्राहक हमरे माई बाप हाँ, लेकिन ई चाय की टपरी उन सब की खातिर माँ का आंचर बनी रहे। अनुज हतप्रभ सुन रहा था उस चाय वाले की बातें, दिल को छू गई थी रामजियावन और उनके काका रामखिलावन की सोच। और फिर आया वो दिन जिसका भी सभी से इंतजार किया था अनुज और उसके मम्मी पापा ने, दीदी जिया जी, नानी मामा जी ने, और सबसे ज्यादा काका रामजियावन ने। अनुज यूनिफॉर्म पहनकर सबके साथ हाईकोर्ट जाने के लिए निकला और सबसे पहले पहुंचा काका टी स्टॉल। हाँ वाह अधिवक्ता बाबू, आज हम तुम्हार मुंह मीठा कराई, अनुज ने सबसे काका का परिचय कराया। लेकिन बेटवा, मम्मी पापा आ जाओ, पूछते पूछते रुक गए काका। शायद पीछे खड़े दीदी जी ने कोई इशारा कर दिया हो। काका की पलकें भीग गई थीं। अरे काका, ये दुकान है ना मम्मी के आंचल जैसी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना, अपनों से जुड़े रहना।
1: काका टी स्टॉल। श्रोताओं, आज की हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे निशा यादव से उनकी ये कहानी।

शिक्षा व्यक्ति में आत्मबल और आत्मविश्वास पैदा करती है। खुद साक्षर बनिए और दूसरों को भी साक्षर बनाने में अपना अमूल्य योगदान कीजिए। हमें यह नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई। आइए सांप्रदायिक सौहार्द का व्रत लें। कुछ ही पलों में प्रसारित होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अरुण गुलवाड़ी के स्वर में सबसे पहले योगेश प्रवीण का लिखा ये भजन।

श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और हमारे कलाकार हैं अरुण गोलवाड़ी। योगेश प्रवीण की लिखी इस भक्ति रचना के बाद आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम के आखिर में के नैयर का लिखा ये गीत।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अरुण गुलवाड़ी के स्वर में के नैयर का लिखा ये गीत। कार्यक्रम के दौरान आए व्यवधान के लिए हमें खेद है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर।
4: सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और आप इस वक्त सुन रहे हैं जीवन के हर रंग फिल्मी गानों के संग, एक ऐसा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जहां पुरानी यादों की खुशबू भी है और नए सपनों की उड़ान भी, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सफ़ेद काली नहीं होती, इसमें हर रंग है। कभी धूप, कभी बारिश, कभी संघर्ष और कभी जीत। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने से जो कहता है हार मत मानो।
5: सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

सुना आपने, एक पिता का भरोसा, एक बेटे का सपना। 90 के दशक का ये गाना आज भी हर घर में गूंजता है। ये याद दिलाता है कि मेहनत का रंग सबसे खूबसूरत होता है। गिरोगे उठोगे तभी तो बड़ा नाम होगा।

भाई दोस्ती हो गई, मेहनत हो गई, अब बारी है प्यार की। पर वो प्यार जो सिर्फ इश्क नहीं, जो हौसला देता है। 2022 का ये रंग, केसरिया का रंग, प्यार का रंग, उम्मीद का रंग। ये गाना बताता है कि प्यार में भी ताकत होती है जो आपको गिरने नहीं देता। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में सिर्फ प्यार ही नहीं, कभी कभी खुद से भी प्यार करना ज़रूरी है, अपने आप पर भरोसा रखना ज़रूरी है। और इस बात को इस गाने ने बखूबी समझाया है।

अपना बना ले, पहले खुद को, अपनी कमजोरियों को और अपने सपनों को। जब आप खुद को अपना लेते हैं तो दुनिया भी आपको अपना लेती है। यही है जीवन का सबसे बड़ा सकारात्मक संदेश।

अब आते हैं आखिरी दो गानों की ओर। दोनों का संदेश एक ही है, रुकना नहीं है। 90 के दशक ने हमें संघर्ष करना सिखाया और 2022 के गानों ने हमें मुस्कुराकर संघर्ष करना सिखाया। दोस्तों, तन्हाई में भी एक रंग है, ये हमें अंदर से मजबूत बनाती है। ये गाना कहता है, अकेले भी तुम पूरे हो, अपने सपनों के लिए लड़ो, हार को भी जीत में बदल दो।

अंत में वो गाना जो हर सुबह हमें उठकर जीने की वजह देता है। दोस्तों, जिंदगी छोटी है, इसे हर रंग से भर दो। वाह, क्या ऊर्जा है इस गाने में। मतलब साफ है, जिंदगी को जश्न की तरह जियो। गम आए तो भी, खुशी आए तो भी, हर पल को रंग दो।

तो श्रोताओं, ये था 30 मिनट का हमारा आपका सफर जीवन के रंग, जीवन के हर रंग फिल्मी गानों के संग। मेहनत का रंग, दोस्ती का रंग, प्यार का रंग, आत्मविश्वास का रंग, संघर्ष और जश्न का रंग। याद रखिए, जिंदगी में अंधेरा कितना भी हो, एक गाना उसे रोशन कर देता है। एक सकारात्मक सोच आपकी पूरी दुनिया बदल देती है। इस प्रोग्राम के तहत आपने जिन फिल्मों के गाने सुने उनके नाम इस तरह से हैं: कयामत से कयामत तक, मजरू सुल्तानपुरी, आनंद मिलिंद, उदित नारायण और आमिर खान। और ये अरिजीत सिंह की आवाज में ब्रह्मास्त्र फिल्म का गाना, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत। फिल्म का नाम भी दिया अरिजीत सिंह की आवाज में, सचिन जिगर के संगीत निर्देशन में, रचना अमिताभ भट्टाचार्य की थी। उदित नारायण और अलका याग्निक, फिल्म कोयला। इंदिवर की रचना, राजेश रोशन का संगीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार कनिष्क सेठ और कविता सेठ। फिल्म का नाम जुग जुग जियो।

श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने दोस्त संतोष श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: ये आकाशवाणी है।

श्रोताओं, आकाशवाणी प्रयागराज अपनी विविध रंगी कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। अब तो हम हमारे कार्यक्रम आप अपने मोबाइल ऐप के जरिए भी सुन सकते हैं, जो कि प्रसार भारती का ऑफिशियल ऐप है, न्यूज़ ऑन AIR ऐप।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सबरस कार्यक्रम। रचना पारंपरिक है, संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर और आवाज लता मंगेशकर की।

श्रोताओं सब रश्मी अब बारी गजल की। बेगम अख्तर की आवाज में समात फरमाइए मिर्जा गालिब का ये कलाम। निर्देशन खय्याम साहब का।

प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनाने जा रही हैं रूप कुमार और सुनारी, क्षमा कीजिए इसे फिर सुन लीजिए, प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनाने जा रही हैं रूप कुमार और सोनाली राठौर के युगल स्वरों में सबीर जलालाबादी की ये रचना।

0: श्रोताओं, अभी आप सबीर जलालाबादी का लिखा ये गीत सुन रहे थे, रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की मिलीजुली आवाजों में। इसी के साथ अब आज का मिले जुले गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस यहीं खत्म होता है।
1: को नाव में रख के चले थे, डुबोने के
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या का, अब से थोड़ी ही देर में।
1: किनारों ने लूटी दुल्हनिया की डोली, कहारों ने लूटी
2: दुल्हनिया। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है, ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
3: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें

0: पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए CBSE की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
1: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि तीसरी याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
3: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में 2 तरीके अपनाए गए हैं। मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए

0: तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
2: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड इसके लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने के टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
0: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबाल्डो डे ला एस्प्रियला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुअर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा

0: मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कश्यंग।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 पैसे पर बंद हुआ।
1: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet decides to set up a bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh, announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms 5-member panel to investigate violence during student protest across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and Food Safety Officer examinations. Government allows duty-free imports of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Centre unveils Delhi Master Plan 2047 to transform national capital into inclusive and world-class city. Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir elected as country's 23rd president. And in hockey, Indian women's team qualifies for second round after a goalless draw with England in Pool D match of World Cup in the Netherlands. And now the news in detail. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah today announced this, sharing a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensure constitutional safeguards. The Supreme Court has constituted a 5-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy to independently examine allegations of violence during the student demonstrations held at Jantar Mantar in New Delhi and other locations across the country last month. A report.
4: The high-powered inquiry committee has been asked to examine both the allegations of excessive and disproportionate use of force by police and paramilitary forces against protesters, as well as the alleged use of violence by protesters against security personnel and injuries sustained by them. The other members of the high-powered inquiry committee are former Punjab and Haryana High Court Chief Justice Ravi Shankar Jha, former Delhi High Court Judge Justice Shalinder Kaur, former CBI Director Rishi Kumar Shukla, and retired Meghalaya Director General of Police, Dr. L. R. Bishnoi. A three-judge bench comprising Chief Justice of India, Suryakant, Justice Choimala Bagchi and Justice V. Mohanna passed the order while hearing a batch of writ petitions concerning the nationwide demonstrations over alleged examination paper leaks. The high-powered inquiry

0: Indian team will now look to build on its strong defensive performance as it enters the second phase of the World Cup with tougher challenges ahead in the knockout stage. In badminton, India's women's doubles duo of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand has stormed into the quarterfinals of the BWF World Championships in New Delhi. The Indian pair produced a commanding performance to defeat seven seeds Rin Iwanaga and Kei Nakanishi of Japan in straight games 21-16, 21-12. Former world champion PV Sindhu lost to third seed Wang Zhiyi of China in the women's singles pre-quarterfinal match 11-21, 21-15, 17-21. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet decides to set up a bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh, announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms five-member panel to investigate violence during student protests across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and food safety officer examinations. Government allows duty-free imports of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Centre unveils Delhi Master Plan 2047 to transform national capital into inclusive and world-class city. Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir elected as country's 23rd president. And in hockey, Indian women's team qualifies for second round after a goalless draw with England in Pool D match of World Cup in the Netherlands. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर दाखला अमित शाह ने ऐलान किया है कि मरकजी काबीना ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच तश्कील देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में तलबा के एहतजाज के दौरान तशद्दुद की तहकीकात के लिए पाँच मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है। झारखंड हाई कोर्ट ने 11वें से 13वें जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर इम्तहानात को मनसूख करने के रियासती सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हुकूमत ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन खाम शकर की ड्यूटी फ्री दरामद की मंजूरी दी है। मरकज़ ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया है ताकि कौमी राजधानी की सबकी शमूलियत वाले और आलमी दर्जे के एक शहर के तौर पर काया पलट की जा सके। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लीडर मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम आलमगीर को मुल्क का 23वां सदर मुंतखब किया गया है। और हॉकी में भारतीय ख्वातीन की टीम ने नीदरलैंड में आलमी कप के पूल डी के एक मैच में इंग्लैंड के साथ बिना गोल के मैच ड्रा होने के बाद दूसरे राउंड में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच कायम करने की मंजूरी दी है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लद्दाख के दूर दराज इलाकों में रहने वाले शहरियों के लिए इंसाफ तक रसाई में नुमाया बेहतरी आएगी और उन्हें कानूनी खिदमात हासिल करने के लिए दरकार वक्त कम होगा। जनाब अमित शाह ने मजीद कहा कि हुकूमत लद्दाख की हम जहत तरक्की और वहाँ के शहरियों के लिए आईनी तहफ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और मुल्क के दीगर मकामात पर तलबा के एहतजाज के दौरान पेश आने वाले तशद्दुद के इल्ज़ामात की आज़ादाना तौर पर जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की सरबराही में एक पाँच रुकनी आला इख्तियाराती तहकीकती कमेटी HPEC तश्कील दी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आला इख्तियाराती तहकीकाती कमेटी को ख़ास तौर पर इन इल्ज़ामात की जांच करने की हिदायत दी गई है कि पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ मुजाहिरीन की जानिब से सिक्योरिटी अहलकारों के ख़िलाफ़ मुबैना तशद्दुद और इन अहलकारों को पहुँचने वाली चोटों की भी तहकीकात की जाएंगी। मज़कूरा कमेटी के दिगर अरकान में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रविशंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की साबिक जज जस्टिस शालेंद्र कौर, CBI के साबिक डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड DGP डॉक्टर LR बिश्नोई शामिल हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल तीन रुकनी बेंच ने मुल्कगीर तलबा एहतजाज से मुतालिक कई अर्जदाश्त पर समाअत के दौरान यह हुक्म जारी किया। अदालत आलिया ने कमेटी को अपनी इब्तदाई तहकीकात और नतायज

0: पर अबूरी रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट में तलबा के एहतजाज के दौरान होने वाले तशद्दुद से मुतालिक अर्जियों की समाअत हो रही थी। ये एहतजाज मुबैना पेपर लीक के खिलाफ किए गए थे। दिल्ली से स्वाति रखेजा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए महताब आलम।
1: झारखंड हाई कोर्ट ने आज अगले अहकाम तक रियासती सरकार के 11वें से 13वें JPSC सिविल सर्विस इम्तहान के जरिए की गई तकर्रियों और फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती को मनसूख करने के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन ने इम्तहान और तकर्रियों को मनसूख करने से मुतालिक रियासती सरकार के मंगल के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली 3 अलग अलग अर्जदाश्तों की समाअत करते हुए ये हुक्म दिया। अदालत ने हिदायत दी है कि मुंतखब उम्मीदवार बहाल रहेंगे। उसने ये भी कहा कि उन्हें फितरी इंसाफ के उसूलों और बाजाबता तरीक़ाकार पर अमल किए बगैर नहीं हटाया जा सकता। अदालत ने रियासती हुकूमत और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC से जवाब तलब किया है और अगली समाअत के लिए 15 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। 2 अर्जदाश्तों में 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सर्विस इम्तहानात और तकर्रियों की मनसूखी को चैलेंज किया गया था, जबकि तीसरी अर्जदाश्त का ताल्लुक फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती से था। अर्जी गुजारों के मुताबिक 11वें से 13वें JPSC इम्तहान के जरिए 342 मुंतखब उम्मीदवार फिलवक्त सर्विस में हैं। रियासती हुकूमत ने इम्तहान के अमल में मुबैना बेजाबतगियों और TSR डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL के सिलसिले में CID की तहकीकात की बिना पर इम्तिहानात और तकर्रियों को मनसूख कर दिया था। हुकूमत ने 22 इम्तिहानात को मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी किया था और 6 इम्तिहानात को होल्ड पर रखा था। 17 इम्तिहानात की तहकीकात करने को कहा था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स सदारत अवाम मरकूज आबोहवा से मुतालिक कार्रवाई के जरिए पायदार तरक्की में पेशरफ्त कर रही है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव के तहरीर करदा एक मजमून को शेयर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अखराजात की शिद्दत में कमी और गैर रिवायती तवानाई की सलाहियतों में इजाफे के ताल्लुक से भारत की तरक्की एक पायदार और सब्ज़ अंदाज नज़र को तकवीत अता करती है। जनाब मोदी ने पायदार तर्ज जिंदगी, शजरकारी, सर्कुलर मईशत और मुआशरे पर मबनी तताबुक पर हुकूमत की जानिब से तवज्जो मरकूज किए जाने को भी उजागर किया। हुकूमत ने इस बरस 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन खाम शकर की ड्यूटी फ्री दरामद की मंजूरी दी है। गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल DGFT ने आज जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि मखसूस सूरत हाल के पेश नज़र टैरिफ की शरह के एक कोटे TRQ के तहत 10 लाख मीट्रिक टन खाम शकर की दरामद की इजाज़त होगी। ये कदम त्योहारों के सीज़न से पहले सामने आया है, जब शकर की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है और घरेलू बाजार में सप्लाई के मुतालिक तशवीश पैदा हो जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा शकर बनाने वाला मुल्क है। जुनूबी इलाकाई कौंसिल की 31वीं मीटिंग वज़ीर दाखला अमित शाह की सदारत में चेन्नई के करीब महाबलीपुरम में इख्तिताम पजीर हुई। मीटिंग में वज़राए आला और आला हुक्काम को खित्ते की तरक्की, पेशरफ्त और मुश्तरका मफादात से मुतालिक तरजीहात और मसाइल पर तबादला ख्याल का मौका फराहम हुआ। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन, कर्नाटक के वज़ीर आला DK शिवकुमार, केरलम के वज़ीर आला सतीशन, तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमरका और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने मीटिंग में शिरकत की। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, अंडमान निकोबार जजायर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर और मुख्तलिफ वजारतों के आला हुक्काम भी मीटिंग में शरीक हुए। मीटिंग में शुरका ने सेहत के शोबे के लिए फंडिंग, बुनियादी ढांचे, माहौलियाती तहफ़ और इलाकाई सिक्योरिटी के बारे में इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत को फ़रोग देने पर जोर दिया। मीटिंग में मुतअद्दिद मसाइल पर बंद कमरे में बातचीत हुई, जबकि शुरका ने बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मीटिंग के नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया। भारत और जापान के वज़राए दिफा की मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और जापान के उनके हमनसब शिंजिरो कोइज़ोमी ने मुश्तरका तौर पर मीटिंग की सदारत की। میٹنگ میں بحری سلامتی کو مضبوط بنانے، میک ان انڈیا کے تحت دفاعی ٹیکنالوجی کو فروغ دینے اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک اعتماد میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرائے دفاع نے بحری سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون سے متعلق ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ اپنے افتتاحی کلمات میں راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ایشیا کی دو بڑی جمہوریتوں بھارت اور جاپان

0: कंट्रीवाइड।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।
2: सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का आदाब। श्रोताओं, रात के इस सन्नाटे में जब चांद भी अपनी कहानी कहता है, जब दिल के कोने में छुपे जज्बात लफ्ज मांगते हैं, तब हम ले आए हैं आपके लिए कहकशा, आधी रात से थोड़ा पहले और ख्वाबों से थोड़ा बाद। आज की रात समर्पित है एक ऐसी आवाज़ को जिसमें शास्त्रीयता की गहराई है और गज़ल की नज़ाकत, जिस आवाज़ ने राग और रूह दोनों को एक साथ छुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पद्मश्री शुभा मुद्गल जी की, जो कि अपने शहर प्रयागराज में जन्मी थी। उन्होंने ख्याल भी गाया, ठुमरी भी और गज़ल को भी एक नया लिबास पहनाया। उनकी गज़लें सिर्फ लफ्ज नहीं हैं, वो एक एहसास हैं। कभी शाम का सुकून, कभी सफ़र की थकान और कभी मन का चलना। आइए इसी एहसास के साथ शुरू करती हैं आज की कहकशा। अजीब सी यह शाम है, शुभा मुद्गल की आवाज़ में वो शाम जो ना पूरी रात है ना दिन, बस एक खामोश इंतज़ार, एक

और अब गली गली डगर डगर। इस गजल में वो सफर है जो हर मोड़ पर याद बन जाता है। शोभा जी ने इसे गाकर हर गली को महबूब का पता बना दिया।

जिंदगी आसान कहाँ होती है दोस्तों, हर सफर इतना कठिन। शुभा मुद्गल की आवाज में वो हिम्मत है जो थक कर भी चलने का हौसला देती है।

कभी कभी मन के अंदर आग सी लगती है। जलते हुए मन में वही आग है, वही बेचैनी है, और इसी बेचैनी को शोभा जी ने शुरू

और आखिर में जी लेने दो। जिंदगी से बस एक छोटी सी गुजारिश, इस गजल के साथ हम अपनी रात को भी जी लेना चाहते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रही थी गजलों की कहकशा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, अपने सुनने वालों को हम याद दिला दी, सुबह 6:20 पर हम आपको सुनवाएंगे साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा, जिसमें आप सुनेंगे गांधी जी के विचार स्वदेशी पर। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में हमारे किसान भाई डॉक्टर विश्वनाथ से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत सुनेंगे। बातचीत का विषय होगा रजनीगंधा की वैज्ञानिक खेती। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम रोज की तरह 6:45 पर। इस कार्यक्रम में डॉक्टर परितोष मिश्रा की वार्ता होगी बच्चों में मोबाइल एडिक्शन। कल के शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में सुबह 7:30 पर कमल कुमार का बांसुरी वादन और रात्रि

दस बजकर 30 मिनट पर पंडित उमाशंकर मिश्रा का सितार वादन, इसके अलावा दिन में 12 बजकर 15 मिनट पर रामशंकर का ख्याल गायन सुनवाया जाएगा। सुबह 10 बजकर 5 मिनट पर वॉइस ऑफ प्रयागराज, इसके तहत इन दिनों आप सुन रहे हैं डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रयागराज के महाप्रबंधक प्रधान महाप्रबंधक आनंद भूषण शरण सिंह, नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत। कल आप सुनेंगे इस बातचीत का तीसरा भाग। श्रोताओं, अभी आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम, बस थोड़ी प्रतीक्षा।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 212.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, एक जमाने में दिल का दिया किसी की यादों से तो किसी की बातों से चलता था। आज कमरे के अंधेरे और तन्हाई में अचानक आए मैसेज से रोशन हो जाता है किसी किसी के दिल का दिया। पल भर में बदल जाता है मूड और खुशनुमा लगने लगता है सब कुछ। खामोश रात और तन्हाई में दिल का दिया जला रहा है किसी का मोबाइल पर आया संदेश।

किसी ज़माने में तोहफे में कैसेट दिए जाते थे, शायद उससे पहले एलपी रिकॉर्ड्स भी गिफ्ट में दिए जाते रहे होंगे। भाई अब हमें क्या पता, आज गाने मोबाइल संदेशों के जरिए भेजे जाते हैं। गाने एक दूसरे को क्यों भेजे जाते हैं? क्योंकि जो बातें हम बोल कर नहीं कह पाते वो गानों के जरिए कहना चाहते हैं। जमाने ने फिल्मी गानों को हमारा मैसेंजर बना दिया है।

आसमान को छूते पहाड़ इंसान को इसलिए हैरत में डालते हैं क्योंकि वो आसमान से बातें करते हैं। खूबसूरत जगहों पर पहले लोग गले में कैमरा डाले पहुंच जाते थे। क्या बात है, वो फिल्म कैमरों वाले दिन। जब तक रील पूरी नहीं होती थी तस्वीरें देखने को मिलती नहीं थी क्योंकि उन्हें तुरंत प्रिंट नहीं कराया जा सकता था। आज पहाड़ों की ठंडी हवा गालों को छू रही होती है और हम अपने मोबाइल से फोटो वीडियो ले रहे होते हैं फटाफट फटाफट। अरे भाई, पहाड़ों से बातें करें या उन्हें निहारें, ये पहाड़ तो यहीं रहेंगे, हमें तो अपने शहर लौट जाना होगा।

हम भले भीग जाएं, लेकिन हमारा मोबाइल नहीं भीगना चाहिए। इसलिए हम खुद रेनकोट लेकर भले ना निकलें, पर मोबाइल की हिफाजत का पूरा ध्यान रखकर निकलते हैं। प्यार करने वाले किसी रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रहे होते हैं, एक दूसरे की आंखों में थोड़ा थोड़ा झांक लेते हैं। अचानक न जाने क्या होता है कि नज़रें मोबाइल की खिड़की पर टिक जाती हैं। थोड़ा सा वक्त है, प्यार समय है, उम्र जवां है, प्यार साथ है, तो फिर स्क्रीन की क्या बात है। हर पल को महका लिया जाए, थोड़ा गुनगुना लिया जाए।

किसी जमाने में गीतकार कह गए थे, चांद को देखो जी, और अब इसका मतलब ये है कि अपने कमरे से निकलो जी, अपने घर की स्क्रीन से नजरें फेरो जी। अब हर जेब में एक स्क्रीन है जिसमें है एक पूरा मायावी संसार। ऐसे में किसके पास फुर्सत है कि वो घटते बढ़ते चांद पर नजर डालें।

श्रोताओं, अब जो गीत लेकर मैं आया हूं वो ब्लॉक कर देने वाला गाना है। चिट्ठियों के जमाने में किसी को ब्लॉक नहीं किया जा सकता था। खिड़की से झांकती हसीना किसी जमाने में खिड़कियों के पट बंद कर देती थी तो प्यार का रास्ता बंद हो जाता था। अब पट बंद करने की जगह आ गया है ब्लॉक करने का चलन। जरा सी रिश्तों में खटास के आई उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसे में सामने वाले से संपर्क के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और अब वो बेचारा गलियों गलियों में ये गाना गाते हुए भटक रहा है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आप हमारा कार्यक्रम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त हो चला है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद निशात खान का राग चांदनी कल्याण में सितार वादन, आलाप और गत 3 ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगति की है शफात अहमद खान ने। तो आइए सुनते हैं उस्ताद निशात खान का सितार पर बजाया राग चांदनी कल्याण।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद निशात खान का राग चांदनी कल्याण में सितार वादन। आलाप और गत तीन ताल में निबद्ध थी आपके साथ तबले पर संगति की शफात अहमद खान ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम समाचार रिले करेंगे, पहले हिंदी और उसके पश्चात अंग्रेजी में। समाचारों की बस थोड़ी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में बड़ा

0: Netherlands. Both teams created opportunities but failed to find the back of the net, with India's defence holding firm throughout the contest. The draw helped India, led by Salima Tete, sealing a vital second place finish in Pool D. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 11:10 और 13 सेकंड हुए हैं। अब आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। सुबह 5:53 पर अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।